ये गोरे गोरे गोरे गोरे।

परशुराम और लक्ष्मण के वाक युद्ध से स्थिति बिगड़ती देख श्री राम ने ऋषि की क्रोधाग्नि को शांत करने के लिए क्षमा याचना की। बालक यदि चपलता भी करते हैं तो गुरुजन तथा माता पिता के हृदय में आनंद उत्पन्न होता है, अतः समदर्शी सुशील धैर्यवान तथा ज्ञानी मुनि होने के नाते उन्हें इस अबोध दुधमुहे बच्चे को क्षमा कर देना चाहिए। किंतु तभी लक्ष्मण ने मुनि को एक बार फिर छेड़ा। खड़े खड़े मुनिवर के चरण दुख गए होंगे, सो उन्हें क्रोध त्याग कर बैठ जाना चाहिए। यदि टूटा हुआ धनुष उन्हें इतना ही प्रिय हो तो किसी गुणी को बुलवाकर उसे जुड़वा देने का उपाय करना चाहिए। स्थिति गंभीर होते देख राजा जनक समेत उपस्थित जन आतंकित और भयभीत हो गए। श्री राम के शीतल वचन सुनकर परशुराम जी ने कहा, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूं, किंतु ये मन का मैला और शरीर से वैसा ही सुंदर है जैसे विष से भरा सोने का कलश। श्री राम ने एक बार फिर उनका क्रोध शांत करने के उद्देश्य से उन्हें सच्चाई से अवगत कराया कि वो नाहक ही उस बालक पर क्रोध कर रहे हैं, वास्तविक दोषी तो स्वयं राम है, और जिस प्रकार भी मुनि का क्रोध समाप्त हो वो सभी उपाय करने को तत्पर हैं। किंतु मुनि का क्रोध दूर भी हो तो कैसे, लक्ष्मण तो अब भी उन्हें टेढ़ी दृष्टि से ही ताक रहे।

अभी आप श्री रामचरित मानस गान से बालकांड भाग 101 सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 6:55 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सेशल्स देशस्य राष्ट्रिय दिवसस्य स्वर्ण जयंती समारोहे मुख्य अतिथि रूपेण भागं गृहीतवान्। भारतीय सैनिक बलस्य अथ नौसेना बलस्य दलानि अपि अस्मिन् पथ संचलन कार्यक्रमे भागं गृहीतवन्तः। अस्मिन् अवसरे श्री मोदी सेशल्स देशस्य नागरिकेभ्यः भारत परं वर्धापनं प्रकटितवान्। विक्टोरिया इत्यत्र राष्ट्रपतिना पैट्रिक हर्मनी इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्तानन्तरं श्रीमोदी उक्तवान् यत् भारतं तादृशीं हिन्द महासागरस्य कल्पनां करोति यत्र समुद्रीय सुरक्षया सह आर्थिक समृद्धिरपि सुनिश्चिता स्यात्।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इंटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: पर्यावरण संरक्षणस्य सतत विकासस्य च नेतृत्वाय सेशल्स देशेन प्रधानमन्त्रिणे श्री नरेन्द्र मोदिने पर्यावरण नेतृत्वस्य सर्वोच्च सम्मानः गार्डियन ऑफ द ब्लू होरिजन प्रदत्तः। सेशल्स देशस्य राष्ट्रपतिना पैट्रिक हर्मनी इत्यनेन प्रदत्तः अयं पुरस्कारः स्थायि अभिवृद्ध्यर्थं प्रधानमन्त्रिणः दीर्घकालीन संबलस्य तस्य हरितदृष्टेः च प्रतीकः वर्तते। श्रीमोदी जलवायु परिवर्तनस्य समाह्वानानां विरुद्धं संघर्षं कुर्वतां राष्ट्राणां कृते एतं पुरस्कारं समर्पितवान्। प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्रमोदी सेशल्स देशे ह्यः मारिशस् देशस्य समकक्षेन डॉक्टर नवीनचन्द्र रामगुलामेन सह मिलितवान्। द्वावपि नेतारौ भारतस्य मारिशसस्य च वर्तमान सहकार्यस्य विषये चर्चां कृतवन्तौ। भारतेन प्रदत्त विशेष आर्थिक अनुदानस्य कार्यान्वयनस्य प्रगतेः अपि तौ समीक्षां कृतवन्तौ। द्वावपि नेतारौ भारतस्य विजन महासागर इत्यस्य तथा नेबरहुड फर्स्ट इति नीतेः अन्तर्गतं भारत मारिशस् वर्धित रणनीतिक सहयोगस्य महत्वस्य विषये वैश्विक दक्षिणस्य प्रति तेषां प्रतिबद्धतायाः विषये च सहमतिं प्रकटितवन्तौ। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक प्रकरणे भिवांडी नगरस्य सत्र न्यायालयेन त्रयाणां आरोपिणां कृते 6 जुलाई पर्यन्तं बन्धनं विहितम्। आरक्षी अन्वेषकाः अन्ताराज्य परीक्षा तस्कराणां संलग्नतायाः शंकां कृतवन्तः। भिवांडी आरक्षिणः न्यायालयं निवेदयन् यत् आरोपी दिल्लीतः भिवांडीनगरं गत्वा उक्त टीईटी प्रश्नपत्रं 1,50,00,000 रूप्यकेषु विक्रीतवान्। आरक्षी अन्वेषकाः लीक कृतस्य कागदस्य स्रोतः अन्वेष्टुं वित्तीय व्यवहारस्य परीक्षणं कर्तुं महाराष्ट्रे अन्यत्र कागदं विक्रीतम् अस्ति वा इति ज्ञातुं तस्कर समूहस्य अन्येषां सदस्यानां परिचयं कर्तुं च 10 दिनानाम् आरक्षी अभिरक्षणं

वाङ्सादलः राख्यात् न राख्यात् निया कतिका राख्यात् दारी सबुआ वाङ्सा बेसार तेला बर तका तीदा आदा स औराङ पुन्याङ दपात मंग योगा कान मरेका दारी तुजुआन मरेका किता तरुस मनरुस मंगलामी हाल इनी मंगिका सितुआसी तरकिनी दी आसिया बारात बापा मोदी कंबाली मन इंका तकान इम्बाउना निया कपाडा वार्गा उन्तुक मनुंदा पंबिलियन इमास दन मंगाहिदिरी दिबुरान कर लुआर नगेरी उन्तुक समंतारा वाक्तु भलिया उजुगा तल्ला मंगाजाक मशराकात उन्तुक बर बागाई का कन दारा आन दान ममिंता पारा पेतानी मंगुनाकान पुपुक अलामी सबानिया मुमकिन प्रधानमंत्री मनियम पैकान रासा तनी मकासी दन अप्रेसियासी कपाडा मसियाराका ततास दुंगुंगान बरलंग बरकलन जुतान मरेका तरहडाप इसु इसु पेंटिंग इनी बानिया क लुआरगा तल्ला मनुलु सूरत कपाडा प्रधानमंत्री यंग मनिया ताकान कसर दिया आन मरेका उन्तुक मंगुनाकान कंबाली पर पर ही आसान एम्मास यंग सुडा अदादलाम अचारा पर निकाहान बानियाक पुला यंग मंगुनागा दी मीडिया सोशल बाबा मरेका अकान मंगाए दिरी पर जलानान का लुआर नगेरी बानियाक औरंग तेला मुलाई बरवागाए कंदारा आन सरता मंगुनाकान बुस दान करता मित्रु हाल इनी त्रुत मंबांतु मंग हेमात पंगुना आन बिजनेस दान सोलार लापुरान मंगेनाई पंगुना पंगुना आन पुपुक अलामी जुगा तला दी तरीमा क बरसामा आन सलोरु राख्यात इंडिया इनी पास्तिनिया अकान मंबावा किता मराई क सुक्सेस आन यांग लेबी बेसार प्रधानमंत्री मंगुंगापकान बाहवादी नेगारा किता पेरायान उलांग ताहुन पर निकाहान दान अचारा लाइनिया दी रायाकान बरसामा औरंग लाइन दान पंबरियान हदिया कपाडा ससामा मरुपाकान हाल यांग लाजिम कलवारगा पेथकार दारी देसा बहादुरपुरा दी डिस्ट्रिक्ट नंदेद महाराष्ट्र मनंजुकान समांगात बरबागाई का बहागिया आन यांग सजाती दंगान मनिया दिया कान असुरांसी कचेला कान बागी हम्पित सलुरु पंडुडुक देसा साथ मंगेलार अचारा पर निकाहान दी कलवारगा मरेका बलियाउ बर कमेंटार असुरांसी सनिलाई सरातुस रिबू रूपी इंडिया दी बरीकान कपाडा तिगा रिबू लिमा रातुस औरंग इतु अदाला मोमेन यंग संगत मंगहारू कान कलवारगा तरसबूत मनियादरी बाबा सतेला तरजादी कचेला कान यंग तिडा दी इंगन कान कलवारगा यंग तर दंपाक अकान मंगहरापी बरबागाई कसुलितान दलाम सिचुएशन सप्रति इतु बांतवान कचिल बिसा मंजादी दुकुंगान यंग संगत बरारती पमरिंता बरूपानिया मनजांकाउ जुतान कलवारगा उन्तुक मंबरीकान पर लिंडुंगान स्कीमा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना मनियदियाकान असुरांसी कचेलाकान हिंगा दुआ रातुश्रीबू रूपी इंडिया दंगन प्रेमी ताहुनान हानिया दुआ पुलु रूपी इंडिया सजाहु इनी सकितार लिमा रातुस दलापन पुलु जुता औरंग तेला बरगाम्बुंग दलाम स्कीमा इनी हम्पिर दुआ रातुस दलापन पुलु जुता पर पसरता असुरांसी अदाला परम्पुआन बांतुआन सनिलाई लेबिदारी तिगा पुलु तुजु मिलिया रूपी इंडिया तेला दिसालुरकान कपाडा पनरीमा मानफात अताओ आहली वारिस दिमिकियान पुला स्कीमा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना मंबरीकान संतुनान सबेसार दुआ रातु श्री रूपी इंडिया कपाडा कलवारगा पसरताजी का तरजादी कमत्रियान ट्रागिस दंगन प्रेमी ताहुना निहानिया एम्पात रातु स्तिगा पुलु एनाम रूपी इंडिया लेबी दारी दुआ रातु स्तुजु पुलु जुता औरंग तेला बरगाम्बुंग दलाम स्कीमा इनी सजुता इनी सकितार सातु जुता सरातु श्री रूपी इंडिया कलवारगा तेला मनरीमा बांतुआन दंगन टोटल नीलाई सकितार दुआ पुलु दुआ मिलिया रूपी इंडिया इसके मा इन तिलह मंबांतु कलवारगा बियासा उन्तुक तताप मंगेजार इंपियान मरेका मेक्सकीपुन हारुस क हिलांगान औरंग यंग दी चिंताई बापा मोदी मंगिम्बाओ समूह औरंग उन्तुक बरबेगाई इन्फॉर्मासी मंगेनाय प्रोग्राम इनी देंगान कलवारगा मरेका प्रधानमंत्री मनियाताकान बाबा तखियुल मरुपाकान फेनोमेना यंग तिलह अदा सलामा रिबुआन ताहुन हाल इनी बुकंस केदार अंकापान कल कलीरू मलाईकान जुगा मनिम्बुलकान रासा ताकुत

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रपति दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमरीका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगे। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया।
1: परेड में भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था। ये भारत और सेशल्स की करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के अंतर्गत युद्धपोत INS तरकश और सर्वेक्षण पोत INS इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया था। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी के निमंत्रण पर सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर हैं। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच करीबी और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी तथा सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि भी करेगी। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और तरक्की को महत्व देता है। उन्होंने कहा कि मॉरिशस को स्वास्थ्य, संपर्क, सतत विकास और समुद्री संसाधनों के प्रबंधन में योगदान देना जारी रहेगा। दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत के विजन महासागर और पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की नीति के तहत भारत मॉरिशस मजबूत रणनीतिक साझेदारी के महत्व और ग्लोबल साउथ के लिए साझा प्रतिबद्धता पर सहमति प्रकट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया।
2: सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी से मिले इस सम्मान से टिकाऊ विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी के लंबे समय से जारी प्रयास और उनके ग्रीन विजन को मान्यता मिली है। यह सम्मान टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री को मिले ऐसे ही कई सम्मानों की कड़ी में एक और उपलब्धि है। इनमें खाद्य और कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार शामिल है। इस सम्मान से पता चलता है कि सेशल्स हिंद महासागर क्षेत्र में क्षमता निर्माण, पर्यावरण संबंधी कार्यों, टिकाऊ विकास के प्रयासों और साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में भारत की बढ़ती भूमिका को भरोसेमंद साझेदार के तौर पर अत्यधिक महत्व देता है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मोज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
3: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश

0: फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि हॉर्मुज जल डमरूमध से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अमीषा।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। इस दौरान एथेंस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भारतीय और ग्रीक उद्योग जगत के नेताओं के साथ बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रक्षा, खाद्य और कृषि जैसे विषयों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पदक प्रदान करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता अलंकरण प्रदान करेंगे। ये अलंकरण असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ने 8 जून को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पदक प्रदान किए थे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चों के जीवन विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ये कार्यक्रम जन्म से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए घर और समुदाय में ही स्वास्थ्य सेवाएं देगा। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर और मनसुख मांडविया तथा राज्य सरकार की कई मंत्री और विभिन्न देशों के राजनयिक हिस्सा लेंगे।
2: 150 से अधिक विशेषज्ञ और जापान, सिंगापुर, UAE, यूक्रेन और रवांडा जैसे भागीदार देशों के प्रतिनिधि मध्य गुजरात के आर्थिक विकास पर मंथन करेंगे। इसके साथ ही सम्मेलन में आयोजित भव्य प्रदर्शनी के 150 से अधिक स्टॉल, स्थानीय MSME, उन्नत तकनीकी स्टार्टअप और अमूल एवं GFSC जैसे बड़े उद्यमों की क्षमता और नवाचार को प्रदर्शित करेंगे। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, वडोदरा।
1: महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंतर्राज्यीय परीक्षा रैकेट शामिल 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।
3: जांच अधिकारियों ने लीक हुए प्रश्न पत्र के स्रोत का पता लगाने, वित्तीय लेन देन की जांच करने, महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में बेचे जाने की छानबीन कराने तथा इस रैकेट में शामिल अन्य लोगों की पहचान कराने के लिए 10 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की थी। TET परीक्षा जो रविवार 28 जून को आयोजित होने वाली थी, भिवंडी पुलिस द्वारा परीक्षा से 1 दिन पहले पेपर लीक का भंडाफोड़ किए जाने के बाद स्थगित कर दी गई। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ACB ने दवाओं, सर्जिकल सामान और मेडिकल उपकरणों की खरीद में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के आरोप के मामलों में तत्कालीन स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक डॉ. वत्सला अग्रवाल और केंद्रीय खरीद एजेंसी के उपलेखा नियंत्रक नीरज चोपड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। उड़ीसा की पूरी तीर्थ नगरी में आज सवेरे श्री जगन्नाथ मंदिर में देव स्नान यात्रा के अवसर पर लाखों श्रद्धालु जुटे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र स्नान उत्सव है।
4: सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भाई बहन देवताओं को गर्भगृह से औपचारिक रूप से स्नान वेदी तक ले जाया गया। वहां वैदिक मंत्रों के उच्चारण, शंख की ध्वनि और भक्ति संगीत के बीच पवित्र जल के 108 घड़ों से उनका स्नान कराया जाएगा। देव स्नान पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मनाया जाने वाला यह त्योहार वार्षिक रथ यात्रा से पहले देवताओं के सार्वजनिक दर्शन का मौका होता है। उत्सव को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बढ़े भूस्खलन से गाई नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है।
5: धेमाजी जिला प्रशासन ने तत्काल जन सुरक्षा परामर्श जारी करते हुए चेतावनी दी है कि यदि अवरुद्ध जल अचानक नीचे की ओर प्रवाहित होता है तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

0: नदी तटों, नालों, अर्द्रभूमियों, तटबंधों तथा अन्य निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों से सरकारी निर्देशों और आधिकारिक सूचनाओं पर लगातार नजर रखने, स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग करने तथा आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए तैयार रहने को कहा है। इस बीच बाहरी क्षेत्रों से आए तेज बहाव के पानी ने जिले के जोनाइको डिस्ट्रिक्ट के कई हिस्सों को जलमग्न कर दिया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं दिल्ली, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में कल तक लू की स्थिति बनी रहेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ. रजनीश भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विशेष संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112371 7 0112371 7 0116 और 0112334444। खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न कर लिया है। लंदन में निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। उधर आयरलैंड ने दूसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 1 रन से हरा दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा से जुड़ा समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने प्रधानमंत्री मोदी के शब्द दिए हैं, हिंद महासागर को अवसरों का महासागर बनाना लक्ष्य। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने सेशल्स में कहा, समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में छापेमारी का समाचार भी कई समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है, आरोपियों के ठिकानों से संपत्ति के दस्तावेज जब्त। दैनिक जागरण के शब्द हैं, 6 आरोपियों के साथ ठिकानों पर छापेमारी। आरोपी राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के घर से आभूषण और नकदी बरामद। राजधानी दिल्ली में दोपहर में 51 डिग्री वाली तपिश, जून में पहली बार लू। कल और परसों आंधी बारिश का येलो अलर्ट। 2 जुलाई से गर्मी से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद, नव भारत टाइम्स की खबर है। देशबंधु ने बढ़ते तापमान और कम बर्फबारी का समाचार प्रकाशित किया है। गर्मी की मार से तेजी से पिघल रहा हिमलिंग, अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं और प्रशासन की बढ़ी चिंता। हिंदुस्तान ने मानसून में देरी पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है, समस्या बढ़ाएगा कमजोर मानसून। पत्र लिखता है, भारत में चावल का पर्याप्त सरकारी भंडार है और वो मुख्य खरीफ फसल में कमी को पूरा कर सकता है, अलबत्ता दलहन और तिलहन पर अलनीनो का असर पड़ेगा। लोकसत्य ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से मची तबाही के समाचार सचित्र दिए हैं। पत्र लिखता है, 1,500 से अधिक विदेशी बचाव कर्मी पहुंचे, चारों ओर नजर आ रहा तबाही का मंजर। ईरान का ऐलान, अगले 30 दिन होर्मुज पर हमारा कब्जा, बहरीन कुवैत पर फिर हमला। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेताया, ईरान नहीं सुधरा तो वजूद मिटा देंगे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। राजस्थान पत्रिका ने अनोखा फॉर्मूला शीर्षक से नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के विशेषज्ञों की अपील से जुड़ा समाचार दिया है। पत्र लिखता है, माँ के लिए चाय की प्याली हो, बच्चे की सेहत की रखवाली भी हो, माँ को चाय में फॉलिक एसिड और विटामिन B12 देने का सुझाव, अपंगता की बीमारी से बच सकेंगे नवजात।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के कौमी दिन की तकरीबात में एजाजी मेहमान के तौर पर शिरकत की। उन्होंने मॉरिशस के अपने हम मनसब नवीन चंद्र राम गुलाम से भी बातचीत की। अमरीका और ईरान एक दूसरे पर हमलों का सिलसिला रोकने और कल से बातचीत दोबारा शुरू करने पर रजामंद हो गए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दिफा से मुतालिक एक तकरीब में बहादुरी इनामात अदा करेंगी। भारत के महकमाए मौसमियात ने आज जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में बहुत शदीद बारिश के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है। और हॉकी में भारत ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग की अपनी मुहिम जीत के इशारे के साथ मुकम्मल कर ली है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सेशल्स की आजादी के 50 साल पूरे होने के मौके पर वहां के कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत की। जनाब मोदी ने इस तकरीब में एजाजी मेहमान के तौर पर शिरकत की। इस तरह वो भारत के पहले वजीर आजम हैं जिन्हें ये एजाज दिया गया है। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: इस परेड में भारतीय बहरिया और फौज की टीमों पर मुश्तमिल एक दस्ते ने शिरकत की। भारत के एक बहरी बैंड ने भी शिरकत की है जिससे भारत और सेशल्स के दरमियान करीबी शराकतदारी का इजहार होता है। एक खसूसी इशारे के तौर पर INS तरकश और INS अक्षक को पोर्ट विक्टोरिया पर लंगरअंदाज किया गया है जिससे सेशल्स के साथ भारत की देरीना दोस्ती का अंदाजा होता है। वजीर आजम मोदी ने इस तारीखी मौके पर सेशल्स के आवाम को भारत की नेक ख्वाहिशात पेश की। जनाब मोदी सेशल्स के सदर पैट्रिक हर्मनी की दावत पर हफ्ते के रोज सेशल्स पहुंचे थे। वजीर खारजा एस जयशंकर, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल और मॉरिशस के वजीर आजम नवीन चंद्र राम गुलाम भी इस मौके पर मौजूद थे। वजारत खारजा के मुताबिक भारत और सेशल्स के दरमियान देरीना दोस्ती है जिसकी जड़ें मुश्तरक तारीखी, सकाफती और अवाम से अवाम के दरमियान रिश्तों से वाबस्ता हैं। भारतीय बहर हिंद खित्ते में एक अहम समंदरी पड़ोसी के तौर पर सेशल्स का मकाम भारत के विजन महासागर और आलमी जुनूब के तई भारत के अहद में खसूसी हैसियत का हामिल है। वजारत खारजा ने बताया कि जनाब मोदी के इस दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत और पायदार दोस्ती का इयादा होता है और मुख्तलिफ शोबों में दोतरफा ताल्लुकात को फरोग देने में दोनों मुल्कों के मुश्तरक अहद का भी इयादा होता है। आशीष अब्राहम की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शगुफ्ता यास्मीन।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के अपने हम मनसब डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने भारत और मॉरिशस के दरमियान मौजूदा तआवुन और इश्तराक पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने भारत की जानिब से दिए गए खसूसी मुआशी पैकेज के निफाज में हुई पेशरफ्त का भी जायजा लिया। दोनों रहनुमाओं ने भारत के विजन महासागर और पड़ोसी मुकदम की पॉलिसी के तहत भारत मॉरिशस की बढ़ती हुई स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की अहमियत से इत्तेफाक किया और आलमी खित्ते जनूब के तई अपने मुश्तरक अहद से भी इत्तेफाक किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को सेशल्स का माहौलियाती तहफ्फुज़ और मुस्तकिल तरक्की के मैदान में आला तरीन क़यादत पर गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन अवार्ड से नवाजा गया है। यह अवार्ड सेशल्स के सदर पैट्रिक हर्मनी के हाथों दिया गया है जिसके तहत मुस्तकिल तरक्की और जनाब मोदी के माहौल के लिए साजगार तसव्वुर का एतराफ़ किया गया है। जनाब मोदी ने इस अवार्ड से नवाजे जाने के बाद सेशल्स के अवाम और हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। अमरीका और ईरान कतर की राजधानी दोहा में इस बात पर रजामंद हो गए हैं कि एक दूसरे के खिलाफ हमले रोक दिए जाएं और कल से बातचीत का सिलसिला दोबारा शुरू किया जाए। इस कदम का मकसद कई दिन से जारी इस फौजी कार्रवाई को रोकना है जिसकी वजह से जंगबंदी को खतरा लाहिक हो गया था और आबनाई हुरमुज से मुतालिक तनाजे को हल करना है। ये ऐलान आबनाई हुरमुज के आसपास कई हमलों के बाद

0: आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में बहादुरी से मुतालिक 2026 की दिफा की दूसरी तकरीब में बहादुरी इनामात अदा करेंगी। वो दिफाई अफवाज, मरकजी मुसल्ला पुलिस दस्तों और रियासतों मरकज के जेर इंतजाम पुलिस के अमले को बहादुरी के इनामात शाम 5 बजे अदा करेंगी। ये इनामात मुसल्ला दस्तों, मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्सेस और दीगर हिफाजती एजेंसियों के अमले के बहादुरी के गैर मामूली कारनामों को तस्लीम करते हुए दिए जाते हैं। इन इनामात से पूरे जम्मू और कश्मीर, शिमाल मशरक और मुल्क की सरहदों पर दहशतगर्दी, शोरिश पसंदी और मुखासिमाना धमकियों की रोकथाम के लिए भारत की लगातार जद्दोजहद की अक्कासी होती है। नीज एविएशन, समंदरी कार्रवाइयों और इंसानी हमदर्दी वाले मिशनों में गैर मामूली हौसले के इकदाम उजागर होते हैं। सदर मुर्मू ने इससे पहले इस तकरीब के पहले मरहले में भी बहादुरी इनामात अदा किए थे। ये तकरीब राष्ट्रपति भवन में इस माह की 8 तारीख को मुनक्किद की गई थी। गुजरात के वडोदरा शहर में आज GSFC यूनिवर्सिटी में 4थी दरख्शां गुजरात इलाकाई कॉन्फ्रेंस का आगाज होगा, जिसका उनवान है रीजनल एस्पिरेशंस ग्लोबल एम्बिशन। मरकजी वुजरा राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर, मनसुख मांडविया, अहम रियासती वुजरा और आलमी सिफारतकार इस 2 रोजा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस का मकसद वस्ती गुजरात के खित्ते में सनअती तरक्की की रफ्तार तेज करना है। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: इस 2 रोजा कॉन्फ्रेंस में 30 से ज्यादा सेमिनार मुनक्किद किए जाएंगे, जिनमें जापान, सिंगापुर, मुत्तहिदा अरब अमारात, यूक्रेन और रवांडा समेत शराकत दार मुल्कों के 151 माहिरीन और मंदूबीन शिरकत करेंगे। मरकजी गुजरात की इकतसादी तरक्की पर मरकूज इस कॉन्फ्रेंस में मुल्क के लिए तैयार शोबों पर तवज्जो दी जाएगी, जिनमें सेमी कंडक्टर लॉजिस्टिक्स, माहौलियात के लिए साजगार हाइड्रोजन, क्वांटम टेक्नोलॉजी, ज़राअत, खला, दिफा और मसनूई जहानत के इस्तेमाल पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। 150 से ज्यादा स्टॉल्स पर मुश्तमिल इस बड़ी नुमाइश में इलाकाई MSMEs, तरक्की याफ्ता टेक स्टार्टअप्स और कुछ बड़ी कंपनियां जैसे अमूल और GSFC वगैरह हिस्सा लेंगी। वडोदरा से अपर्णा खुन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भिवंडी में एक सेशंस अदालत ने उन 3 मुलजिमों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है, जिन्हें महाराष्ट्र टीचर अहलियत इम्तिहान टेट के पेपर लीक केस में गिरफ्तार किया गया था। तफ्तीशकारों को शक है कि ये लोग इम्तिहान के बैन रियासती रैकेट में मुलव्विस हैं। तफसील हमारे नामा निगार से।
2: भिवंडी पुलिस ने अदालत को बताया कि मुलजिमीन इफ्शा किए गए TET सवालनामे को 1,50,00,000 रुपए में बेचने के लिए दिल्ली से भिवंडी गए थे। ये पेपर असल में कहां से इफ्शा हुआ, तफ्तीशकारों ने यह जानने के लिए इन लोगों को 10 दिन के लिए पुलिस हिरासत में तलब किया है। पुलिस इस सिलसिले में माली लेनदेन के बारे में जानना चाहती है और ये जानना चाहती है कि आया ये पेपर महाराष्ट्र में किसी और जगह भी फरोख्त किया गया है। पुलिस रैकेट के दीगर अरकान की भी शिनाख्त करने की कोशिश कर रही है। पुलिस अफसरान ने बताया कि अब वो इस सिलसिले में 2 मफरूर मुलजिमीन को तलाश कर रहे हैं। TET इम्तिहान इतवार 28 जून को होना था, लेकिन इस केस की वजह से इसे मुलतवी कर दिया गया। इस वाकये के बाद महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने हफ्ते को एक खसूसी तफ्तीशी टीम तश्कील देने का हुक्म दिया है। मुंबई से शैलजा तिवाली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शगुफ्ता यास्मीन।
0: ओडिशा में आज सुबह लाखों की तादाद में अकीदतमंद पुरी पहुंचे। आज श्री जगन्नाथ मंदिर में पवित्र देव स्नान यात्रा या स्नान यात्रा रिवायती शानो शौकत के साथ मुनक्किद की जा रही है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: भगवान जगन्नाथ, भगवान बालभद्र और देवी सुभद्रा की पवित्र स्नान यात्रा में शामिल होने के लिए अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में यकजा हुई। सदियों पुरानी रिवायत के मुताबिक तीनों देवताओं को रस्मी तौर पर स्नान बेड़ी तक लाया गया, जहां वैदिक मंत्रों के जाप, शंखों की आवाज और भजनों के साथ उन्हें स्नान कराया जाएगा। मस्कूरा त्यौहार देव स्नान पूर्णिमा के पवित्र मौके पर मनाया जाता है और सालाना रथ यात्रा से कबल इन तीनों देवताओं के दर्शन किए जाते हैं। अजीम शान रथ यात्रा आइंदा महीने की 16 तारीख से शुरू होगी। इस दौरान सिक्योरिटी के वसीतर इंतजाम किए गए हैं। आकाशवाणी न्यूज भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने आज सिक्किम और मगरबी बंगाल के सैली हिमालयाई खित्ते में बहुत शदीद और कहीं कहीं इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे के मुताबिक गुजरात के कुछ हिस्सों, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार,

0: उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आइंदा 2 से 3 दिन के दौरान जनूबी मगरबी मानसून की मजीद पेशरफ्त के लिए हालात साजगार हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों, आसाम, मेघालय, केरला और माहे में आइंदा 2 दिन के दौरान शदीद से बहुत शदीद बारिश होने का इम्कान है। आसाम के धेमाजी जिले में बड़े पैमाने पर सैलाब आ जाने के खतरात बढ़ गए हैं। खबरें हैं कि अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाके में गाई नदी के बहाव में आरजी तौर पर रुकावट आ गई है। समझा जाता है कि ये रुकावट बड़े पैमाने पर जमीनी तौदे खिसकने की वजह से आई है। खित्ते में तौदे खिसकने का ये हादसा कई दिन की शदीद बारिश की वजह से पेश आया है। एक रिपोर्ट।
1: धेमाजी जिला इंतजामिया ने लोगों के लिए एक फौरी हिदायत जारी की है और उन्हें खबरदार किया है कि जो पानी यहां जमा हो गया है, अगर उसे आगे जाने दिया जाए तो अचानक सैलाब आ सकता है। यहां दरिया, झरनों, दलदली जमीनों, पानी के जखीरों और दीगर नशेबी इलाकों के पास रहने वालों से कहा गया है कि वो चौकन्ना रहें। कुदरती आफत की सूरत में बंदोबस्त से मुतालिक जिला अथॉरिटी ने लोगों से जोर देकर कहा है कि वो सरकार की तरफ से जारी की गई हिदायत पर सख्ती से अमल करें, मकामी हुक्काम के साथ तआवुन करें और अगर जरूरी हो तो महफूज तर जगहों पर मुंतकिल हो जाएं। इसी दौरान पहाड़ी इलाकों पर मूसलाधार बारिश की वजह से जिले के कुछ इलाके पानी में डूब गए हैं और यहाँ पानी कौमी शाहरा नंबर 515 के निशान से ऊपर बह रहा है, जिसकी वजह से गाड़ियों की आमदोरफ्त में रुकावट आ गई है। इस बढ़ते हुए सैलाब से घर और खेत पानी में डूब गए हैं, जिसकी वजह से इमलाक और खड़ी फसलों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: कल लंदन में खेले गए FIH हॉकी प्रो लीग के मुकाबले में भारत ने शानदार दिफाई मुजाहिमत का मुजाहिरा करते हुए इंग्लैंड को 3-2 से शिकस्त दी। इससे पहले मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ था, जिसके बाद मस्कूरा गोल पेनल्टी शूटआउट में किए गए। इस जीत के साथ ही आइंदा हॉकी आलमी कप से कबल भारतीय टीम के एतमाद में इजाफा हुआ है। फीफा आलमी कप के नॉकआउट मरहले में अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा ने जनूबी अफ्रीका को 1-0 से शिकस्त दी। ये कनाडा की किसी फीफा आलमी कप के किसी नॉकआउट मुकाबले में सबसे पहली जीत है। आकाशवाणी का खबरों का शोभा हिंदी और अंग्रेजी में बराह रास्त नश्र होने वाले अपने फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे छोटे कारोबारियों के लिए बढ़ते हुए छोटे कारोबार और मौके के मौजू पर एक तफसीली मुजाकिरा नश्र करेगा। ये मुजाकिरा MSME की वजारत के एडिशनल सेक्रेटरी एंड डेवलपमेंट कमिश्नर डॉक्टर रजनीश के साथ किया जाएगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं शगुफ्ता यास्मीन।
2: शुक्रिया नितिका। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले अहम उर्दू अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सेशल्स दौरे को अपने सफाई अव्वल की नुमाया खबर के तौर पर शाया किया है। रोजनामा इनकलाब ने वजीर आजम मोदी के बयान को अपनी शहसुर्खी बनाया है कि बहरुल काहिल की सलामती और खुशहाली हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी। सेशल्स के साथ ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाने का वक्त, दोनों ममालिक के दरमियान मुतअद्दद अहम माहदों पर दस्तखत। रोजनामा प्रताप की शहसुर्खी है, पीएम मोदी को सेशेल्स ने मुल्क के आला तरीन एजाज से नवाजा। रोजनामा इनकलाब ने प्रोग्राम मन की बात के ताल्लुक से वजीर आजम के इस बयान को नुमाया अहमियत के साथ शाया किया है कि समंदर से आसमान तक हिंदुस्तान महफूज और आत्मनिर्भर बन रहा है। कुछ अहम बैन अलावामी खबरें इस तरह हैं, जंगबंदी माहदे की दोबारा खिलाफ वर्जी, ईरान अमरीका फिर आमने सामने, कशीदगी में इजाफा, साबिक वजीर आजम शेख हसीना का बांग्लादेश वापसी का ऐलान, इबोला वायरस की वजह से सऊदी अरब ने 3 ममालिक पर सफरी पाबंदियां आयद की।
0: और अब आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के कौमी दिन की तकरीबात में एजाजी मेहमान के तौर पर शिरकत की। उन्होंने मॉरिशस के अपने हम मनसब नवीन चंद्र राम गुलाम से बातचीत की। अमरीका और ईरान एक दूसरे पर हमलों का सिलसिला रोकने और कल से बातचीत दोबारा शुरू करने पर रजामंद हो गए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दिफा से मुतालिक एक तकरीब में बहादुरी इनामात अता करेंगी। भारत के महकमाए मौसमियात ने आज सैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में बहुत शदीद बारिश के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है। और हॉकी में भारत ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग की अपनी मुहिम जीत के इशारे के साथ मुकम्मल कर ली है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366

3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। अब प्रस्तुत है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे दिव्यांश श्रीवास्तव से संतूर वादन राग बसंत मुखरी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे संतूर पर बजाया राग बसंत मुखारी। कलाकार थे दिव्यांश श्रीवास्तव। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर।

प्रस्तुत है कार्यक्रम अवर गेस्ट। आज इस कार्यक्रम में सुनिए स्वस्थ शरीर और मन के लिए योग। योग विशेषज्ञ कविता दत्ता से बात कर रहे हैं नीतीश अरोड़ा।

Ma.

يد الله فوق

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। समारोह में आयोजित परेड में भारतीय नौसेना और थलसेना की टुकड़ियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS तरकश और INS रिक्षक विक्टोरिया में तैनात थे। प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की जनता को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। समारोह में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम भी मौजूद थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में सेशल्स भारत के विजन महासागर का एक अहम साझेदार है और इस यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की। साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और प्रगति को विशेष महत्व देता है। प्रधानमंत्री को सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू हराइजन दिया गया है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी ने उन्हें यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और ब्लू इकॉनमी को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी को इससे पहले भी सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। इनमें संयुक्त

0: राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य तथा कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और शिलू नागू की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। श्री अमरनाथ जी यात्रा जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तीर्थयात्रा के आधिकारिक प्रारंभ से पहले सुरक्षा व्यवस्था, काफिले की आवाजाही और समग्र तैयारियों की समीक्षा की गई। असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह से अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बड़े भूस्खलन से गाय नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है। अमेरिका और ईरान ने जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई है। इस वार्ता का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक 152 अंक गिरकर 76,948 पर और निफ्टी 26 अंक कम होकर 24,030 पर आ गया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi attended the National Day celebrations marking the 50th anniversary of independence of Seychelles. Mr. Modi attended the celebrations as the guest of honour, becoming the first Indian Prime Minister to be accorded this honour. An Indian marching contingent comprising Navy and Army teams participated in the parade. An Indian Naval Band also formed part of the Indian marching unit, underlining the close and special India-Seychelles partnership. In a special gesture, INS Tarkash and INS Ikshak were docked at Port Victoria, highlighting India's long-standing friendship with Seychelles. PM Modi conveyed India's warm wishes to the people of Seychelles on this historic occasion. Prime Minister Modi was conferred the Guardian of the Blue Horizon, Seychelles' highest distinction, for leadership in environmental conservation and sustainable development. President Draupadi Murmu will present gallantry awards at the second Defence Investiture Ceremony of 2026 at Rashtrapati Bhavan in New Delhi today. The President will confer gallantry awards to personnel of the Defence Forces, Central Armed Police Forces and State UT Police at 5 p.m. These awards are given away in recognition of exceptional acts of bravery by personnel of the Armed Forces, Central Armed Police Forces and other security agencies. The Supreme Court today refused an urgent hearing on a PIL seeking a court-monitored probe and forensic audit into alleged financial irregularities and donations received by the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust. The bench of Justices M.M. Sundaresh and Sheel Nagu questioned the urgency

London. लेकर ढेर सारी जानकारियां और मनोरंजन प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम घर आंगन। नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी कल्पना और आप हमें सुन रहे हैं एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, साथ ही इंद्रप्रस्थ चैनल यानी कि मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर भी। और दोस्तों, रोजाना की तरह आज भी हमारे पास आपके लिए एक प्रश्न है। वो प्रश्न ये है कि आपने सबसे पहली भारतीय डिश क्या बनाई और उस पर आपको क्या मजेदार कमेंट मिला था। हमें भेज दीजिए अपने उत्तर। हमारी ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com।

mail.com। और दोस्तों चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से दोहे के साथ। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहुं शीतल होए। यानी हमें सदैव ऐसी बातें करनी चाहिए, ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिन्हें सुनकर दूसरे लोग खुश हों और हम भी खुश हों। आज है संत कबीरदास जी की जयंती और उनके विचार आज भी हमें सत्य, समानता और मानवता का मार्ग दिखाते हैं। कबीर के दोहे केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन को बेहतर बनाने की सीख है। समय का सदुपयोग, आत्मचिंतन, गुरु का सम्मान और मधुर वाणी का महत्व, उनकी ये शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी सदियों पहले थी। सच है ना, हम उनकी सीखों से रोजमर्रा के जीवन में ऐसे बंधे हैं कि उन्हें भूलना या उनसे दूर जाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है।

दोस्तों, ये खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे धरती कहे पुकार के फिल्म से, और जिसे गाया लता मंगेशकर और मुकेश ने। और चलिए देखते हैं कि हमारे किसी श्रोता ने हमें ईमेल किया है क्या। जी हाँ, बिल्कुल, नवीन भाटिया जी हमारे नियमित श्रोता हैं और उन्होंने हमें ईमेल किया है कि दाल चावल बनाए थे और डैडी ने काफ़ी पसंद किया था और हम दोनों ने काफ़ी चाव से खाया था। अरे वाह, तो जल्दी से आप भी दोस्तों, जो आप कार्यक्रम अभी जिसने सुनना शुरू किया है वो भी, उनके लिए प्रश्न ये है, आपको याद दिला दूँ कि भाई आपने पहली भारतीय डिश जो है वो क्या बनाई थी और उस पर आपको क्या मज़ेदार कॉमेंट्स मिले थे, तो वो आपको हमें ईमेल करना है fmgoldga@gmail.com पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको एक शेर सुनाती हूँ कि जिस घर में एक स्त्री हिम्मत से खड़ी रहती है वहाँ उम्मीद हर मुश्किल से बड़ी रहती है। जी हाँ दोस्तों, पीढ़ी दर पीढ़ी स्त्रियों के अपने कठिन संघर्ष रहे हैं, लेकिन उन संघर्षों से जूझते हुए

हर युग में स्त्रियों ने खुद को मजबूती से स्थापित किया है। एक समय था जब स्त्रियां शिक्षा से भी वंचित रहीं, और तब भी उन स्त्रियों ने पूरी मेहनत, लगन और समर्पण के साथ अपना घर संभालना सीखा। लेकिन जब समय बदला और स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करने लगीं, आत्मनिर्भर बनने लगीं, तब इन स्त्रियों ने संभाला अपना घर भी और दफ्तर भी। बिना कहीं कमजोर पड़े पूरी क्षमता से दोनों जगह 100% जिम्मेदारी निभाई। यानी इन स्त्रियों ने एक के बाद दूसरी, फिर तीसरी जिम्मेदारी संभालने का साहस किया। उन्होंने कुछ छोड़कर आगे बढ़ जाने की बजाय अपने सीखने का क्रम बढ़ाया, अपनी क्षमताएं बढ़ाई और हर राह पर बड़े प्यार से आगे बढ़ती चली गई, चलती ही गईं।

दोस्तों अभी आप ये प्यारा सा गीत सुन रहे थे पड़ोसन फिल्म से, जिसे गाया लता मंगेशकर और आशा भोसले जी ने। तो चलिए आज आपको एक बहुत अच्छी सी जानकारी देती हूँ, जिसे सुनकर निश्चित रूप से आपको गर्व महसूस होगा। ये राजस्थान के एक गांव की कहानी है। उस गांव ने ये साबित कर दिया कि बेटी जीवन की हरियाली है, घर की फुलवारी है और आंगन की तुलसी है। राजस्थान के पिपलांत्री गाँव के श्याम सुंदर जी ने बेटी के जन्म पर 111 पौधे लगाकर पौधे लगाने की परंपरा का सूत्रपात किया।

तो गांव के अन्य लोग भी इससे जुड़े। ये पहल सिर्फ पर्यावरण के लिए लाभदायक नहीं बल्कि बेटी के भविष्य को सुरक्षित करने की सोच भी बनी। समय के साथ इस परंपरा के कारण ही लगभग 3 लाख से अधिक पेड़ लगाकर गांव वालों ने गांव की बंजर जमीन को हरा भरा बना दिया, जिससे बरसात और पानी का स्तर भी सुधरा। और देखो ना, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक पेड़ माँ के नाम पहल चलाकर हम सबको प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण से जोड़ दिया। और मुझे तो यही लगता है कि शायद असली नारी सशक्तिकरण यही है, जब बेटियों का महिलाओं का सम्मान सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से होता है। और मुझे 4 पंक्तियां याद आती हैं कि माता पिता की जान है अभिमान बेटियां, ईश्वर का सबसे कीमती वरदान बेटियां, शोभा है दो कुलों की ये बोझा न मानिए, देते हैं भाग्य वालों को भगवान बेटियां।

दोस्तों, ये प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे कभी कभी फिल्म से, जिसे गाया लता मंगेशकर जी ने। और आइए अब फिर से हम चेक कर लेते हैं, भाई हमारे श्रोता हमसे जुड़े हैं तो हमें मेल कर रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं। ये ईमेल भेजा है गौरव खारी जी ने, वो लिखते हैं, मैंने सबसे पहले भारतीय खाने में आलू के पराठे बनाने की कोशिश की थी, जो कि सिर्फ मैं अकेला ही खा पाया। कोई बात नहीं, कई बार ऐसे अनुभव भी हो जाते हैं कि फिर बाद में अच्छा बनने लगता है, शुरुआत में तो थोड़ी बहुत भूलचूक हो जाती है। चरणदास जी लिखते हैं, ये हमारे रेगुलर लिसनर हैं, और ये भी लिखते हैं कि भारतीय खाना खाकर इनको बड़ा मज़ा आता है, और बनाने का तो इन्होंने कुछ नहीं लिखा है, पर चलिए धन्यवाद, आप जुड़े हैं, ये बहुत अच्छी बात है। भावना शर्मा जी लिखती हैं कि मैंने पहली बार शाही पनीर बनाया था, फर्स्ट टाइम मेरे पापा ने मुझे गाइड किया था, और सबकी मम्मी शिकायत करती है मेरे पापा

ने मुझे खाना बनाना सिखाया था। कितनी अच्छी बात है ना कि आपने पापा से खाना बनाना सीखा। वैसे आजकल तो कुकिंग हर कोई करता है। भास्विता लिखती हैं कि मैंने पहली डिश कढ़ी बनाई थी। बोलते हैं कि मुश्किल होती है पर बना दी थी मैंने और अच्छी बनी थी, ऐसा खाने वाले बोल रहे थे। अरे वाह, आपको बहुत बधाई, आपने पहली बार में ही बढ़िया बना दी। और ये अताशी गोयल हैं, लिखती हैं कि शुरुआत भले छोटी थी लेकिन मेहनत और अपनापन इतना था कि पहली चाय ने ही सबका दिल जीत लिया। चलो भाई, आपने चाय बनाई बहुत अच्छी बात है और सबका दिल जीता ये उससे भी अच्छी बात है। भूमिका जी लिखती हैं, जब मैं छोटी थी तो मेरे गाँव घर के बगल में एक दादी रहती थी, मैंने सबसे पहले उनके यहाँ चूल्हे पर परांठा बनाया था, लेकिन गलती है कि मुझे बनाना नहीं आता था तो मैं उसे रोटी की तरह सेकने लगी जिससे मुझे डांट पड़ी, लेकिन बाद में सीख गई। अब मैं आलू के पराठे काफ़ी अच्छे बनाती हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। चलो अब आप सीख गई। तो ऐसे ही हमारे अन्य श्रोता, देखिए राधा शुक्ला जुड़ी हैं तो वो भी कह रही कि भाई हमने दाल चावल बनाया था, तो लग रहा है दाल चावल और आलू के पराठे बनाने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो बढ़िया है, आप जो लोग जुड़े हैं, जो सुन रहे हैं हमारे अन्य श्रोता, वो भी हमें ईमेल करें और भेज दें कि भाई उन्होंने पहली भारतीय डिश क्या बनाई थी। हमें ईमेल कर दीजिए, हमारी ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। और तब तक आपको सुनाती हूँ ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, ये खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे हीर रांझा फिल्म से, जिसे गाया लता मंगेशकर ने। तन्हाई में करनी तो है एक बात किसी से, लेकिन वो किसी वक्त अकेला नहीं होता। तो दोस्तों, कभी कभी थोड़ी देर के लिए एकांत भी चुनना ज़रूरी है, ताकि खुद को समझा जा सके, खुद से बातें की जा सके। और शायद यही कारण है कि आज के युवाओं को रूम रॉटिंग भारी है। युवाओं के लिए छुट्टी का मतलब अब भागदौड़ नहीं, बल्कि रुकना और आराम करना हो गया है। रूम रॉटिंग में युवा करते हैं आराम। चलिए बताती हूँ कि ये होता क्या है। किसी शांत जगह पर आराम करते हैं, देर तक बिना किसी दबाव के सोते हैं, बाहर जाने का दबाव नहीं लेते, बिना प्लान के दिन बिताते हैं, हल्की फुल्की बातें करते हैं और अपना मनपसंद खाना खाते हैं। आजकल के युवा बहुत तनाव, चुनौतियों और मानसिक स्वास्थ्य से जूझ रहे हैं। ऐसे में रूम रॉटिंग वाली छुट्टी उनके रिकवरी मोड को ऑन कर उन्हें आगे बेहतर करने के लिए तैयार करती है। और कितनी अच्छी बात है कि वे कुछ देर खुद के साथ रहते हैं, बिना दबाव के जीते हैं, शांत रहते हैं और सबसे ज़रूरी कि फ़ोन और सोशल मीडिया से भी दूरी बना लेते हैं, कुछ घंटे बस खुद के। अच्छी बात तो ये है कि ये युवा प्राकृतिक जीवन की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, डिजिटल डिटॉक्स करते हैं, हर बात में रील फोटो के लिए नहीं रुकते, बल्कि असली पल जीते हैं। कभी बालकनी में घंटों बैठ नज़ारे देखते हैं, कभी खुद से मनपसंद खाना बनाते हैं, कभी कुछ एक्सप्लोर करने निकल पड़ते हैं, तो कभी बस बगीचे की सैर से खुश हो जाते हैं। खुद के साथ खुश रखने का ये ट्रेंड खुद से कुछ कहने सुनने का भी अवसर देता है।

श्रोताओं, ये प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे फिल्म अलग अलग से, जिसे गाया लता मंगेशकर और किशोर कुमार जी ने। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अपने कुछ श्रोताओं के ईमेल और पढ़ते हैं। गौरी शंकर वर्मा जी ने हमें मेल किया है कि कल्पना बेटा राम राम सन 1974 की बात है, मैं और मेरी बड़ी बहन ने मिलकर हलवा बनाया। माँ कहीं गई हुई थी लेकिन वो खराब हो गया, बाद में फिर माँ ने सिखाया बस अब तो केवल हलवा बना सकते हैं और कोई चीज़ नहीं। कोई बात नहीं, आप हलवा बनाते हैं तो क्या हुआ, आप मिठास बांटते हैं, ऐसे ही बांटते रहिए। अगले हमारे जो श्रोता हैं वो लिखते हैं, अग्रसेन यादव जी हैं, और वो लिखते हैं कि प्रोग्राम अच्छा है, सॉन्ग सिलेक्शन भी अच्छा है और खाने पीने की बात का तो ये हिट प्रोग्राम है। थैंक यू, आप जुड़े हुए हैं। अक्षिका गोयल ने हमें लिखा है, इन्होंने कुछ शायराना अंदाज में लिखा है कि पहली चाय थी पर यादगार बन गई, मेहनत और प्यार से हर घूट खास बन गई, बहुत अच्छा। और ज्ञानेन्द्र दीक्षित जी हैं, वो हमें लिखते हैं कि डिश का नाम मटर पनीर, सबको बहुत पसंद आई थी और मेरी माता जी को सबसे ज़्यादा, क्या कहने। और हमारी जो रेगुलर लिसनर हैं दर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से, वो कह रही हैं कि भाई घर आंगन प्रोग्राम उन्हें अच्छा लग रहा है और कह रही हैं हमने भी सबसे पहले सूजी का हलवा बनाया था और सबने स्वाद से खाया था। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बना रहे हैं और अपने विचार हमारे साथ शेयर भी कर रहे हैं। हमारे जो अन्य श्रोता हैं वो भी हमें बताएं कि उन्होंने अपनी पहली भारतीय डिश कौन सी बनाई थी और उन्हें क्या कॉमेंट मिला था। हमें भेज दीजिए fmgoldga@gmail.com पर। और चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। आगन कार्यक्रम के माध्यम से हम सिर्फ आपसे मनोरंजक बातें, मधुर गीत, संगीत ही नहीं बल्कि आपकी फिक्र भी करते हैं और इसीलिए नई नई काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप रहें सुरक्षित। तो गर्मी का मौसम है तो ऐसे में कई बार हमारा मोबाइल ओवरहीट हो सकता है जिससे हम किसी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। हमारे बच्चे भी सुरक्षित रहें और हम भी, इसके लिए कुछ आसान से उपाय आपको बताती हूँ, छोटे छोटे जो करने हैं। आजकल के फास्ट चार्जर जो हैं वो मोबाइल को जल्दी चार्ज तो करते हैं लेकिन बहुत गर्म भी कर देते हैं। ऐसे में फ़ोन को किसी मोटे रबर या लेदर कवर में ढककर बिल्कुल चार्ज ना करें बल्कि कवर से निकाल कर चार्ज करें ताकि हीट बाहर निकल सके। नेविगेशन के लिए फ़ोन को सीधे धूप के संपर्क में ना रखें, यदि ज़्यादा देर रखना पड़े तो ऐसे में एसी वेंट वाले फोन होल्डर आते हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं।

जरूरत नहीं हो तो वाईफाई, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट और अन्य जो सेवाएं हैं वो बंद रखें। इससे फोन पर दबाव कम पड़ता है। साथ ही ऑटो ब्राइटनेस मोड ऑन रखें और गेमिंग जो है, हैवी गेमिंग, उससे बचें। फोन जरूरी चीज है, इसके बिना काम तो नहीं चल पाता, लेकिन इसे अपनी जिंदगी में शामिल करें पूरी सावधानी के साथ।

श्रोताओं, ये खूबसूरत संगीत आप सुन रहे थे हेमलता की आवाज में, फिल्म आप तो ऐसे ना थे। और वैसे तो गर्मी की छुट्टियों में सब कहीं ना कहीं घूमकर आ चुके हैं, लेकिन अगर आप नहीं गए हैं, और सबसे बड़ी बात अगर

आप आम के शौकीन है तो दिल्ली हाट जनकपुरी में 3 जुलाई से 5 जुलाई 2026 लगने वाला है मैंगो फेस्टिवल, जहां पर न सिर्फ आम की विभिन्न किस्में मिलने वाली हैं बल्कि आम से बने अलग अलग शेक्स, डेजर्ट्स, स्ट्रीट फूड और कैंडी भी होंगी। साथ ही सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और हस्त निर्मित सामान भी होगा जो आप खरीद सकते हैं। समय है दोपहर 12 बजे से रात के 9 बजे तक। तो 10 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए एंट्री फ्री है, बाकी सबके लिए 20 रुपए टिकट है। तो परिवार सहित एक बार घूम कर आइए, जनकपुरी ईस्ट उसका निकटतम मेट्रो स्टेशन है अगर आप मेट्रो से जा रहे हैं तो। इसके अलावा एक और सूचना यह है कि साथ ही अगर आप ब्यूटी पार्लर या स्किन केयर व्यवसाय से जुड़े हैं या इनमें रुचि रखते हैं तो प्रगति मैदान के भारत मंडपम में 29 यानी आज और 30 जून दो दिन सुबह 11 बजे से शाम 7:30 बजे तक लगा है ब्यूटी एक्सपो, जहां पर मेकअप, स्किन केयर, हेयर केयर के लाइव डेमो सेशन होंगे, नए प्रोडक्ट लॉन्च होंगे, साथ ही ब्यूटी उद्योग से जुड़े प्रोफेशनल्स से भी आप मिल सकते हैं। यहाँ पर एंट्री के लिए आपको 1500 रुपए रजिस्ट्रेशन शुल्क काउंटर पर ही देना होगा। तो जाइए और अपने हुनर को तराशिए ताकि किसी की खूबसूरती में आप 4 चांद लगा सकें।

दोस्तों, ये खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे लम्हे फिल्म से, जिसे गाया लता मंगेशकर ने। और आइए अब बात करेंगे इंडियन सुपर फूड के नाम से पहचान बनाने वाले मीठे रसीले फूल महुआ की। पहले पहल आदिवासी समुदायों द्वारा इसे उपयोग किया जाता था और आज ये महुआ उन परिवारों की आजीविका भी बन रहा है। हाँ, हम लोग थोड़ा थोड़ा इससे दूर हो चुके हैं, लेकिन अब समय है इसके पास जाने का और इसे अपनी प्लेट तक लाने का। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड के जंगलों में मिलने वाला ये फूल अब पारंपरिक उपयोग से आगे पहचान पा रहा है। आदिवासी समुदाय, ग्रामीण स्त्रियां और स्वयं सहायता समूह इसकी मदद से लड्डू, सिरप, कुकीज और अन्य उत्पाद जो हैं वो तैयार कर रहे हैं। महुआ के फूल, फल, तेल और छाल सहित लकड़ी के भी अपने अलग अलग और विशेष लाभ हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि इसमें स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार देने का काम किया है और खास तौर पर इससे लाभान्वित हो रही है हमारी महिलाएं, और इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। साथ ही जंगल की जो ये उपज है अब जो है ये आधुनिक बाजारों तक भी पहुंच रही है, तो लोगों में भी स्वदेशी उत्पाद खरीदने की जो भावना है वो प्रबल हो रही है। जंगल के इस मीठे मीठे फूल की ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और अब इस मीठे फूल की जानकारी के बाद हम सुनेंगे एक मीठा सा प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, ये खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे हैं अनपढ़ फिल्म से और जिसे गा रही हैं लता मंगेशकर जी। तो आज का घर आंगन कार्यक्रम जो है वो हमें यहीं संपन्न करना पड़ेगा क्योंकि घड़ी की सुइयां हमें आगे आपसे बात करने की इजाज़त नहीं देती, लेकिन अगली मुलाकात आपसे ज़रूर होगी, जल्दी होगी इसी कार्यक्रम में घर आंगन के साथ। सुनते रहिए इसे और जुड़े रहिए और मुझे दीजिए अनुमति, यानी आपकी रेडियो सखी कल्पना को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकी देश सेशल्स की अपनी यात्रा के तीसरे दिन आज विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनायगर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने पीस पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री 3 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पहले श्री मोदी ने कल सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लिया। ये सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ है। श्री मोदी विशिष्ट अतिथि के रूप में समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू हराइजन से सम्मानित किया गया। श्री मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स और भारत दोनों एक ऐसे विश्व के लिए प्रयासरत हैं जहां विकास अधिक समावेशी हो और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं समकालीन वास्तविकताओं पर ध्यान केंद्रित करें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जन विश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया जा रहा है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुकदमों को कम करना और विश्वास आधारित नियामक के ढांचे को मजबूत करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से

इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और शीलू नाग की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। दिल्ली में घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ कल से 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे और पात्र मतदाताओं से भरे हुए आवेदन पत्र एकत्र करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज नई दिल्ली के संसद भवन में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन ने श्री खड़गे को शपथ दिलाई। श्री खड़गे कर्नाटक से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण बड़े भूस्खलन से गाई नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है। अमेरिका और ईरान ने जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई है। इस वार्ता का उद्देश्य हॉर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक दोपहर में लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स 425 अंक गिरकर 76,676 पर और निफ्टी 112 अंक कम होकर 23,944 पर था। फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्र प्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, टीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर दिन के 1:10 हो रहे हैं और ये वक्त है प्रोग्राम एक ही फिल्म से का। तो स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त राखी बैनर्जी का नमस्कार और स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में आप सभी का। श्रोताओं, साल 2000 में हिंदी सिनेमा एक नए दौर में कदम रख रहा था और इसी दौरान एक ऐसी फिल्म आई जिसने बॉलीवुड को एक नया सुपरस्टार दिया, रोमांस को एक नया चेहरा दिया और युवाओं के दिलों में एक ऐसी जगह बनाई जिसका जादू आज भी बरकरार है।

जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं फिल्म कहो ना प्यार है की। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी बल्कि प्यार, जुदाई, रहस्य और रोमांच का एक ऐसा सफर था जिसने दर्शकों को हंसाया, रुलाया और आखिरी पल तक अपनी सीटों से बांधे रखा। एक तरफ मासूम प्यार की खूबसूरती तो दूसरी तरफ रहस्य और रोमांच का ऐसा मेल जिसने इस फिल्म को अपने दौर की सबसे यादगार फिल्मों में शामिल कर दिया। फिल्म का निर्देशन किया था और निर्देशन और निर्माण किया था राकेश रोशन ने, जबकि इसकी कहानी और पटकथा को आकार देने में मशहूर लेखिका हनी ईरानी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस फिल्म के जरिए राकेश रोशन ने अपने बेटे ऋतिक रोशन और अमीषा पटेल को बड़े पर्दे पर लॉन्च किया, लेकिन शायद उस समय किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि ये डेब्यू हिंदी सिनेमा के सबसे सफल डेब्यू में से एक बन जाएगी।

0: तो आइए शुरुआत करते हैं उस गीत से जिसने फिल्म की रिलीज से पहले ही लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली।
1: ओए, कहाँ जा रहे हो तुम?
2: मैकडॉनल्ड से हैमबर्गर लाने जा रहा हूँ, तुम खाओगी?
1: हाँ, लेकिन वे...

जी हाँ श्रोताओं, कहो ना प्यार है ये आज की फिल्म है और मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त राखी बैनर्जी और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। तो श्रोताओं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं और आपको बताते हैं एक दिलचस्प किस्सा जिसने बॉलीवुड को एक नई सुपरस्टार हीरोइन और एक हीरो दिया। जब इस फिल्म की तैयारी चल रही थी तब करीना कपूर को इसकी लीड एक्ट्रेस के तौर पर साइन किया गया था। उनकी और ऋतिक की जोड़ी को लेकर काफ़ी उत्साह था। करीना ने फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी थी। राकेश रोशन ने मुंबई के फिल्मिस्तान स्टूडियो में बड़ा सेट लगवाया था और एक गाने की शूटिंग से शुरुआत करने वाले थे, लेकिन फिर कुछ मतभेद के कारण मुख्य शूटिंग शुरू होने से सिर्फ चार दिन पहले करीना ने फिल्म छोड़ दी। अब सोचिए, सेट तैयार था, लाखों रुपये खर्च हो चुके थे, टीम के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो गई। इस बीच किस्मत से ने एक नया मोड़ लिया। एक शादी समारोह में राकेश रोशन की मुलाकात अपने पुराने दोस्त अमित पटेल से हुई। उनके साथ उनकी बेटी अमीषा पटेल भी थी। राकेश रोशन को अमीषा स्क्रीन के लिए बिल्कुल परफेक्ट लगी। उन्होंने पूछा कि क्या वे फिल्मों में काम करना चाहेंगी और यहीं से अमीषा पटेल की बॉलीवुड यात्रा शुरू हो गई। अब बात करते हैं ऋतिक रोशन की। आज भले ही वे सुपरस्टार हों लेकिन उनका सफ़र बिल्कुल आसान नहीं था। वे काफ़ी शांत और अंतर्मुखी स्वभाव के थे। खुद को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने घंटों डांस की प्रैक्टिस की, एक्टिंग सीखी और अपनी आवाज़ पर भी खूब मेहनत की। इस फिल्म में ऋतिक के दो बिल्कुल अलग किरदार निभाने का मौका मिला था। एक तरफ मासूम और भावुक रोहित तो दूसरी तरफ आत्मविश्वासी और आकर्षक राज। राकेश रोशन चाहते थे कि दर्शक एक ही फिल्म में ऋतिक की एक्टिंग, डांस और एक्शन तीनों का पूरा जलवा देखे। अपने फिजिक पर काम करने के लिए ऋतिक ने सलमान खान की भी मदद ली थी और ऋतिक ने खुद को पूरी तरह बदल डाला। फिर जब फिल्म रिलीज हुई तो जो हुआ वो तो इतिहास ही बन गया। ऋतिक रोशन रातों रात देश भर के युवाओं के दिलों की धड़कन बन गए। कहा जाता है कि उन्हें लगभग 30,000 शादी के प्रस्ताव मिले थे, लेकिन लाखों दिलों की धड़कन बन चुके ऋतिक ने जल्द ही अपनी गर्लफ्रेंड सुजैन खान से शादी कर ली और अपने फैंस का, खासकर महिला फैंस का दिल थोड़ा सा तोड़ दिया। और इसी तरह एक फिल्म में ने बॉलीवुड को दो नए सितारे दिए, ऋतिक रोशन और अमीषा पटेल। वहीं सहायक कलाकारों की मजबूत टीम में दिलीप ताहिल, मोनीश बहल, आशीष विद्यार्थी, सतीश शाह और फरीदा जलाल जैसे अनुभवी कलाकार शामिल थे जिन्होंने अपने शानदार अभिनय से फिल्म को और भी प्रभावशाली बनाया। तो चलिए संगीत के सफर को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं इसी फिल्म से एक और गीत।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए। श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की फिल्म है ब्लॉकबस्टर फिल्म कहो ना प्यार है, और मैं आपके साथ हूं आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। श्रोताओं, बात करते हैं फिल्म की कहानी की। फिल्म की कहानी कोई बहुत अनोखी नहीं थी, लेकिन इस फिल्म को पर्दे पर पेश करने का जो तरीका था वो अनोखा था, और इसका जो हीरो था वो बिल्कुल अनोखा था। कहानी में एक जैसी शक्ल वाले दो युवक रोहित और राज, एक ही लड़की सोनिया की ज़िंदगी में अलग अलग समय पर आते हैं, और जैसा कि अक्सर कहा जाता है, इंसान को ज़िंदगी में प्यार कई बार हो सकता है, लेकिन हर बार उसकी वजह और एहसास अलग होते हैं। सोनिया के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। रोहित उसकी ज़िंदगी में मासूम मोहब्बत बनकर आता है, जबकि राज उस समय उसका सहारा बनता है जब वो अपनी ज़िंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजर रही होती है। इसके बाद कहानी प्यार, रहस्य और रोमांच के ऐसे सफ़र पर निकलती है जहां कई छिपे हुए राज सामने आते हैं। तो श्रोताओं, अगर ये राज आपको भी जानना है तो ये फिल्म ज़रूर देखिएगा। यह आपको उस दौर में ले जाएगी जब फिल्मों में रोमांस की मासूमियत, गीतों की मिठास और कहानियों का जादू कुछ अलग ही हुआ करता था। तो चलिए इसी जादू को महसूस करते हैं इस सॉन्ग के साथ।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। दोस्तों, किसी भी फिल्म की सफलता में उसकी कहानी और कलाकारों का योगदान तो होता ही है, लेकिन कहो ना प्यार है कि कामयाबी में इसके संगीत ने भी उतनी ही अहम भूमिका निभाई थी। फिल्म का संगीत तैयार किया था मशहूर संगीतकार राजेश रोशन ने, वहीं इसके गीत इब्राहिम अश्क, सावन कुमार टाक और विजय अकेला ने लिखे थे। खास बात यह थी कि फिल्म का संगीत उस दौर के युवाओं की पसंद और भावनाओं को बेहद ही खूबसूरती से छुआ था। राकेश रोशन ने इस फिल्म के जरिए अपने पुराने दोस्त महमूद के बेटे लकी अली को भी बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगर के तौर पर एक बड़ा मौका दिया। उस समय लकी अली अपने पॉप एल्बम की वजह से युवाओं के बीच में बेहद लोकप्रिय थी। फिल्म में उन्होंने दो गाने गाए और दोनों ही गाने लोगों के दिलों में बस गए। खास तौर पर उनका सूफियाना अंदाज फिल्म के संगीत को एक अलग ही पहचान देता है। इसके अलावा उदित नारायण, कुमार शानू और बाबुल सुप्रियो जैसे शानदार गायकों ने भी ऋतिक रोशन के किरदार को अपनी आवाज दी। गीतों के बोल और धुनों का ऐसा मेल बना कि एल्बम का लगभग हर गाना सुपरहिट साबित हुआ। फिल्म के संगीत को लॉन्च करने का कार्यक्रम भी खास रहा। राकेश रोशन के करीबी दोस्त जितेंद्र और ऋषि कपूर ने अंधेरी के द क्लब में इसका म्यूजिक रिलीज किया था और फिर जब फिल्म रिलीज हुई तो इसके गाने हर तरफ सुनाई देने लगे। साल 2000 में कई बड़ी फिल्मों के म्यूजिक एल्बम को पीछे छोड़ते हुए कहो ना प्यार है कि लगभग 1 करोड़ म्यूजिक एल्बम और कैसेट बिके थे। ये अपने आप में एक बड़ा ही रिकॉर्ड था। तो आइए अब सुनते हैं इसी फिल्म का एक ऐसा ही गीत जिसने लाखों दिलों को धड़कना सिखाया।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और हमारे पास हमारे प्यारे श्रोताओं का मेल आ गया है, उसे हम पढ़ लेते हैं। ये मेल आया है सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी का, शांति नगर सोनीपत से। और हम आगे बढ़ते हैं और ये मेल आया है रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से, लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी का, स्वर्ण सिंह, दलजीत, राजदीप, गुनरूर, गुलराल और अविराज जी का आया है ठाकुरावाला से। और ये है वीरमगांव गुजरात से अजीत कुमार भावसार, प्रमिला भावसार। और ये है कुमकुम जी, विजय रतनमाला, मोताला महाराष्ट्र से। और संदीप मक्कर जी का आया है ज्योति मन्नत, भारत, कमल सहानी, पिंगावाला चौक, जालंधर, पंजाब से। और ये हैं हमारे साथ छत्तीसगढ़ पलियारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल और यशस्वी। और इंद्रानगर भवरपुर से राधेश्याम और राजू, चंपा और जगदीश का। दंतरेगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा का।

ये मेल आया है राकेश रोशन, ये लिखते हैं राकेश रोशन की फिल्म कहो ना प्यार है बेहद सुपरहिट फिल्म है और आपकी प्रस्तुति लाजवाब है, धन्यवाद आपका सुरेश यादव, अनीता यादव, सोनल प्रसाद यादव और नेहरू चौक से। और ये मेल आया है हमारे पास पीएस निर्मला विशाल, नारायण सोपान और आशीष का, और ये हैं महाराष्ट्र से।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्र प्रेस चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और अब हम पहुंच चुके हैं फिल्म के आखिरी पड़ाव पे। श्रोताओं, अब वक्त हो रहा है कहो ना प्यार है से जुड़ी कुछ बेहद दिलचस्प बातों को बताने का। फिल्म की कहानी का अंत कैसे हो, इसे लेकर मेकर्स काफ़ी सोच विचार कर रहे थे। यही वजह है कि फिल्म के लिए दो अलग अलग एंडिंग शूट की गई, और एक एंडिंग में राज की मौत हो जाती है और सोनिया अकेली रह जाती है, जबकि दूसरी एंडिंग में राज बच जाता है और दोनों की प्रेम कहानी खुशी खुशी पूरी होती है। आखिरकार राकेश रोशन और उनकी टीम ने दर्शकों की पसंद को ध्यान में रखते हुए हैप्पी एंडिंग को चुना, और शायद यही फैसला दर्शकों के दिलों तक फिल्म को और गहराई से पहुँचाने में कामयाब रहा। श्रोताओं, साल 2000 में रिलीज़ हुई कहो ना प्यार है सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक ऐसा सिनेमाई अनुभव बन गई जिसने पूरे देश को अपनी

गिरफ्त में ले लिया। लगभग 10 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में करीब 80 करोड़ रुपए का कारोबार किया और उसी साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। पुरस्कारों की बात करें तो इस फिल्म ने एक नया इतिहास रच दिया। ऋतिक रोशन को इसी फिल्म के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता दोनों पुरस्कार मिले, जो अपने आप में एक

दर्ज कराया। ये अपने दौर की सबसे ज़्यादा पुरस्कार जीतने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। आज भी ये फिल्म अपनी बेहतरीन कहानी, डांस और संगीत के लिए भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर मानी जाती है। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रोग्राम के लास्ट सॉन्ग की तरफ।

श्रोताओं, हमारे कुछ श्रोता अभी भी हैं, वो हैं संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, बागपत उत्तर प्रदेश से। तो इसी के साथ ही आज का एक ही फिल्म से कार्यक्रम यही समाप्त होता है। हम फिर हाजिर होंगे दिन के 2:30 पर एक ही कलाकार प्रोग्राम लेके। तब तक आप अपनी दोस्त राखी बैनर्जी को अनुमति दीजिए।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। दिन के 1:40 होने वाले हैं। आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरों के इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेशल्स ते भारत एक अजी दुनिया लई यतनशील ने जिथे विकास वधेरे समावेशी होए ते अंतरराष्ट्रीय संस्थावां समकाली हकीकतां नूं दर्शाउंदियां होण। श्री मोदी सेशल्स से तीन दिन सफल दौरे तो बाद भारत लई रवाना हो गए ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अज शामी राष्ट्रपति भवन विखे साल के दूजे रक्षा सम्मान समारोह विच बहादुरी पुरस्कार प्रदान करनगे। नीट यूजी प्रीख्या लीक मामले विच दिल्ली दी एक अदालत ने 10 मुलजमां दी न्यायिक हिरासत 11 जुलाई तक वधा दित्ती है। सरकार ने कानूनी नापतोल एक्ट 2009 तहत सुधार सूचना प्रणाली लागू की है। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विच श्री राम जन्मभूमि मंदिर के दान विच कथित वित्तीय बेनियमिया की अदालती निगरानी हेठ जांच की मांग करने वाली जनहित पटीशन ते तुरंत सुनवाई करने तो इनकार कर दिता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज अफरीकी देश सेसल्स से अपने दौरे के तीजे दिन विक्टोरिया के नव शक्ति विनयनगर मंदिर का दौरा किया। पूजा अर्चना की उन्होंने उत्थे भारतीय प्रवासियों भी मुलाकात की। श्री मोदी ने पीस पार्क विखे महात्मा गांधी के बुत के फूलों श्रद्धांजलि भी भेंट की। श्री मोदी सेशल्स के तीन दिन सफल दौरे तो बाद भारत लई रवाना हो गए ने। कल प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की आजादी की 50वीं वरेगंढ मौके सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लिया। श्री मोदी ने विशेष मेहमान वजो समागम शिरकत की। प्रधानमंत्री ने वातावरण सुरक्षा और निरंतर विकास में उन्होंने अगवाई सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन सम्मानित किया गया, जिस सम्मान हासिल करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए ने। सेशल्स की नैशनल असैम्बली भी संबोधन किया। उन्होंने कहा कि सेशल्स और भारत दोवें एक अजिही दुनिया लई यतनशील ने जिथे विकास वधेरे समावेशी अंतरराष्ट्रीय संस्थावां समकाली हकीकतां नूं दर्शाउंदियां होण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज दुनिया के वक् वक् सभ्याचारां दा सत्कार करन दी अहमियत ते जोर दिता है। सोशल मीडिया ते एक संस्कृत सुभाषितम सांझा करदिआं प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया के वक् वक् सभ्याचारां दा सत्कार करन नाल लोकां विच विश्वास ते सहयोग वधदा है। उन्होंने अगे कहा कि आपसी समझ ते भाईचारे नूं भी उत्साहित करदा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अज शामी राष्ट्रपति भवन विखे साल के दूजे रक्षा सम्मान समारोह विच बहादुरी पुरस्कार प्रदान करनगे। इस मौके ते राष्ट्रपति हथियारबंद सेनावां केंद्रीय हथियारबंद पुलिस बलां राज्यां ते केंद्र शासित प्रदेशां दे पुलिस बलां दे कर्मचारियों नूं बहादुरी पुरस्कार प्रदान करनगे। यह पुरस्कार उन्हां सैनिकां नूं दित्ते जांदे ने जो असाधारण बहादुरी दा प्रदर्शन करदे ने। यह सम्मान दहशतगर्दी बगावत ते सरहदी इलाकिआं विच चुनौतियां विरुद्ध देश दी निरंतर लड़ाई नूं भी दर्शाउंदे ने। यह हवाबाजी समुद्री कार्यां अते मानवतावादी मिशनां विच दिखाई गई बेमिसाल बहादुरी नूं भी

0: पेश है एक रिपोर्ट।
1: इस परेड में भारतीय बहरिया और फौज की टीमों पर मुश्तमिल एक मार्चिंग दस्ते ने शिरकत की। इसके अलावा भारत के एक बहरी बैंड ने भी शिरकत की, जिससे भारत और सेशल्स के दरमियान करीबी शराकत दारी का इजहार होता है। खैर सगाली के एक खसूसी जज्बे के तौर पर INS तरकश और INS इश्क को पोर्ट विक्टोरिया पर लगनअंदाज किया गया, जिससे सेशल्स के साथ भारत की देरीना दोस्ती का अंदाजा होता है। वजारत खारजा के मुताबिक भारत और सेशल्स के दरमियान देरीना दोस्ती है, जिसकी जड़ें मुश्तरक तारीखी, सकाफती और अवाम से अवाम के दरमियान रिश्तों से वाबस्ता हैं। भारतीय बहरीन खत्ते में एक अहम समुद्री पड़ोसी के तौर पर सेशल्स का मकाम भारत के विजन महासागर और आलमी जनूब के तई भारत के अहद में खसूसी हैसियत का हामिल है। वजारत खारजा ने बताया कि जनाब मोदी के इस दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत और पायदार दोस्ती का इरादा होता है और मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को फरोग देने में दोनों मुल्कों के मुश्तरक अहद की भी अक्कासी होती है। आशीष अब्राहम की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल मालिक।
0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और पायदार तरक्की के शोबे में क़यादत पर सेशल्स के आला तरीन एवार्ड गार्जियन ऑफ द ब्लू होरिजन से भी नवाजा गया। वज़ीर आज़म ने सेशल्स की कौमी असम्बली से भी खिताब किया, जहां उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सेशल्स और भारत ऐसी दुनिया के क़याम के ख्वाहिशमंद हैं जहाँ तरक्की के फ़ायदे सबको हासिल हों और जहाँ बैन अल-अक़वामी इदारों में असर हाजिर के हक़ाइक की अक्कासी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने आज मफादे आम्मा में दायर की गई उस दरख्वास्त पर फौरी समाप्त करने से इनकार कर दिया है, जिसमें श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की जानिब से चढ़ावा वसूल किए जाने में मुबीना माली बेजाबतियों की अदालत की निगरानी में तहकीकात और फोरेंसिक ऑडिट कराए जाने की दरख्वास्त की गई है। जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस शील नागू की एक बेंच ने हिदायत दी है कि इस दरख्वास्त को उस फहरिस्त में शामिल किया जाए जिस पर गर्मी की तातील के बाद अदालत के दोबारा खुलने के बाद सुनवाई होगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज नई दिल्ली में हरियाणा और राजस्थान के दरमियान पानी की तकसीम से मुतालिक एक समझौते पर दस्तखत किए जाने के बारे में एक मीटिंग की सदारत की। इस मौके पर जल शक्ति के मरकजी वजीर CR पाटिल, हरियाणा के वजीर आला नायब सिंह सैनी और राजस्थान के वजीर आला भजन लाल शर्मा भी मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए जनाब पाटिल ने कहा कि इस समझौते के तहत पानी को मानसून के दौरान हथनी कुंड बैराज से वेस्टर्न यमुना केनाल सिस्टम के तहत एक जेरे जमीन पाइप के जरिए सप्लाई किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे चोरू, सिकर, झुंझुनू और राजस्थान के पानी के किल्लत वाले दूसरे खित्तों में पीने के पानी की जरूरतें पूरी होंगी। कौमी राजधानी दिल्ली में वोटरों को इलेक्टोरल इनुमरेशन फार्म तकसीम किए जाने का काम कल से शुरू होगा। दिल्ली के आला इंतखाबी अफसर अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए ये ऐलान किया। उन्होंने बताया कि बूथ लेवल ऑफिसर BLOs कल से अगले महीने की 29 तारीख तक घर घर जाकर इनुमरेशन फार्म तकसीम करेंगे और मजाज वोटरों से पुरकरवा कर वसूल करेंगे। जनाब कुमार ने बताया कि 5 अगस्त और 4 सितंबर के दरमियान दावे और इतराजात पेश किए जा सकते हैं। हतमी वोटर लिस्ट 7 अक्टूबर को शाये की जाएगी। उन्होंने बताया कि राय दहिंदगान इनुमरेशन फार्म www.voters.eci.gov.in पर भी ऑनलाइन पुर कर सकते हैं। आला इंतखाबी अफसर ने सभी मजाज राय दहिंदगान से जोर देकर कहा है कि वो BLOs के साथ तआवुन करें और मुकर्रर वक्त के अंदर अपने फॉर्म जमा कराएं। ये खबरें आकाशवाणी से नशरी की जा रही हैं। बांग्लादेश के साबिक वजीर आजम शेख हसीना ने कहा है कि वो इस साल के खत्म होने से पहले बांग्लादेश वापस जाएंगे। उन्होंने कहा कि अपने खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों, सजाए मौत और अवामी लीग की सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद किए जाने के बावजूद वो ये कदम उठाएंगे। एक टीवी चैनल को इंटरव्यू में उन्होंने अपने खिलाफ मुकदमात को सियासी अगराज पर मबनी बताया और मौजूदा हुकाम पर इल्जाम लगाया कि बांग्लादेश के सियासी मंजरनामे से अवामी लीग का वजूद खत्म करने के लिए अदलिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। हुकूमत ने जनविश्वास तरमीमी एक्ट 2026 के जरिए लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के तहत एक इम्प्रूवमेंट नोटिस तरीकेकार का आगाज किया है। नए निजाम में पहली बार जाब्तों की खिलाफ वर्जी करने वाले कारोबारियों को ये छूट दी गई है कि वो सजा की कार्रवाई शुरू किए जाने से पहले खामियों को दूर कर दें। सार्फिन के उमूर की वजारत ने कहा है कि इसका मकसद रजाकाराना तौर पर जाब्तों की पाबंदी करने और मुकदमात को कम करने की हौसला अफजाई करके कारोबार में आसानी को फरोग देना है। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज नई दिल्ली में पार्लियामेंट में राज्यसभा के रुकन के तौर पर हलफ लिया। नायब सदर जमहूरिया और राज्यसभा के सदर नशी CP राधाकृष्णन ने जनाब खड़गे को हलफ दिलाया। अमेरिका और ईरान कतर की राजधानी दोहा में इस बात पर रजामंद हो गए हैं कि एक दूसरे

0: Ministry placed 20 entities on an export control list. In the knockout stage of the FIFA World Cup, Canada beat South Africa 1-0 for its first knockout match victory at Los Angeles in the United States. Stephen Eustachio of Canada scored the goal in the second minute of second half stoppage time. Co-hosts Canada hung on with strong defensive play in the final minutes and advanced to face the Netherlands or Morocco in Houston on Saturday, July the 4th. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy to very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till tomorrow. The Met Department also predicted heavy rainfall over Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Kerala and Mahe till Wednesday. And now before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu to present gallantry awards at Rashtrapati Bhavan in New Delhi this evening. Three-decade pending Yamuna water-sharing project between Haryana and Rajasthan gets approval today. Supreme Court refuses urgent hearing on PIL, seeking court-monitored probe into alleged financial irregularities in Ram Mandir donations case. CBSE exempts current class 10th batch from three-language policy. Government introduces improvement notice mechanism to promote ease of doing business. SIR set to begin in Delhi tomorrow. And in FIFA World Cup, Canada beat South Africa 1-0 in first knockout match at Los Angeles. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। ये सम्मान देश की आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता जाती है। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। यात्रा के अंतिम दिन श्री मोदी ने विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनायकर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। बाद में प्रधानमंत्री ने पीस पार्क में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई गति देने वाली रही। इस यात्रा के दौरान श्री मोदी ने सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमेनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, समता निर्माण, समुद्री सुरक्षा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ावा देने पर सहमति जताई। साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में अवैध मछली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी और समुद्री डकैती जैसी चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। यात्रा के दौरान UPI, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, कृषि, नौवहन, अंतरिक्ष सहयोग, प्रत्यर्पण

0: और लाइन ऑफ क्रेडिट से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में उनके योगदान के लिए गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन्स से भी सम्मानित किया गया। यह पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में सेशेल्स का सर्वोच्च सम्मान है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कल सेशेल्स की नेशनल असेंबली के विशेष सत्र को भी संबोधित किया और ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। विशाल और विष्णु के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की। साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की गई। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में हरियाणा और राजस्थान के बीच जल बंटवारे समझौते को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी उपस्थित थे। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत राजस्थान के हिस्से का पानी मानसून के दौरान हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली से होकर गुजरने वाली भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाएगा।
2: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चुरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकता की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
1: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि कक्षा के अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच के अंतर्गत 10 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ा दी है। आरोपियों को उनकी पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और शीलू नाग की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जनविश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया गया है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि इस सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुद्दों को कम करना और विश्वास आधारित नियामकीय ढांचे को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि नई व्यवस्था के अंतर्गत विधिक मापन अधिकारी संबंधित संस्थान को सुधार सूचना जारी कर कमियों को दूर करने के लिए उचित समय देंगे। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सुधार कर लिया जाता है तो दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि ये व्यवस्था निर्माताओं, आयातकों, पैकरों, डीलरों, मरम्मतकर्ताओं, व्यापारियों, लघु और मध्यम उद्यमों और अन्य विनियमित संस्थाओं पर लागू होगी। मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार उपभोक्ता संरक्षण को कमजोर किए बिना पारदर्शी और कारोबार अनुकूलन नियामकीय व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष श्री सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 8 नवनिर्वाचित और पुनः निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। इन सदस्यों में कर्नाटक से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भाजपा के एम नागराज, पंजाब से भाजपा नेता तरुण चुग, गुजरात से मानसिंह मेरामन परमार और जितेंद्र मेघजी भाई कंजरिया, राजस्थान से डॉ अलका सिंह, मणिपुर से अधिकारी मयूम शारदा देवी और

0: महाराष्ट्र से एनसीपी नेता राजेंद्र हीरालाल जैन शामिल हैं। तमिलनाडु में करूर से एआईएडीएमके विधायक एमआर विजय भास्कर ने आज विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर को अपना इस्तीफा सौंपा। श्री प्रभाकर ने बताया कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। इसके साथ ही विधानसभा से इस्तीफा देने वाले एआईएडीएमके विधायकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ कल से मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे।
1: जो हमारे लिए डेट है हाउस टू हाउस, जिसमें बीएलओज एक एक घर जाकर सभी इलेक्टर्स को इनुमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो 30 तारीख से शुरू हो जाएगी और 29 जुलाई तक फॉर्म वापसी की भी डेट है। और इसके लिए जो हमारे 13,033 बूथ्स हैं, वो सभी पे बीएलओज अपॉइंटेड हैं, तो सभी बीएलओज को उनके इनुमरेशन फॉर्म हमने दे दिए हैं, जो कि कल सुबह से अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सुविधा दी गई है।
0: मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन भी गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मध्य गुजरात क्षेत्र पर केंद्रित दो दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का आज वडोदरा स्थित जीएसएफसी विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय आवास तथा शहरी मामलों और विद्युत मंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने औद्योगिक विकास को गति देने में विद्युत क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सुदृढ़ योजना के कारण भारत ने इस ग्रीष्मकाल में 271 गीगावाट की रिकॉर्ड चरम बिजली मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कलकत्ता की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
2: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि कानूनी मामलों, मौत की सजा और आवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध के बावजूद वे इस वर्ष के अंत तक बांग्लादेश लौटेंगी। एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में शेख हसीना ने अपने खिलाफ जारी मामलों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार न्यायपालिका के बल पर आवामी लीग को देश के राजनीति से बाहर करने का प्रयास कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पवित्र अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा संपन्न कर वार्षिक अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत की। यात्रा 3 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज अद्वितीय आध्यात्मिक उत्साह का माहौल रहा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरी में वार्षिक देव स्नान पूर्णिमा के लिए लाखों श्रद्धालु एकत्र हुए।
3: आज पुरी में लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ के पवित्र देव स्नान पूर्णिमा समारोह देखा, जो इस साल की रथ यात्रा की उत्सव की औपचारिक शुरुआत है। सदियों पुरानी मंदिर परंपराओं के अनुसार देवताओं को मंदिर परिसर के भीतर स्थित पवित्र सुना कुआ यानी स्वर्ण कुप से लाए गए पवित्र सुगंधित जल के 108 घड़ों से स्नान कराया गया। विस्तृत स्नान के बाद देवताओं को गजानन के रूप में सजाया गया। अब वे अणसर के 2 हफ्ते लंबी अवधि के दौरान एकांतवास में रहेंगे और अगले महीने की 16 तारीख को शुरू होने वाली सालाना रथ यात्रा से पहले नव जौवन दर्शन के लिए फिर से प्रकट होंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया।

0: मौसम विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल और माहे में बुधवार तक तेज बारिश की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ. रजनीश भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्वकप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, TRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। दिन के 2:30 हो रहे हैं और वक्त हो चला है आपके पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार का। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने दिन का आनंद ले रहे होंगे। तो चलिए इसी के साथ अपनी दोस्त राखी बैनर्जी का प्यार भरा नमस्कार स्वीकार कीजिए और स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे एक ऐसे गीतकार की जिनकी कलम ने कई सुंदर गीत लिखे। 1 अक्टूबर 1932 को कानपुर में इनका जन्म हुआ और इसी गंगा जमुनी तहजीब के माहौल में उनका बचपन बीता। स्कूल के दिनों से ही इन्हें शायरी और कविता लिखने का शौक था, फिर आगे चलकर ये एक बड़े फनकार बने।

जी हाँ श्रोताओं, शायद आप समझ गए होंगे कि मैं बात कर रही हूँ गौहर कानपुरी साहब की। बचपन से ही इन्हें गीत और उर्दू शायरी लिखने की दीवानगी थी। यही दीवानगी इन्हें कानपुर से मुंबई लेकर गई, पर सपने पूरे करने का रास्ता आसान नहीं था। मुंबई पहुंचकर इन्होंने सालों तक संघर्ष किया। करीब 10 साल की मेहनत के बाद 1967 में पहला ब्रेक मिला। फिल्म प्यार की बाजी में अपना पहला गाना लिखा। संगीतकार जिमी के डायरेक्शन में इन्होंने हसीनों का दीदार करना बुरा है टाइटल से एक कव्वाली लिखी जो बहुत मशहूर हुई। गौहर साहब उर्दू शायरी से प्रेरित थे और फिल्मी गीतों में इसकी खुशबू भर देते थे। कानपुर से मुंबई तक का सफ़र आसान नहीं था, पर इनकी कलम कभी रुकी नहीं। तो चलिए सुनते हैं फिल्म जख्मी से इनका ये दिल को छू लेने वाला गाना।

जी हाँ श्रोताओं, आओ तुम्हें चांद पर ले जाएं। और ये गीत बहुत ही खूबसूरत गीत है और अपने समय में ये गीत बहुत हिट भी हुई थी। श्रोताओं, गौहर साहब अपने कानपुर की पहचान को हमेशा अपने साथ रखने के लिए उन्होंने अपने नाम के आगे कानपुरी पेन नेम जोड़ा। गौहर साहब को शुरुआत में एक दो गाने ही मिलते थे। एक फिल्म के दौरान इनकी मुलाकात बप्पी लहरे से हुई। बप्पी लहरे उस समय बहुत सी फिल्मों में म्यूजिक दे रहे थे। दोनों की जोड़ी बाद में कई हिट गीतों की बनी, लेकिन असली सफलता 1975 में जख्मी फिल्म से मिली, जिसका गाना अभी आपने सुना। ये पहली फिल्म थी जिसमें गौहर साहब ने पूरे गाने अकेले लिखे थे। जलता है जिया मेरी भीगी भीगी रातों में, अभी अभी थी दुश्मनी दोस्ती हो गई, जैसे गाने सुपरहिट हो गए। दोस्तों, सालों के संघर्ष के बाद एक फिल्म ने सब बदल दिया। गौहर साहब के गीतों में रोमांस था, दर्द था और ज़िंदगी की हकीकत भी थी। दूसरी तरफ बप्पी दा के साथ इनकी जोड़ी ने तो कमाल कर दिया। संग्राम, हैवान, फिर जन्म लेंगे हम जैसी फिल्मों के गीत लिखकर इन्होंने खुद को एक बेहतरीन गीतकार बनाया। तो चलिए अब सुनते हैं फिल्म सावन को आने दो का ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार। और आज के जो हमारे कलाकार हैं वो हैं गौहर कानपुरी और मैं आपके साथ हूं आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। श्रोताओं, सावन को आने दो फिल्म का ये टाइटल सॉन्ग जो था बहुत पॉपुलर हुआ। जसपाल सिंह और कल्याणी मित्रा की आवाज़ में ये गाना सुनकर लोग भावुक हो जाते थे। गौहर साहब की कलम से जो प्यार और भावनाओं की खूबसूरती बयां होती थी, इनकी और बप्पी लहरी की जोड़ी ने 70 के दशक में कई यादगार गीत दिए। इसके अलावा इन्होंने नदीम श्रवण, राम लक्ष्मण और अनु मलिक के साथ भी काम किया। गौहर साहब का स्टाइल क्लासिक था, इनके गीतों में गहराई थी जो सुनने वालों को सोचने पर मजबूर कर देती थी। हालांकि बड़े नामों के साथ काम करने के बावजूद उनको उतना क्रेडिट नहीं मिला जिसके ये हकदार थे, लेकिन उन्हें मुशायरों के लाइव मंच पर ज़्यादा सुकून और कामयाबी मिली। वे मुंबई की लाइमलाइट से ज़्यादा मुशायरों के मंच पर जनता से सीधे जुड़ना पसंद करते थे। तो चलिए चलते हैं और बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। और ये जो फिल्म है उसका नाम है दुल्हा बिकता है।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज के जो हमारे कलाकार हैं वो हैं गौहर कानपुरी। दोस्तों, आगे चलकर 80 के दशक में भी गौहर कानपुरी साहब ने गीत लिखने का काम जारी रखा। जख्मी इंसान, बेसहारा, फकीर बादशाह, आखिरी मुकाबला जैसी फिल्मों के गाने लिखे। फिर 90 के दशक में भी फिल्म जान तेरे नाम और बाजीगर फिल्म का ऐ मेरे हमसफर, ऐ मेरी जाने जान जैसे अमर गीत लिख डाला। शाहरुख खान की फिल्म का ये गाना आज भी लोग सुनते हैं। गौहर साहब ने करीब 300 गाने 120 फिल्मों के लिए लिखे, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में वे लाइमलाइट से दूर ही रहते थे। बावजूद इसके, गौहर साहब ने ये साबित किया कि अच्छे शब्द हमेशा याद रहते हैं। चलिए इन्हीं की याद में सुनते हैं अगला गीत फिल्म जान तेरे नाम से, जिसे इनकी कलम से लिखा था इन्होंने। कुमार शानू की आवाज में गाया ये गीत उस दौर का सबसे बेहतरीन रोमांटिक और दर्द भरे गानों में गिना जाता था।

जी हाँ दोस्तों, इन गानों में जो खूबसूरती थी, जो लफ्ज़ों को बयां करने का तरीका था, वो बिल्कुल अलग था, निराला था। गौहर साहब का करियर 25 साल से ज़्यादा चला। इन्होंने न सिर्फ फिल्मी गीत लिखे बल्कि भजन और गज़लें भी लिखी। इनकी कलम से निकले शब्द सरल थे लेकिन गहरा असर छोड़ जाते थे। आओ तुम्हें चांद पे ले जाएं जैसे गाने बच्चों को भी बहुत पसंद आए। ये एक मजबूत और मेहनती इंसान थे। 10 साल इंतज़ार के बाद ब्रेक मिला, फिर भी लगातार मेहनत करते रहे। गौहर साहब की ज़िंदगी सिखाती है कि सफलता रातों रात नहीं मिलती, धैर्य और मेहनत ज़रूरी है। इनके गीत आज भी रेडियो यूट्यूब पर सुनाई देते हैं। नई पीढ़ी को पता चलता है कि 70 और 80 के दशक का जो संगीत था वो कितना खूबसूरत था। तो चलिए इसी बात पर सुनते हैं जख्मी फिल्म का ये बेहतरीन सा गीत।

जी हाँ श्रोताओं, माफ़ कीजिएगा, अभी आप सुन रहे हैं बाजीगर फिल्म से ये गाना, और इसके बाद हम आपको सुनाएंगे जख्मी फिल्म का गीत।

श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज के जो हमारे कलाकार हैं वो हैं गौहर कानपुरी, और आपके मेल हमारे पास आ चुके हैं, तो मेल भी हम साथ साथ पढ़ लेते हैं क्योंकि समय बहुत कम है। और ये आया है अमर रमेश कुमार खत्री, टेलर मास्टर कृष्णा लाल खत्री, मोहम्मद जफर सादिक, शंकर गुल शर्मा, और ये हैं हमें ईमेल करते हैं, और इनके साथ हैं बागपत से ममता और संजय ढींगिया मेरठ से, और नवाब खान हैं मुंबई से, नवाब खान, इशरत मास्टर, अजहर खान और अजीम खान, और साथ में है धनोरी तेलीवाल उत्तराखंड से, निसार सलामी, नौसाद सलामी, बेबी आलिया, आयान बाबू, और ये लिखते हैं कि ये कार्यक्रम सुन रहे हैं।

हमारे साथ जुड़ चुके हैं एवरग्रीन रेडियो ग्रुप बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, चैतन्य मेघा चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु और रिधान खुराना, और ये है हीरामणि वर्मा दंतरेगी भाटापारा से, और ये लिखते हैं कि ये गौहर कानपुरी जी पर केंद्रित कार्यक्रम सुन रहे हैं। गौहर कानपुरी जी के गीत और उनकी फिल्मी सफ़रनामा पर रोचक जानकारी पसंद आ रही है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये है राजकुमार डूंडी जी, और ये है गांव नथाना पंजाब से हरिचिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता, और ये वडिंगा खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा, और नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत और गुरमंत कौर मनु, और ये हैं हमारे साथ कालानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिर और मयंक शर्मा। तो श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आखिरी पड़ाव की तरफ चलते हैं। ये हम आपको बता दें कि गौहर कानपुरी साहब वो राइटर थे जिन्होंने जीवन के लगभग हर रंग को कागज़ पर उतारा था। इनकी सबसे खास बात ये थी कि इनके लफ्ज़ बेहद आसान हुआ करते थे, पर कलम का ये जादूगर आज ही के दिन यानी 29 जून 2002 को हम सभी को छोड़कर चला गया, पर आज भी इनके गीत लोगों के दिलों में जिंदा हैं। गौहर कानपुरी जी की विरासत भारतीय साहित्य और सिनेमा में हमेशा अमर रहेंगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही, अगले शो में आपको ऐसे ही किसी खास कलाकार के बारे में अनसुनी बातें बताएंगे, लेकिन तब तक के लिए अपनी दोस्त राखी बैनर्जी को अनुमति दीजिए और आप ये कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनने का मजा लीजिए, और कहीं मत जाइएगा क्योंकि 3 बजे होगा मैटिनी शो और वो पेश करेंगी हमारी साथी का आरजे

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 3 बज चुके हैं और वक्त हुआ है कार्यक्रम मैटनी मेलेडीज का। जी दोस्तों, आप सभी श्रोताओं का स्वागत खैर मकदम करती हूँ मैं आप सभी की होस्ट दोस्त प्रीति त्यागी कार्यक्रम मैटनी मेलेडीज में। दोपहर का ये वो वक्त है जो कि थोड़ा सा अजीब होता है, क्योंकि इस वक्त में ना तो सुबह की तरह बहुत ज़्यादा भागदौड़ होती है, ना ही रात की तरह सन्नाटा होता है। बस एक थोड़ा सा ठहराव होता है और उस ठहराव के बीच में अगर हम वो खुश मिजाज या वो खुशनुमा गीत संगीत सुने जो कि हमारे दिल को तरोताज़ा कर दे, तो बस मज़ा ही आ जाता है। तो दोस्तों, आज कार्यक्रम मैटनी मेलेडीज़ में आज हम आपको लेकर जाएंगे बॉलीवुड के उसी सुनहरे दौर में जहाँ पर जो गीत और संगीत थे वो लोगों के दिलों को एकदम छू जाते थे। तो करते हैं शुरुआत किशोर कुमार की आवाज़ में इस खूबसूरत से गीत के साथ।

बिल्कुल, हमारा दिल यूं ही गाता रहेगा क्योंकि आज का जो ये सेगमेंट है मैटिनी मेलोडीज, उसमें हम ऐसे समंदर में आप लोगों को गोते खिलाएंगे, उस वक्त में ले जाएंगे जिस काल को कहा जाता है फिल्म इंडस्ट्री का स्वर्ण काल यानी कि गोल्डन पीरियड। और जब ये वो वक्त था जब गानों में न सिर्फ आवाज़ होती थी बल्कि रूह हुआ करती थी, जान हुआ करती थी। जब उस दौर का अगर हम जिक्र करते हैं तो हमारे जहन में एक त्रिमूर्ति का नाम उभर कर आता है, एक ऐसा चेहरा जिसके गम में भी एक अदा थी, जिन्हें जमाना कहता था दिलीप कुमार। ऐसी आँखें जिसमें पूरी दुनिया का फलसफा और मासूमियत थी, नीली आँखें, जी हाँ समझ गए होंगे ना, जी हाँ राज कपूर साहब, और एक ऐसा अंदाज जिसकी मुस्कराहट पर पूरा जमाना अपनी धड़कने हार जाता था, जिन्हें हम सब प्यार से देवानंद कहते हैं। तो दोस्तों, इन सितारों ने न सिर्फ पर्दे को सजाया बल्कि हमारे जो पुरानी पीढ़ी है, जो हमारे माता पिता हैं, उन सभी को मोहब्बत करना सिखाया। तो थाम के बैठ जाइए अपने चाय के कप, कुर्सी पर आराम से बैठिए और मैटिनी मेलोडी में आज सजेगी इन्हीं तीनों शहनशाहों की महफिल। तो दोस्तों, इस खूबसूरत सफ़र में सुनते हैं ये खूबसूरत सी आवाज़ जिसकी खनक आपके कानों में मिश्री घोल देगी। तो लीजिए सुनते हैं ये प्यारा सा खूबसूरत सा गीत लता जी की आवाज़ में।

दोस्तों, अगर हम बात करें दिलीप कुमार साहब यानी कि ट्रेजेडी किंग की, तो उनकी एक ऐसी फिल्म के बारे में ज़रूर बात करेंगे जिसके गानों ने थिएटरों में तालियों की गूंज पैदा कर दी थी। और साल था सन 1957, फिल्म नया दौर। मोहम्मद रफ़ी साहब की बुलंद आवाज़ और ओपी नैयर साहब का वो तांगे की थाप वाला बेमिसाल संगीत, सुनवाते हैं आपको वही संगीत। और आप सभी से मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि अगर आपको भी इस त्रिमूर्ति के बारे में कुछ बातें या उनसे उनकी फिल्मों से जुड़े हुए कुछ किस्से आपके पास हैं, आपकी यादें हैं, तो वो ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज़ में। और शेयर किस तरह से करना है वो तो आपको मालूम ही है। हमें रहेगा इंतज़ार आप सभी के संदेशों का।

क्या बात है दोस्तों, इस गाने में वो तांगे की आवाज़ आज भी हमारे पैरों को नाचने के लिए मजबूर कर देती है। और दिलीप साहब का वो देसी अंदाज इस गीत में वाकई, और ऊपर से उनके चेहरे की वो प्यारी सी मासूमियत वाकई में लाजवाब। चलो, गम और संजीदगी के बाद अब रुख करते हैं उस इंसान की तरफ जिसने बॉलीवुड या कहें कि इंडियन सिनेमा को दिलाई एक इंटरनेशनल पहचान, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाने वाले। जी हाँ दोस्तों, हमारी इसी त्रिमूर्ति के दूसरे पिलर राज कपूर साहब। राज कपूर साहब का जो कैनवस था, फिल्मों को लेकर उनका जो नज़रिया था, उनकी जो सोच थी वो एकदम अलग थी, और उनकी जो फिल्मों का संगीत होता था वो तो वाकई दिल को छू जाता था, क्योंकि उनके साथ जुड़े थे शंकर जयकिशन साहब, और साथ ही मुकेश जी की वो रूहानी आवाज़ जो सीधे दिल तक उतर जाती थी।

वैसे पता है, कहते कि जब राज कपूर साहब रूस गए तो वहाँ के लोग हिंदी नहीं जानते थे, लेकिन सड़क पर चलते हुए अगर रूसी लोग राज कपूर साहब को देखते तो उन्हें देखकर गाना गाते थे, आवारा हूँ। चलिए तो दोस्तों, आज हम आवारा तो नहीं, लेकिन उनकी दूसरी फिल्म अनाड़ी का वो बेहद ख़ास सा गाना आपको सुनवाते हैं जो ज़िंदगी का फ़लसफ़ा हमें सिखाता है। मुकेश जी की आवाज़ में वो प्यारा सा गीत, किसी की मुस्कराहट।

0: ले।
1: जी दोस्तों, जीना इसी का नाम है। वाकई राज साहब ने इस एक लाइन में जिंदगी का पूरा सार, पूरा फलसफा हमें बता दिया। जी हाँ, तभी तो, यही तो उनकी खासियत थी। उनकी फिल्मों में जो संगीत होता था वो फिल्म की जान हुआ करता था। चलिए, देसी अंदाज और सादगी की बातें हो चुकी हैं तो महफिल में स्टाइल का तड़का लगना भी ज़रूरी है, और स्टाइल के मामले में जो हमारे तीसरे लेजेंड हैं उनकी तो कोई भी सानी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, झुक के चलना, तेज़ी से डायलॉग बोलना और आँखों से शरारत करना, समझ गए होंगे ना आप। जी हाँ दोस्तों, एवरग्रीन देवानंद साहब। देवानंद साहब के बारे में एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा है। फिल्म काला पानी, जो कि 1958 में आई थी, उस दौरान जब वो काला कोट पहनकर निकलते थे तो लड़कियां उनकी एक झलक पाने के लिए दीवानी हो जाती थी। यहां तक कि कोट को उनके काले कपड़े पहनने पर भी पाबंदी लगानी पड़ी। तो ऐसे थे हमारे स्टाइल आइकन देवानंद साहब। और जब देवानंद साहब के गानों की बात हो तो किशोर कुमार और SD बर्मन साहब के बिना तो भाई बात ही नहीं बनती। तो चलिए, इस जो शो को आगे चलाते हैं और सुनते हैं ये खूबसूरत सा प्यारा प्यारा सा गीत।

तो देवानंद साहब जो कि माने जाते थे स्टाइल आइकन, और उनकी जो खूबसूरती थी उसका कुछ अलग ही चार्म था। और उसी टाइम का एक किस्सा आपके साथ शेयर करती हूँ कि जब ये जो तीनों स्टार्स थे अपने कामयाबी के एकदम टॉप पर थे, एकदम शिखर पर थे, और ऐसे वक्त का एक किस्सा है कि एक शाम राज कपूर साहब अपनी गाड़ी से मुंबई के लिंकिंग रोड से गुजर रहे थे और उनकी नज़र अचानक से गई देवानंद साहब पर, जो कि हमेशा की तरह डिज़ाइनर शर्ट, हाथ में सिगरेट लेकर कुछ सोच रहे थे। राज साहब ने देवानंद साहब को देखते ही सर बाहर निकाला और ज़ोर से चिल्लाए, ओए देव तू इतना हैंडसम क्यों है यार। और राज साहब देवानंद को देखने में इतना खो गए थे कि उन्होंने अपने स्टेयरिंग पर ध्यान ही नहीं दिया और उनकी जो गाड़ी थी वो फुटपाथ पर चढ़ते चढ़ते बची। देवानंद साहब हंस पड़े और उन्होंने राज साहब को गले लगाया। ये था उन तीनों के, या कहें कि इन दोनों के बीच का प्यार और एक दूसरे के लिए सम्मान।

जी दोस्तों, आप जुड़े हैं कार्यक्रम मैटनी मेलेडी के साथ, और आज हमने बात की उन तीन शहंशाहों के बारे में जिन्होंने इस फिल्म इंडस्ट्री को एक अलग ही मुकाम पर पहुंचाया, एक अलग ही ऊंचाइयों पर लेकर गए। और दोस्तों, उन दोनों के, या कहें कि उन तीनों के बीच में जो प्यार था वो भी एक अलग ही एहसास वाला था। और आज के दौर में अगर हम देखें तो एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, एक दूसरे के प्रति कंपटीशन रखते हैं, लेकिन उस दौर में जब राज कपूर साहब देवानंद जी को बोलते हैं कि तू इतना हैंडसम क्यों है और इस तरह की चीज़ें बोलते हैं। अब वही एक किस्सा देवानंद साहब और दिलीप कुमार जी का भी है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। देवानंद साहब और दिलीप कुमार जी की एकमात्र फिल्म है जो कि सन 1955 में आई थी, और उस फिल्म का नाम था इंसानियत। ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें दिलीप कुमार और देवानंद साहब ने एक साथ शेयर की थी स्क्रीन। और इस फिल्म की शूटिंग के दौरान देवानंद साहब हमेशा बहुत ही जल्दबाजी में रहते थे, डायलॉग फटाफट बोलते थे, और दिलीप कुमार साहब बिल्कुल इसके अपोजिट अपनी गंभीर और ठहर ठहर कर, रुक रुक कर अभिनय करने की शैली के लिए जाने जाते थे। और शूटिंग के दौरान एक दिन दिलीप साहब ने देवानंद साहब के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा कि देव, तुम्हारी जो ये बेफिक्री और तेजी है ना, इसे कभी मत छोड़ना, ये तुम्हारी ताकत है। मैं पर्दे पर रोकर लोगों का दिल जीतता हूं और तुम अपनी मुस्कुराहट के साथ लोगों का दिल जीतते हो। और देव साहब ने इस बात को गांठ बांध लिया और ताउम्र अपनी फिल्मों में वो इसी जिंदा दिली के साथ में रहे। तो दोस्तों, कार्यक्रम मैटनी मेलेडी में मुझे यानी प्रीति को दीजिए अनुमति, लेकिन जाने से पहले ये कुछ संदेश हैं जो कि हम तक आए हैं, उनको जरूर मैं

आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगी। गोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा जी हमारे साथ जुड़े हैं, कपिल छीपा पूजा परिहार के साथ। और ये अगला संदेश सुदर्शन मुखी अनिता सिमरन जी ने भेजा शांतिनगर सोनीपत से। गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फारूक अली खान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों ये थे वो संदेश जिनके जरिए हमारे सभी श्रोता हम तक जुड़े। तो अब मुझे यानी प्रीति को दीजिए अनुमति और छोड़े जाती हूँ आप सभी के साथ इंसानियत फिल्म से खूबसूरत से गीत के साथ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मैथनी मेलोडीज, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 3:30 हुए हैं, वक्त हुआ है कार्यक्रम उर्दू मजलिस का।

खबर नहीं होती। हमने सब दुख जहां के देखे हैं, हमने सब दुख जहां के देखे हैं, बेकली इस कदर नहीं होती। ईशा जी उठो, अब कूच करो, इस शहर में जी को लगाना क्या। ईशा जी उठो, अब कूच करो, इस शहर में जी को लगाना क्या। वहशी को सुकून से क्या मतलब, जोगी का नगर में ठिकाना क्या। सामईन, ये अशार इब्ने ईशा के हैं। इब्ने ईशा उर्दू अदब के एक मुमताज शायर, अदीब, कालम निगार, सफरनामा निगार थे। उनका असल नाम शेर मोहम्मद खान था। वो 15 जून 1927 को जिला जालंधर में पैदा हुए। उनका इंतकाल 11 जनवरी 1978 को लंदन में हुआ। इब्ने ईशा उर्दू में अपनी सादा, दिलकश और तंजिया अंदाज तहरीर के लिए मशहूर हैं। उनकी शायरी में मोहब्बत, जुदाई, वतन से वाबस्तगी और इंसानी जज्बात की अक्कासी मिलती है। कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा। कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। आइए सामेन, जगजीत सिंह की आवाज में गजल सुनते हैं। कलाम है इब्ने ईशा का।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उर्दू मजलिस, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। 4 बजने को आपसे कुछ ही देर में समाचार प्रसारित होंगे।

亚邦人口的48%分。印度特里广播电台，请收听 Jury 们唱的卡西民间歌曲。

인투텔리 广播电台 听众朋友们, 现在我们播送 Justin 唱的 Cosy 民间歌曲, 请收听.

产。印度的里广播电台听众朋友们，现在我们播送印度著名的女士歌手苏尼迪·乔汉唱的歌曲，请各位欣赏。

0: प्राप्त करते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल।
1: मेजर जनरल महिपाल सिंह राठौर सेना मेडल विशिष्ट सेवा मेडल।
2: मेजर जनरल महिपाल सिंह राठौर सेवा मेडल विशिष्ट सेवा मेडल। टुडे इट्स हिज टर्न टू रिसीव द अति विशिष्ट सेवा मेडल।
0: इन्फेंट्री के एक और अधिकारी एसएम बीएसएम मेजर जनरल महिपाल सिंह राठौर अति विशिष्ट सेवा मेडल आज उन्हें मिलता हुआ।
1: मेजर जनरल अविंदर पाल सिंह बल सेना मेडल।
2: मेजर जनरल अविंदर पाल सिंह बल सेवा मेडल।
0: इन्फेंट्री के एक और अधिकारी मेजर जनरल अविंदर पाल सिंह बल अति विशिष्ट सेवा मेडल आज उन्हें प्राप्त होता हुआ राष्ट्रपति जी के हाथों, जो कि सशस्त्र सेनाओं की सुप्रीम कमांडर हैं।
1: मेजर जनरल धनंजय जोशी विशिष्ट सेवा मेडल।
2: मेजर जनरल धनंजय जोशी विशिष्ट सेवा मेडल द इन्फेंट्री।
0: इन्फेंट्री के एक और अधिकारी मेजर जनरल धनंजय जोशी विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए अपना अति विशिष्ट सेवा मेडल।
1: मेजर जनरल मनदीप सिंह सेना मेडल।
2: मेजर जनरल मनदीप सिंह सेना मेडल इज एन एक्स रेसिपिएंट ऑफ अति विशिष्ट सेवा मेडल।
0: इन्फेंट्री के अधिकारियों की सीरीज चलती हुई मेजर जनरल मनदीप सिंह की बारी है प्राप्त करते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल।
1: रियर एडमिरल निर्भय बापना विशिष्ट सेवा मेडल।
2: द नेक्स्ट रेसिपिएंट ऑफ अति विशिष्ट सेवा मेडल एंड रियर एडमिरल निर्भय बापना विशिष्ट सेवा मेडल।
0: अब आरी आ रही है नौसेना के अधिकारियों की रियर एडमिरल निर्भय बापना विशिष्ट सेवा मेडल आज सम्मानित हो रहे हैं अति विशिष्ट सेवा मेडल से राष्ट्रपति जी के हाथों से।
1: एयर वाइस मार्शल कौशिक चैटर्जी।
2: एयर वाइस मार्शल कौशिक चैटर्जी मेडिकल टू रिसीव द अति विशिष्ट सेवा मेडल।
0: भारतीय वायुसेना की चिकित्सा विंग के एक महत्वपूर्ण सदस्य एयर वाइस मार्शल कौशिक चैटर्जी, राष्ट्रपति जी इन्हें प्रदान कर रही हैं अति विशिष्ट सेवा मेडल।
1: एयर वाइस मार्शल संजीव वशिष्ठ वायुसेना मेडल उड़ान पायलट।
2: The next recipient of Ati Vishesh Seva Medal is Air Vice Marshal Sanjeev Vashisht, VM Flying Pilot.
0: Abari, Bharati Vayu Sena ke is pilot ki Air Vice Marshal Sanjeev Vashisht Ati Vishesh Seva Medal aaj Ganatantra Mandap mein unhe prapt hota hua.

0: Air Vice Marshal Vadapalli Ravi Satyanarayan Raju Vishisht Seva Medal.
1: Air Vice Marshal Vadapalli Ravi Satyanarayan Raju Vishisht Seva Medal, Aeronautical Engineering, to receive that Vishisht Seva Medal.
2: और अब वायुसेना के एक और अधिकारी एयर वाइस मार्शल संजीव कुमार, एयर वाइस मार्शल वाडापल्ली रवि सत्यनारायण राजू विशिष्ट सेवा मेडल, आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के मैकेनिकल विंग के अधिकारी हैं, प्राप्त करते हुए अति विशिष्ट सेवा।
0: एयर वाइस मार्शल संजीव कुमार तालियान, वायुसेना मेडल, उड़ान पायलट।
1: एयर वाइस मार्शल संजीव कुमार तालियान, VM flying pilot,
2: अब भारती,
1: receiving दाती विशिष्ट सेवा मेडल।
2: भारतीय वायुसेना के एयर वाइस मार्शल संजीव कुमार तालियान, अति विशिष्ट सेवा मेडल।
0: एयर वाइस मार्शल मनमीत

0: Singh.
1: Air Vice Marshal Manjeet Singh, Administration Fighter Controller.
2: भारतीय वायुसेना के फाइटर कंट्रोलर हैं एयर वाइस मार्शल मनमीत सिंह. आपको प्राप्त होता है अति विशिष्ट सेवा मेडल आपकी सेवाओं के लिए.
0: एयर वाइस मार्शल मनु मिड्ढा वायुसेना मेडल उड़ान पायलट.
1: एयर वाइस मार्शल मनु मिड्ढा बीएम Flying pilot is the next recipient of Ati Vishisht Seva Medal.
2: और अब बारी अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने की एयर वाइस मार्शल मनु मिड्ढा की. आप एक पायलट हैं.
0: मेजर जनरल राजेश अरुण मोघे विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त.
2: मेजर जनरल राजेश अरुण मोघे विशिष्ट सेवा मेडल मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में थे, अब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन आज एक और उपलब्धि इनके कैरियर में जुड़ती हुई इन्हें मिलता हुआ अति विशिष्ट सेवा मेडल.
1: मेजर जनरल राजेश अरुण मोघे बीएसएम रिसीविंग द अति विशिष्ट सेवा मेडल.
0: मेजर जनरल संदीप कुमार विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त.
1: Major General Sandeep Kumar Vishesh Seva Medal, the Judge Advocate General Department, retired, is receiving Tati Vishesh Seva Medal.
2: Major General Sandeep Kumar Vishesh Seva Medal, the Judge Advocate General Department, retired ho chuke hain. Ati Vishesh Seva Medal prapt karte hue Rashtrapati ji ke kar kamlon se aur salute.
0: Major General Parag Anant Deshmukh Seva Nivrat.
1: Major General Parag Anand Deshmukh, the Army Medical Corps retired, is the next recipient of the Ati Vishesh Seva Medal this evening.
2: Army Medical Corps ke Major General Parag Anand Deshmukh ab retire ho chuke hain, prapt karte hue Ati Vishesh Seva Medal.
0: Air Vice Marshal Satish Kumar Mathur, Udan Pilot, Sevanivrit.
1: Air Vice Marshal Satish Kumar Mathur, flying pilot, retired.
2: और अब राष्ट्रपति जी के सामने जाते हुए Air Vice Marshal Satish Kumar Mathur, आप वायुसेना में उड़ान पायलट थे, रिटायर हो चुके हैं, प्राप्त करते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल राष्ट्रपति जी के कर कमलों से.
0: Air Vice Marshal Nand Kumar Nair, Vishisht Seva Medal, Sevanivrit.
1: Air Vice Marshal Nand Kumar Nair, BSM Aeronautical Engineering Electronics, retired, receiving the Ati Vishisht Seva Medal.
2: भारतीय वायु सेना के एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग विंग में रहे और खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स का काम संभालने वाले एयर वाइस मार्शल नंद कुमार नायर अब रिटायर हो चुके हैं, प्राप्त करते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल और सैल्यूट करते हुए
0: ब्रिगेडियर पवन धुल विशिष्ट सेवा मेडल.
1: ब्रिगेडियर पवन धुल बीएसएम द आर्मी मेडिकल कॉर्प्स.
2: आर्मी मेडिकल कोर के अधिकारी ब्रिगेडियर पवन धुल विशिष्ट सेवा मेडल से अलंकृत हो चुके हैं और आज बारी है अति विशिष्ट सेवा मेडल की, प्राप्त करते हुए राष्ट्रपति जी से. अब बारी सैल्यूट की.
0: सुबेदार एच होकाटो सेमा 2024 पेरिस पैरालंपिक गेम्स शॉटपट कांस्य पदक विजेता वर्ष 2025 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित.
1: Subedar H. Hokako Sema, 9 Assam, recipient of Arjuna Awards.
2: Subedar Hokato Sema, कौन नहीं जानता इन्हें, भारतीय सेना के हैं, लेकिन अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है, शॉटपट के खिलाड़ी रहे हैं 9 असम के. राष्ट्रपति जी के सामने अपना पदक प्राप्त करते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल.
3: अब उत्तम युद्ध सेवा मेडल प्रदान किए जाएंगे.

0: एयर मार्शल मनीष खन्ना, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायुसेना मेडल, उड़ान पायलट।
1: और अब जाते हुए राष्ट्रपति जी के सामने एयर मार्शल मनीष खन्ना, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, फ्लाइंग पायलट है, आज प्राप्त करते हुए युद्ध के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान देने के लिए उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
2: एयर मार्शल मनीष खन्ना एवीएसएम वीएम फ्लाइंग रिसीविंग द उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
0: लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल।
2: लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव एवीएसएम एसएम द पैराशूट रेजिमेंट टू रिसीव द उत्तम युद्ध सेवा मेडल फ्रॉम द प्रेसिडेंट।
1: अगला युद्ध उत्तम युद्ध सेवा मेडल लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव को मिलता हुआ। अति विशिष्ट सेवा मेडल पैराशूट रेजिमेंट हेडक्वार्टर के आप अधिकारी हैं।
0: लेफ्टिनेंट जनरल राजन शेरावत, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
1: गढ़वाल राइफल्स हेडक्वार्टर 9 कोर के अधिकारी, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, और आज प्राप्त होता हुआ उत्तम युद्ध सेवा मेडल लेफ्टिनेंट जनरल राजन शेरावत।
2: लेफ्टिनेंट जनरल राजन शेरावत एवीएसएम वीएसएम रिसीविंग द उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
0: लेफ्टिनेंट जनरल अभिजीत सुरेंद्र पेंढारकर, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल।
2: लेफ्टिनेंट जनरल अभिजीत एस पेंढारकर एवीएसएम वाईएसएम फ्रॉम द असम रेजिमेंट रिसीविंग द उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
1: द असम रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट जनरल अभिजीत पेंढारकर, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल इन्हें मिल चुका है और आज प्राप्त होता हुआ उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
0: लेफ्टिनेंट जनरल गंभीर सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल।
2: लेफ्टिनेंट जनरल गंभीर सिंह अर्लियर रेसिपिएंट ऑफ एवीएसएम एंड वाईएसएम फ्रॉम गढ़वाल राइफल्स रिसीविंग द उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
1: गढ़वाल राइफल्स के अधिकारी हैं लेफ्टिनेंट जनरल गंभीर सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं। उत्तम युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करते हुए सशस्त्र बलों के लिए विशिष्ट योगदान के लिए राष्ट्रपति जी के
0: लेफ्टिनेंट जनरल प्रसन्न किशोर मिश्रा, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल।
2: लेफ्टिनेंट जनरल प्रसन्न किशोर मिश्रा अर्लियर रेसिपिएंट ऑफ एवीएसएम युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, द जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रिसीविंग द उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
1: जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल प्रसन्न किशोर मिश्रा, अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं, युद्ध सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं, प्राप्त करते हुए उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
0: वाइस एडमिरल तरुण सोपती, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
2: नेक्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द उत्तम युद्ध सेवा मेडल इज वाइस एडमिरल तरुण सोपती एवीएसएम वीएसएम।
1: नौसेना के अधिकारी वाइस एडमिरल तरुण सोपती, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, अब मिलता हुआ उन्हें उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
0: एयर मार्शल प्रवीण केशव वोहरा, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायुसेना मेडल, उड़ान पायलट।
2: एयर मार्शल प्रवीण केशव वोहरा अर्लियर रेसिपिएंट ऑफ अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायु मेडल, फ्लाइंग पायलट रिसीविंग द उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
1: लड़ाकू विमान उड़ाते हैं आप, एयर मार्शल प्रवीण केशव वोहरा, अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए उत्तम युद्ध सेवा मेडल।

0: बहन हो, जेठानी हो, ये सभी महिलाएं और साथ में घर के पुरुष, अगर ये किसी महिला को आगे बढ़ाएंगे, वो महिला के लिए एक सपना जो सबकी आंखों में रहता है आगे बढ़ने, पुरुष भाइयों से गुजारिश है और साथ में घर की महिलाओं से भी ये गुजारिश है, आगे बढ़े और बाकियों को भी बढ़ने दें, साथ में नारी तू है नारायणी वाले स्वप्न को जरूर पूरा करें।
1: डॉक्टर प्रतिभा जोशी जी, देखिए बहुत ही विस्तार में आपने बताया कि ग्रामीण महिलाओं के लिए ऑनलाइन उद्यमिता को कैसे बढ़ावा दिया जाए। आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे साथ, हमारे श्रोताओं के साथ साझा की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो ये हमारी बहनों के लिए बहुत ही उपयोगी बातचीत थी, ग्रामीण महिलाओं के ऑनलाइन उद्यमिता का रास्ता खोलने वाली बातचीत थी और इसमें विशेषज्ञ थी डॉक्टर प्रतिमा जोशी। आप वैज्ञानिक हैं कृषि प्रसार में और इनसे बातचीत कर रही थी यमुना देवी।
3: तो चलिए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अपने भाइयों का करवाते हैं मनोरंजन और सुनते हैं श्रीनिवास शर्मा से ये रागिनी।

0: और साथियों अभी आप सुन रहे थे श्रीनिवास शर्मा को और उनकी गाई इस रागनी को। और शीतल बहन, आज बड़ा एक खास दिन है, नाम तो इसका बड़ा लंबा चौड़ा सा है लेकिन इसका महत्व बड़ा अलग है। आज है अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस। अब आप कहोगे कि वीरेंद्र भाई ये होता क्या है, तो ये क्या है कि पृथ्वी की एक ऐसी स्थिति जहाँ पर ये उष्णकटिबंधीय वन होते हैं या क्षेत्र हैं, उनकी जो सांस्कृतिक धरोहर है और पर्यावरणीय धरोहर है वो बड़ी अलग है। और उसी से पूरी पृथ्वी की जो 80% जनसंख्या है उसका पालन पोषण होता है, उसकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होती हैं। तो आज इस दिवस को मनाया जाता है 29 जून को, और इसमें जो भी अनूठी चुनौतियां होती हैं उनके बारे में बातचीत की जाती है
1: और लोगों को जागरूक किया जाता है
0: जी, और सांस्कृतिक समृद्धि का जश्न मनाया जाता है
1: जी। बिल्कुल, तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं अगली रागनी सूरज सिंह अधाना की आवाज में।

0: अभी श्रोता सुन रहे थे सूरज सिंह अधाना की आवाज में ये रागनी, और इसी के साथ हमारा आज का ग्राम संसार कार्यक्रम यही समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को
1: राम राम, राम, राम।
0: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पारासर और संयोजक थे शिवनंदन लाल।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्षेण, लेफ्टिनेंट जनरल विकास रोहेला, लेफ्टिनेंट जनरल हरविंदर सिंह वंद्रा और लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पाल सिंह को अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार जम्मू कश्मीर पूर्वोत्तर और देश की सीमाओं पर आतंकवाद, उग्रवाद और शत्रुतापूर्ण खतरों के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में असाधारण साहस के कार्यों को भी मान्यता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेशेल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशेल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशेल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की।

0: हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इसी बीच जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में DRDO को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन DFP 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि DFP 2026 अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफार्मों और प्रौद्योगिकियों के तेजी से उत्पादन और रक्षा बलों में उनके समावेशन को सुगम बनाएगा। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ब्रिक्स CCI के प्रतिनिधि मंडल ने आज नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ सिंह ने कहा कि वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उभरती प्रौद्योगिकियों में इसकी अग्रणी भूमिका उद्योग संगठन को मजबूत अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने का एक आदर्श अवसर प्रदान करती है जो राष्ट्रीय विकास और वैश्विक प्रगति में योगदान देती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ाया है, इससे देश के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक सस्ती और सुलभ हो गई हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी भी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि यह वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी भी निवेश योजना, उपकरण या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 2400 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। देश में इस वर्ष मई में वार्षिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP पर आधारित औद्योगिक उत्पादन में 5.1% की वृद्धि हुई। बीते अप्रैल में देश के औद्योगिक उत्पादन में 4.9% की वृद्धि हुई है थी। किदाम्बी श्रीकांत US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के उप विजेता रहे। पुरुष सिंगल्स फाइनल में श्रीकांत को चीनी ताइपे के सूलिंग ली यांग से हार का सामना करना पड़ा। और इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। शाम के 7:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को राम राम।
1: आज शीतल बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियां आपके लिए और अपने किसान बहन भाइयों और युवाओं के लिए लेकर आए हैं हम।
0: जी बिल्कुल, पर श्रोताओं खासकर ध्यान रखें कि जैसे कि मौसम आप देख रहे हैं आजकल बहुत ज्यादा गर्म है, लू चल रही है, मेरा खुद का भी गला खराब है क्योंकि ठंडा गर्म हो जाता है, मुझे भी हो गया है। आपको ख्याल रखना है खासकर, और इस समय जो आपको सेवन करना है ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है। और क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम एक बार गर्मियों में खाना हम कम खा लें चल जाएगा, लेकिन पानी

0: हमें प्रचुर मात्रा में चाहिए ही चाहिए, चाहे वो हम पानी पिए या जूस पिए या कोई भी हम तरल पदार्थ लें। और ऐसे में क्या होता है, जो हमारी प्रकृति ने हमें सब्जियां दी हैं गर्मियों में, ऐसी सब्जियों का सेवन करें जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो।
1: जी।
0: तो फिर आज हम बात करेंगे अपने श्रोताओं के लिए कि ग्रामीण युवा किस प्रकार बात करें।
1: जी। और आज हम आपको बताने वाले हैं अर्बन फार्मिंग और टेरेस फार्मिंग के बारे में, कि कैसे छोटी सी जगह में हम अपनी आवश्यकता की या बिक्री के लिए थोड़ी बहुत सब्जी फलों का उत्पादन किया जा सकता है। इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ ग्रामीण युवाओं के लिए शहरी क्षेत्रों में सब्जियों की कैसे व्यवस्थित तरीके से व्यावसायिक उत्पादन किया जा सकता है, इस पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अनंत कुमार।
0: जी बिल्कुल, आप वैज्ञानिक हैं केवी के बागपत से।
1: जी।
0: तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर।
2: नमस्कार।
0: जी बिल्कुल सर, अब सर बताएं कि कौन कौन सी सब्जियां हैं जो व्यवसाय के लिए उगा सकते हैं।
2: बिल्कुल, आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, हमारे जो पहले आपने शहरी और फार्मिंग की बात की है, हम शहरों में जो है किस तरह की खेती कर सकते हैं। देखिए, आजकल क्या है, सबको शहरों में ताज़ी सब्जियां और रसायन मुक्त सब्जियों की आवश्यकता आज बढ़ती चली जा रही है।
1: जी।
2: तो ऐसे में जो हमारे छतें हैं, छत पे हम टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं, और जो हमारी बालकोनीज है वहाँ भी हम अपने हाइड्रोपोनिक्स के माध्यम से और अपना जो है मल्टीलेयर फार्मिंग जिसे हम बोलते हैं, उसके माध्यम से जो है कर सकते हैं, वर्टिकल फार्मिंग कर सकते हैं। इस तरीके से हम अपने घर में ही शहरों में जो हमारे छोटे छोटे मकान हैं या छत हैं उन पे ही जो है हम मल्टीलेयर फार्मिंग या हाइड्रोपोनिक्स के या एरोपोनिक्स के माध्यम से जी ताज़ा सब्जियां, रसायन मुक्त सब्जियां उगा सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, आप जो बता रहे हैं उसमें जो सीधे खड़े हुए गमले होते हैं उनके अंदर जगह जगह होल से होते हैं और उनके अंदर फार्मिंग होती है, कुछ ऐसी व्यवस्था होती है।
2: जी जी जी, वर्टिकल फार्मिंग इसे ही कहते हैं हम, जिसमें जो है हम लेयर में जो है परत दर परत जो है सब्जियां जो है उगाते हैं पाइपों के माध्यम से, और इसमें कम जगह में, कम समय में और कम पानी में हम ज्यादा सब्जियां जो है वो ले सकते हैं। और इस तरह से जो है हमारे जो एक आपने एक और प्रश्न किया था, उसमें आपने पूछा था कौन कौन सी सब्जियां ऐसी हैं जिन्हें हम संरक्षित कर सकते हैं, जिसे जो है हम अच्छे से संरक्षित रख सकते हैं। तो उसमें अगर हम बात करते हैं डेली यूज में जो सब्जियां ज्यादातर प्रयोग होती हैं, चाहे हमारा टमाटर हो, मिर्च है, आपका बैंगन है, लौकी, तुरई, करेला, ककड़ी, ये इस तरह की सब्जी जो ज्यादातर ज्यादा यूज में होती हैं, इन्हें हम आसानी से उगा भी सकते हैं और संरक्षित भी रख सकते हैं।
1: जी
0: जी सर। सर, शहरों में सब्जियों की सप्लाई का व्यवसाय ग्रामीण युवाओं के लिए क्या लाभदायक हो सकता है?
2: बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही आज की परिप्रेक्ष्य में ये बहुत ही आवश्यक है। जो हमारे ग्रामीण युवक हैं वो रोजगार के लिए शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं, पर शायद उन्हें ये ध्यान देना है कि असली रोजगार वो गांव से ही प्रारंभ होता है, और उसके लिए आज शहरों में जो है ताजी सब्जियों की मांग, रसायन मुक्त सब्जियों की मांग वो दिनादिन बढ़ती चली जा रही है। इसके लिए हर आदमी ये चाहता है शहरों में रहने वाला कि उसे ताजी सब्जियां, रसायन मुक्त सब्जियां अगर मिल जाए तो उसका जो है वो 2 से 3 गुना अधिक दाम भी देने को तैयार है। तो जो ग्रामीण युवक है वो गांवों से जो है ताजी और रसायन मुक्त सब्जियों को शहरों में ले जाके, चाहे वो सोसाइटी में हो, चाहे मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स में हो, चाहे रेस्टोरेंट में हो, चाहे होटलों में हो, वहाँ उनकी सब्जियाँ देख सब्जियाँ बेच के जो है वो अच्छा धन कमा सकता है। इसमें जो है जो उपभोक्ता है, जो शहरी
1: क्षेत्र में
2: आदमी है, उन्हें भी एक लाभ होगा। जो बिचौलियों के माध्यम से जो है वो सब्जी शहरों तक पहुंचती है वो उसमें कई दिन लगते हैं, यहाँ हम सीधे ही ग्रामीण युवक से के संपर्क में आके ग्रामीण युवक गांव में जो है सब्जियां पैदा कराए, वहां एक समूह बना के वो सब्जियों को ताजी अवस्था में जो है शहर में लेके जाए, और डिमांड के अनुसार
1: जी
2: जो डिमांड उन्हें मिलती है उस पे जो है ला के जो है वहां सप्लाई देगा, तो जिससे जो है हम बिचौलियों में जो हमारा ज्यादा पैसा जाता है
1: जी, जी।
2: वहां से भी हम बच सकते हैं।

0: और रसायन मुक्त सब्जियां जो है हमें शहरों में अच्छे से मिल सकती है और गांव के लिए, युवाओं के लिए एक अच्छा रोजगार ये अच्छा साबित हो रहा है।
1: तो सर, क्या कोई ग्रामीण युवा इस व्यवसाय की शुरुआत अगर करना चाहता है तो उसे किन बातों का ध्यान रखना होगा?
0: बिल्कुल, देखिए जो ग्रामीण युवा है उन्हें किस किस बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली तो बात यह है कि वो जो हरी सब्जियां जो शहर में तक ले जाएगा, हर आदमी फ्रेश सब्जियां, फ्रेश फल, फ्रेश फूल, ये सब चीज़ पसंद करता है, तो उसे सबसे पहले जो है जो वाहन है वो इस तरह का बनाना पड़ेगा जिससे जो है वो शहर तक ले जाने में सब्जी एकदम ताज़ी बनी रहे। अपने जो ठेला है या जो भी वाहन का जिसका इस्तेमाल कर रहा है उसमें इस तरह का रेफ्रिजरेटर वगैरह उसमें रखा होना चाहिए जिससे जो है शहर तक जाने में जो है हमारी सब्जियां जो है वो खराब ना हो।
2: जी, ताजी बनी रहेंगी तो ज्यादा मूल्य मिलेगा,
0: ज्यादा ज्यादा से ज्यादा मूल्य मिलेगा। दूसरी चीज डिमांड, मैंने कि डिमांड के अनुसार आज डिमांड जो है वो प्राकृतिक खेती, प्राकृतिक उत्पाद या जैविक उत्पाद का जो है वो 2-3 गुना ज्यादा अधिक मिल रहा है, तो उसे जो है इस तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो सब्जियां किस माध्यम से जो है शहर तक जाएंगी वो फ्रेश बनी रहे उसका इस्तेमाल उसे ज्यादा से ज्यादा करना है।
2: जी, अभी आपने बताया कि वो जो ताजी सब्जियां हैं उनका मूल्य ज्यादा मिलता है, तो वो सब्जियों की गुणवत्ता भी इसमें अच्छी होती है तो और ज्यादा वो मिलता है। ऑर्गेनिक खेती में जो सब्जियां होती हैं उनकी मतलब खाने की जो स्वाद की गुणवत्ता होती है वो अलग ही होती है।
0: देखिए आजकल क्या हुआ है कि आज से 25-30 साल पहले अगर हम बात करें, जब घरों में सब्जियां बनती थी तो आप देखिए कि दूसरा तीसरा घर भी ये बताता था कि भाई आपके यहाँ लौकी बनी है, आपके यहाँ फूल गोभी बनी है, आपके यहाँ ये वाली सब्जी बनी है। पर आज क्या हो रहा है कि आज केमिकल जो रसायन जो है इतना ज्यादा इंसेक्टिसाइड, फंजिसाइड या फर्टिलाइजर इतना ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, यहाँ तक कि वैज्ञानिकों की बहुत सारे किसान नहीं सुन रहे हैं, वो अनाधुंध उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं, कीट आए या ना आए उसमें जो है इंसेक्टिसाइड फंजिसाइड का स्प्रे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमने जो है जो खुशबू थी तो वो जो है हमारी गायब हो गई है और हम जो है जो उचित सब्जियां हमें मिलनी चाहिए जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होती है वो शायद आज बहुत सारे किसान नहीं उगा पा रहे हैं।
2: जी,
0: तो इसके लिए भी जो ग्रामीण युवा है उस पर वो तकनीकी आती हैं, जैसे वो अपने गांव में क्या होता है कि गांव में तो बड़े बड़े खेत होते हैं, शहरों में जमीन का अभाव होता है।
2: जी,
0: तो जो शहरों में भी हम ग्रामीण युवक टेरेस गार्डन, ग्रो बैक लगा के, ड्रिप इरीगेशन लगा के वहाँ भी जो है शहरी लोगों को वहाँ अपनी छतों पे, उनकी छतों पे करने का तरीका भी बता सकता है और उसे भी करा के जो है वो आय अर्जित कर सकता है।
2: जी
1: सर, जैसे कि आप बात कर रहे थे गुणवत्ता और ताजगी की बहुत बड़ी भूमिका होती है जब सब्जियां पहुंचती हैं शहरों वालों के पास, तो क्या इसमें परिवहन और पैकेजिंग और भंडारण की भी क्या कोई भूमिका होती है?
0: बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सबसे पहले ग्रामीण युवक को ये ध्यान देना है कि भाई मुझे डिमांड कितनी है उतनी ही सब्जी का वो भंडारण करें।
1: जी,
0: भंडारण इस तरह से ना करें कि भाई हमें डिमांड जो है 1 क्विंटल की और हम 2 क्विंटल 2.5 क्विंटल लेकर रख लें तो उसकी गुणवत्ता जो है वो डाउन हो जाएगी, फिर उसकी मार्केट नहीं होगी। तो हमें क्या करना है कि पैकेजिंग आजकल इको फ्रेंडली का जमाना है, ठीक है ना, इको फ्रेंडली जो है पैकिंग होनी चाहिए, साथ ही साथ हाइजीन का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है।
1: जी,
0: इस तरह से पैकिंग की जाए एकदम शुद्ध ताकि जो है वो शुद्धता बनी रहे, उसे खाने वाले बीमार ना हो, इस तरीके से रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल किया जाए ताकि वो ताजी बनी रहे।
1: तो क्या सर देखने में भी थोड़ी सुंदर होनी चाहिए कुछ ऐसी भी पैकेजिंग या फिर बस सिंपल एक पन्नी की तरह कुछ होती है?
0: पैकेजिंग की सुंदरता पे नहीं जाइए, सब्जी की सुंदरता पे जाइए, खाने की
2: ताजगी
0: पे जाइए, उसकी गुणवत्ता पे जाइए, वो रसायन मुक्त हो उस पे जाइए, ठीक है ना। पैकिंग मैंने कहा हाइजीन होनी चाहिए, पैकिंग ग्रेडिंग के हिसाब से होनी चाहिए। आजकल ग्रेडिंग का टाइम चल रहा है कि एक ही तरह की ग्रेडिंग जो है होनी चाहिए, अगर जिस साइज के फल है, जिस साइज के फूल है, जो भी है सब्जियां हैं वो एक ही ग्रेड के जो है सब्जियां होनी चाहिए, ए ग्रेड है तो ए ग्रेड, बी ग्रेड है तो बी ग्रेड, सी ग्रेड है तो सी ग्रेड, तो ग्रेडिंग के अनुसार हमारी पैकिंग होनी चाहिए जिसका मूल्य जो है हमें अच्छा मिलता है।
1: तो सर ग्रेडिंग के अनुसार ही मार्केट में सब्जी की बिक्री होती है कि ए ग्रेड की है तो उसके अनुसार आपको उसका दाम मिलेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपने देखा होगा

0: जो अच्छी मार्केट है, जो अच्छे खरीदार हैं, वो ए ग्रेड की सब्जियां खरीदेंगे, ठीक है ना। अगर आपने उस पर लेवल लगाया हुआ है कि ये जैविक उत्पाद है या प्राकृतिक उत्पाद है, तो उसका लेवल लगा हुआ जो है उसके खरीदार आपको अलग मिलेंगे। बी ग्रेड की जो सब्जियां हैं, फल हैं, उसका जो है बी ग्रेड वाले लोग अलग मिलेंगे आपको, वो थोड़ा सा कम कॉस्ट वाले, जो कम खर्च करने वाले लोग हैं। सी ग्रेड की सब्जियां हैं तो सी ग्रेड के खरीदार आपको अलग मिलेंगे। तो मार्केट में हर तरह का खरीदार है, आप किस क्वालिटी का बेचना चाह रहे हैं वो।
1: मतलब किसी भी किसान को या ग्रामीण युवाओं को नुकसान नहीं होगा, आपको हर तरह का ग्राहक शहरों में मिल जाएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहले ही आपको क्या करना है कि आजकल सोसाइटी में, मल्टीप्लेक्स में, आपके रेस्टोरेंट में पहले ही डिमांड लेनी पड़ेगी
2: जी।
0: अगर आप पहले से डिमांड नहीं लेंगे तो फिर आपको प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि फिर आप ऐसे घूमते रहेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो पहले से आपको डिमांड लेनी है और डिमांड के अनुसार आपको सप्लाई देनी है।
1: तो सर क्या इसके लिए भी कोई ट्रेनिंग होती है? इस पे हम बात करेंगे आपसे, लेकिन उससे पहले अपने भाइयों का करवाएंगे मनोरंजन और सुनेंगे राजेंद्र जाटक के आज में एक उपदेश।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे राजेंद्र जाटव को, और हम अर्बन फार्मिंग की और टेरेस फार्मिंग की खास बात कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारी जानकारी डॉक्टर अनंत कुमार ने हमें दी है, लेकिन अभी और भी जानकारी आपके साथ साझा करनी है। तो शीतल, आप भी अच्छी अच्छी सब्जियां खाती होंगी, तो आपको कभी इस विषय की याद आई कि भाई मैं भी

0: ये थोड़ी बहुत खेती वेती कर लूं छत वत
1: नहीं,
0: पे।
1: लेकिन अब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कर लेना चाहिए, फायदा होगा।
0: जी, डॉक्टर साहब आए हैं तो उनसे पूछ लो जो भी पूछना है।
1: तो सर ये बताएं कि हम बात कर रहे थे कि फार्मिंग के बारे में, क्या सरकार या विभिन्न संस्थाओं द्वारा इस प्रकार का कोई व्यवसाय अगर हम करते हैं तो कोई ट्रेनिंग या कोई लोन या कोई सहायता सरकार हमें देती है ये अर्बन फार्मिंग और टेरिस फार्मिंग को लेकर?
2: जी जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात आपने पूछा है। देखिए, जब हम अर्बन फार्मिंग की बात कर रहे हैं, शहरी खेती की बात करते हैं, तो उसमें हम बात करते हैं आपका टेरेस गार्डन की, उसमें बात करते हैं हाइड्रोपोनिक्स की, उसमें बात करते हैं एरोपोनिक्स की, उसमें बात करते हैं हम वर्टिकल फार्मिंग की।
1: सर मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी, आपने सर दो तीन बार ये शब्द इस्तेमाल किया हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स वगैरह।
2: जी जी जी,
1: वो क्या है सर, एक बार हमारे श्रोताओं को?
2: बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हाइड्रोपोनिक्स जो है वो कम क्षेत्रफल में पाइपों के माध्यम से उसमें केवल पानी और जो पोषक तत्व हैं वो मिला के जो है चलाए जाते हैं, जिसमें जो है जो पौधे को खड़ा करने के लिए हम कोकोपिट और परकोलाइट का इस्तेमाल उसमें करते हैं
0: जी।
2: इसमें बस पानी में पोषक तत्वों को हम चलाते रहते हैं, अलग से और कुछ नहीं डालते, मीडिया इसमें और इसमें नहीं इस्तेमाल करते हैं। और ये हम अपने घरों की छतों में या बालकोनी में ये पाइपों के माध्यम से पूरा जाल बना लेते हैं और उसी में जो है आप जो है जो सीजन की जो सब्जियां हैं वो बड़े आराम से ग्रो कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एकदम ताज़ी सब्जियां अपनी बालकोनी में से लीजिए और उसमें रसायन मुक्त सब्जियां बड़े आसानी से उगाई जाती हैं। और शहरों में इसका चलन बहुत तेज़ी के साथ, इस आधुनिक तकनीकी का चलन जो है बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। इसी तरीके से वर्टिकल फार्मिंग, वर्टिकल फार्मिंग में मैंने बताया कि इसमें जो है लेयर्स में, मतलब परत दर परत जो है हम अपने घरों में जो है या छतों पे जो है इस तरह का ढांचा तैयार करते हैं या रैक लगा लेते हैं और रैक में जो है अपना गमला ये इस तरह से रख लेते हैं या पाइपों में वर्टिकल फार्मिंग करते हैं। तो जिस तरह का भी डिजाइन है आपको तैयार कराना है तो उस तरह का हम तैयार करा के इसमें हम सब्जियां बिल्कुल ताज़ा सब्जियां रसायन मुक्त सब्जियां जो है उगा सकते हैं। इसमें एक विधि मैंने और जिक्र किया है जिसमें मैंने बात की एरोपोनिक्स। एरोपोनिक्स में क्या होता है कि इसमें बिल्कुल जो है हम किसी चीज़ का भी इस्तेमाल नहीं करते, बस न्यूट्रिएंट जो हैं पोषक जो तत्व हैं पौधे को, जो 16-17 पोषक तत्व दिए जाने हैं उसमें पौधे को एक बॉक्स में जो है उसकी जड़ें लटका दी जाती हैं हवा में और वहाँ जो है भाप के द्वारा फोक के द्वारा जो है वो पूरे पोषक तत्व दिए जाते हैं जिससे पौधा जो है जड़ों के माध्यम से ले लेता है। और इसमें जो हम आलू की खेती है वो बड़े आसानी से करते हैं और इसके साथ जो आपका पत्ते वाली जो सब्जियां हैं उसे भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं।
0: जी
1: सर एक सवाल और मेरा यह है कि अगर कोई युवा है, ग्रामीण युवा है, कोई मिलकर किसान उत्पादक संगठन जो कि FPO होते हैं या क्या किसी समूह के रूप में कार्य करे तो क्या उसे अलग से कोई लाभ मिल सकता है?
2: देखिए बिल्कुल, ये बहुत ही आवश्यक प्रश्न है इसका, आज के बातचीत का। देखिए इसमें क्या है कि जो हमारे ग्रामीण युवक हैं वो अगर किसान उत्पादक संगठन अगर बना लेते हैं कि भाई हमें ये सब्जियां अपने क्षेत्र में उगवानी हैं और इसे उगवाने के बाद हम शहरों में इसके डिमांड लेके जो है ये हम ताजिया रसायन मुक्त सब्जियां जो है सप्लाई देंगे
0: जी।
2: तो इसका जो है आजकल क्रेज बहुत ज्यादा है, FPO का आपने सुना ही होगा, FPO गांव गांव बनाए जा रहे हैं। तो उसमें जो है इसका विशेष तौर से अगर हमारे जो नए युवा हैं वो इस तरह से अपना एक संगठन बना के जो है ताजी सब्जियों को शहरों में आसानी से बेच सकते हैं और अपना जो है आय का एक अच्छा स्रोत वो तैयार कर सकते हैं।
0: जी
1: सर, और सर अगर आपको कोई संदेश अगर देखना चाह रहे हो हमारे जो ग्रामीण युवा हैं या जो सपना देख रहे हैं कृषि आधारित उद्यम शुरू करने का या करना चाह रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: देखिए जैसे मैं कृषि विज्ञान केंद्र में कार्यरत हूँ तो मैं ये कहूँगा आप कृषि विज्ञान केंद्र में जाइए, पहले इसकी तकनीकी थोड़ी जानकारी लीजिए कि किस तरीके से जो है हमारे जो ग्रामीण युवा हैं वो अपने क्षेत्र में किस किस सब्जियों को आसानी से उगवा सकते हैं। उसी के साथ साथ जो अपने नज़दीकी शहर हैं आप उस शहर में जाके जो है जो मल्टी स्टोरी हैं, सोसाइटीज़ हैं, आपके रेस्टोरेंट हैं या होटल्स हैं उनमें जाके आप डिमांड लीजिए, फिर उसके आधार पे जो है अपने क्षेत्र में जो है सब्जियां तैयार करें। ये सब्जियां तैयार कराने के बाद फिर जो है आप

0: उस सप्लाई दीजिए और कोशिश करिए कि आपके पास ऐसे वाहन हों जिसमें जो है ताजी या सब्जियां शहर तक आसानी से पहुंच जाएं। खरीदार को ये लालच भी रहना चाहिए कि मुझे ताजी सब्जी मिल रही है, रसायन मुक्त मिल रही है, और साथ ही साथ जो किसान का जो है पैसा वो बिचौलिए पर ज्यादा जाता था, तो उसकी जो है सीधे जो है ग्रामीण युवक को सीधे बचत होगी, जिससे जो है वो एफपीओ को बचत होगी और एफपीओ को सरकार से जो है लाभ मिलता ही मिलता है, ये सब लोग जानते हैं। तो इस तरीके से हमारे ग्रामीण युवा जो है वो अपनी आय का एक अच्छा स्रोत गांव में बैठे हैं जो है बना सकते हैं।
1: सर, कार्यक्रम के अंत में एक सवाल आप कुछ पूछना चाह रहे हैं भाई?
2: हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो हमारे छोटे किसान हैं वो भी क्या इन सब्जियों के उत्पादन में जुड़ सकते हैं शहरों से?
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमारे जो छोटे किसान हैं उनके लिए सब्जियां जो है सबसे लाभकारी जो है एक उद्यम है। अगर वो सब्जियों की खेती करता है तो वो एक साल में 3-4 फसलें आसानी से ले सकता है। और आजकल क्या है, मल्टी स्टोरी का जमाना आ गया। अब हम मल्टी स्टोरी जो है वो तैयार करा रहे हैं, एक ही साथ जो है वो 3-3, 4-4 फसलें लेवा रहे हैं, जिससे जो है छोटा किसान जो है एक साथ 3-4 फसलें लेकर जो है वो मार्केट के लिए अच्छी सब्जियां तैयार कर सकता है। और साथ ही साथ ये देखिए कि आजकल डिमांड बहुत तेजी के साथ जो है वो हमारी बढ़ रही है जैविक उत्पाद की, प्राकृतिक उत्पाद की। तो हमारे जो छोटे किसान हैं उस तरफ भी ध्यान दें कि कहाँ से हमें ज़्यादा अर्निंग हो सकती है, तो उस तरफ जो है छोटे किसान जो है काम करेंगे, सब्जियों पर ज़्यादा काम करेंगे तो उन्हें ज़्यादा फायदा जरूर पहुँचेगा।
2: जी, तो डॉक्टर साहब बहुत ही लाभकारी रही है आपसे ये बातचीत, और विषय था ग्रामीण युवाओं के लिए शहरों में सब्जियों की सप्लाई और अर्बन फार्मिंग और टेरेस फार्मिंग, और इस विषय पर बातचीत कर रहे थे डॉक्टर अनंत कुमार, आप वैज्ञानिक हैं बागपत में।
1: जी बिल्कुल, और ये जो बातचीत हमारे साथ डॉक्टर साहब ने की, हमारे ग्रामीण युवाओं के लिए शहरों में सब्जियों की सप्लाई के व्यवसाय से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। यकीनन हमारे जो ग्रामीण युवा हैं और साथ के साथ जो हमारे शहरी युवा हैं जो अपने टेरेस पे छत पे अगर कुछ फार्मिंग करना चाहते हैं और लाभ कमाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही लाभदायक होगी।
2: डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी बहुमूल्य जानकारी दी, आपका आभार, धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद,
0: नमस्कार।
2: और इसी के साथ साथियों, आज का ये कृषि जगत कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान बहन भाइयों को राम राम।
1: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पारासर और संयोजक थे शिव नंदन लाल।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। इस वक्त शाम के 7:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गजलों का, जिसमें आप सुनेंगे जगजीत सिंह की आवाजों में चंद गजल।

शफक कहते हैं किरणों को, रेस और धनुक रेनबो, महताब चंद्रमा, घटाएं तो आपको मालूम है। शफक धनुक महताब घटाएं, तारे नगमे बिजली

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 7:45 होने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
1: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
2: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
1: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
2: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
1: आप कौन?
3: आरबीआई कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू। सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के 5 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज सहकारिता सप्ताह 2026 का शुभारंभ किया गया और दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अंतर्राज्यीय साइबर धोखाधड़ी और मादक पदार्थ तस्करी मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष रक्षा अलंकरण समारोह के दूसरे चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इसके अंतर्गत सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए।
6: राष्ट्रपति द्वारा ये अलंकरण 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा, 30 परम विशिष्ट सेवा, 12 उत्तम युद्ध सेवा और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक कर्मियों को उनकी असाधारण उत्कृष्ट सेवा के लिए दिए गए हैं। ये सम्मान देश में आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। एयर मार्शल तरुण चौधरी को अति विशिष्ट सेवा पदक, वाइस एडमिरल अरुण सोपती को उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। वहीं परम विशिष्ट सेवा पदक से लेफ्टिनेंट जनरल मंजिंदर सिंह को सम्मानित किया गया। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक प्रदान किया गया। इससे पहले राष्ट्रपति ने 8 जून को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए विशाल शर्मा।
5: दिल्ली सरकार ने आज राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण को कम करने और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ईवी नीति को मंजूरी दी है। 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहने वाली इस नीति का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, शून्य कार्बन उत्सर्जन और दिल्ली को प्रदूषण मुक्त शहर बनाना है। इसे 1 जुलाई से चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।
7: श्रीमती गुप्ता ने बताया कि अगले 4 वर्षों में इस नीति पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं 8,000 करोड़ रुपए की लागत से 30,000 से अधिक चार्जिंग स्टेशन और अन्य अवसंरचनात्मक तैयारियां की जाएंगी,
8: जिसमें हमने खरीद पे प्रोत्साहन दिया है, स्क्रैपिंग पे प्रोत्साहन दिया है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है और रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन की छूट भी इस पॉलिसी में दी गई है।
7: वहीं 30 लाख रुपए तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नीति से दोपहिया, तिपहिया, चार पहिया वाहन और N1 ट्रक जैसी वाहन लाभान्वित होंगे। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इससे दिल्ली में प्रदूषण की समस्या कम होगी, परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी और दिल्ली एक स्मार्ट सिटी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगी। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
5: शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT में आयोजित टेक फॉर फ्यूचर, फ्यूचर मेकर्स इनोवेटर्स बूट कैंप के ग्रैंड फिनाले और इनोवेशन शोकेस का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सीएम श्री स्कूलों के विद्यार्थियों ने स्मार्ट सिटी, कृषि, आपदा प्रबंधन और सहायक प्रौद्योगिकी जैसे विषयों पर 20 नवाचारी तकनीकी प्रोटोटाइप प्रस्तुत किए।
9: समारोह के दौरान शिक्षा निदेशालय ने दिल्ली के 4 प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, दिल्ली कौशल और उद्यमिता विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय महिला तथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली के साथ 3 वर्षों के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों के अंतर्गत श्री स्कूलों के विद्यार्थियों और शिक्षकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स तथा अन्य उभरती तकनीकों में विशेषज्ञ मार्गदर्शन और अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। श्री सूद ने कहा कि ये पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को भविष्य की तकनीकों से जोड़ने

0: और उन्हें नवाचार आधारित कार्यबल के रूप में तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए अलका सिंह।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ कल से मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे।
2: जो हमारे लिए डेट है हाउस टू हाउस, जिसमें बीएलओज एक एक घर जाकर सभी इलेक्टर्स को इनुमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो 30 तारीख से शुरू हो जाएगी और 29 जुलाई तक फॉर्म वापसी की भी डेट है। और इसके लिए जो हमारे 13,033 बूथ्स हैं, वो सभी पे बीएलओज अपॉइंटेड हैं, तो सभी बीएलओज को उनके इनुमरेशन फॉर्म हमने दे दिए हैं, जो कि कल सुबह से अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सुविधा दी गई है।
1: श्री कुमार ने कहा कि दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दाखिल की जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन भी गणना प्रपत्र भर सकते हैं। सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के 5 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में दिल्ली में आज सहकार से समृद्धि सहकारिता सप्ताह 2026 का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में सहकारिता जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखाकर सप्ताह भर चलने वाले जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की।
3: सहकार से समृद्धि सहकारिता सप्ताह 2026 के शुभारंभ के दौरान श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सहकारिता सामाजिक सहभागिता, आत्मनिर्भरता और सामूहिक विकास का सशक्त माध्यम है। वहीं सहकारिता मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह सहित दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और आशीष सूद भी उपस्थित रहे। श्री सिंह ने कहा कि सप्ताह भर दिल्ली में जागरूकता अभियान, सेमिनार, पैनल चर्चा, ऑनलाइन और ऑफलाइन क्विज प्रतियोगिताएं तथा वृक्षारोपण अभियान आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि नरेला, द्वारका, रोहिणी सहित विभिन्न क्षेत्रों में लगभग

0: मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। इनमें आरोग्य सेतु के दूसरे चरण, आयुष्मान सारथी चैटबॉट, आयुष्मान ऐप, ई सुश्रुत क्लिनिक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य दावा विनिमयन और भारत के डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए स्वास्थ्य मानक शामिल हैं। श्री नड्डा ने इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।
1: Applications launch is going to play a very important role.
2: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 सालों में कई नई पहलें शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है और उन्हें देश में सस्ता और सुलभ बनाया है। इसमें 62 करोड़ लोग शामिल हैं और अब भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है।
1: लार्जेस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा दिल्ली विधानसभा में कल डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी की 162वीं जयंती के अवसर पर बंगाल टाइगर आशुतोष मुखर्जी के संकलित भाषण नामक विशेष स्मारक ग्रंथ का लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता करेंगे। समारोह में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और शिक्षा मंत्री आशीष सूद तथा विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट भी उपस्थित रहेंगे। इस स्मारक ग्रंथ में डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी के संसदीय भाषणों का पहली बार एक संकलित संस्करण प्रकाशित किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अंतर्राज्यीय साइबर धोखाधड़ी मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार ये आरोपी अब तक कुल 26 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर चुके हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से 14 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, डिजिटल सबूत और एक चार पहिया वाहन बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी झारखंड के जामतारा और देवघर सहित राष्ट्रीय राजधानी में सक्रिय थे। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अभिमन्यु पोसवाल ने मीडिया से बातचीत में बताया कि आरोपी पीड़ितों को व्हाट्सएप द्वारा एपीके फाइल भेजकर उन्हें इंस्टॉल करने के लिए उकसाते थे, जिससे पीड़ित की बैंक से जुड़ी जानकारी आरोपी को हासिल हो जाती थी। वहीं पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 1392 ग्राम मादक पदार्थ बरामद किए। पुलिस ने बताया कि आरोपी पहले 9 आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। दोनों मामलों में आगे की जांच जारी है। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज दिल्ली पुलिस आयुक्त और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर दिल्ली यातायात व्यवस्था की समीक्षा की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने इस दौरान यातायात पुलिसकर्मियों को जाम वाली मुख्य जगहों पर लक्षित कार्रवाई का निर्देश दिया। वहीं गलत दिशा में गाड़ी चलाने और बिना अनुमति पार्किंग जैसे उल्लंघनों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने पर भी बल दिया। उपराज्यपाल ने पुलिसकर्मियों से स्थानीय निवासियों के साथ जनसंपर्क बढ़ाने और क्षेत्र के हिसाब से समाधान विकसित करने के लिए नागरिक केंद्रित प्रोजेक्ट संगम का भी उल्लेख किया। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने आज आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स एशियन जूनियर चैंपियनशिप में वॉल्ट स्पर्धा में रजत पदक और टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने के लिए युवा जिम्नास्ट अक्षत बजाज को बधाई दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सूद ने कहा कि अक्षत बजाज की मेहनत, अनुशासन और समर्पण देशभर के युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। दिल्ली सरकार में मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने आज राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के अवसर पर आधुनिक भारतीय सांख्यिकी के जनक और पद्म विभूषण डॉक्टर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री सिरसा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर महालनोबिस की दूरदर्शी सोच ने आंकड़ों को प्रभावी नीति निर्माण और राष्ट्रीय विकास का सशक्त माध्यम बनाया। राजधानी में आज दिन भर तेज धूप रही और शाम के समय हल्के बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 31.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल बादल छाए रहने की संभावना है और शाम के समय हल्की वर्षा, आंधी तूफान और बिजली चमकने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने आज साक्ष्य आधारित नीति निर्माण और शासन

0: के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं से प्राप्त आंकड़ों के उपयोग के बढ़ते महत्व पर बल दिया। श्री मिश्रा ने नई दिल्ली में 20वें सांख्यिकी दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में यह बात कही। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू। सहकारिता मंत्रालय के स्थापना के 5 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज सहकारिता सप्ताह 2026 का शुभारम्भ किया गया। और दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अंतर्राज्यीय साइबर धोखाधड़ी और मादक पदार्थ तस्करी मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
2: आगे सैलरी? नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमको का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
3: आरबीआई कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। 8 बजने को है, प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। कृपया इस कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
6: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में। आज मैं हूं आपके साथ दीपिका जसवाल और आज मेरे साथ हैं
1: प्रतीक आनंद। नमस्कार श्रोताओं,
0: और आज खेल खिलाड़ी में क्या है खास, सबसे पहले वह जानेंगे। आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप में क्या रहा खास और कौन कौन सी टीमें पहुंची सेमीफाइनल में, वो आज हम जानेंगे। और क्रिकेट की ही बात को जारी रखते हुए भारत और आयरलैंड के बीच हुआ दूसरा टी20 मैच पर रिपोर्ट भी आज आप सुनेंगे, और साथ ही साथ एक्सपर्ट की राय भी जानेंगे इस हार को लेकर क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा बहुचर्चित लोकप्रिय फीफा वर्ल्ड कप की जानकारी कार्यक्रम के दौरान आपको दी जाएगी। 65वां इंटरस्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप के बारे में भी बताएंगे, कौन कौन से खिलाड़ी एशियन गेम्स में क्वालिफाई किया और कितने नेशनल रिकॉर्ड्स बने। इसके अलावा पेरिस डायमंड लीग की बात करेंगे, यूएस ओपन बैडमिंटन, विंबलडन और FIH प्रो लीग के बारे में भी आज कार्यक्रम में बात करेंगे। और शुरुआत करते हैं फीफा वर्ल्ड कप से।

आइए अब बात करते हैं फुटबॉल के महाकुंभ फीफा विश्व कप 2026 की, जहां कल देर रात नॉकआउट स्टेज की शुरुआत हुई। टूर्नामेंट के सबसे रोमांचक और करो या मरो वाले दौर की, जहां इतिहास रचने और बाहर होने के बीच सिर्फ 90 मिनट का फासला है। कल कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस स्टेडियम में खेले गए पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराकर अगले राउंड में यानी राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। मुकाबला शुरुआत से ही बेहद कड़ा और रक्षात्मक रहा। शुरू से ही दोनों टीमों ने मौके बनाए मगर गोल दागने में असमर्थ रही, जिसकी बदौलत हाफ टाइम पर स्कोरलाइन 0-0 रही। दोनों टीमें पहली बार विश्व कप के नॉकआउट चरण में खेल रही थी, जिसका दबाव साफ नजर आ रहा था। दक्षिण अफ्रीका की बफाना टीम ने पूरे मैच में रक्षात्मक खेल दिखाया और उनके गोलकीपर कप्तान रॉनवेन विलियम्स ने कुल 5 शानदार बचाव किए। दूसरे हाफ में भी टीमों ने जुझारू खेल दिखाते हुए अपनी अपनी रक्षा पंक्ति को सजग रखा और गोल बचाव में अहम भूमिका

0: भूमिका निभाई। जब ऐसा लग रहा था कि मैच एक्स्ट्रा टाइम में जाएगा, तभी खेल के अतिरिक्त समय में कनाडा के मिडफील्डर स्टीफन युस्ताकियो ने पेनल्टी बॉक्स के ठीक बाहर से एक शानदार हाफ वॉली गोल मारकर अपनी टीम को बढ़त दिलाई। उन्होंने अपनी तरफ आती बॉल को चेस्ट डाउन कर दाहिने पैर से एक दंदनाता शॉट सीधे बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में दे मारा।
1: This is dropping nicely. Ezequiel!
0: जिसने कनाडा को राउंड ऑफ 16 का टिकट दिला दिया। यह कनाडा के फुटबॉल विश्व कप इतिहास की पहली नॉकआउट जीत रही, साथ ही यह कनाडा का फुटबॉल विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। अब राउंड ऑफ 16 में उनका मुकाबला नीदरलैंड्स या मोरक्को से होगा। वहीं बात करें दक्षिण अफ्रीका की, तो भले ही वह हार गए, लेकिन ग्रुप स्टेज में दक्षिण कोरिया को हराकर राउंड ऑफ 32 में पहुंचना उनके विश्व कप इतिहास का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। आइए अब नजर डालते हैं आज के नॉकआउट मुकाबलों पर। पहला मैच ब्राजील बनाम जापान होगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे से टेक्सास के ह्यूस्टन स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां एक तरफ सांभा मैजिक होगा, वहीं दूसरी तरफ समुराई ब्लू। जापान ने अक्टूबर 2025 में एक दोस्ताना मैच में ब्राजील को 3-2 से शिकस्त दी थी। अब देखना यह होगा कि क्या जापान ब्राजील को चुनौती दे पाएगा। ब्राजील की टीम में निगाहें रहेंगी उनके स्टार खिलाड़ी विनीशियस जूनियर पर, जो अब तक 4 गोल दाग चुके हैं, साथ ही मथियस कुन्या पर, जिनके नाम भी 3 गोल हैं। वहीं बात करें जापान की, तो जापान की ओर से दाइची कमाडा और अयासे उएडा ने 2-2 गोल मारकर अपनी टीम को राउंड ऑफ 32 तक पहुंचाया है। अगर इस प्रतियोगिता की बात करें तो जापान का सबसे शानदार गोल कन्वर्जन रेट रहा है। बात करते हैं आज के दूसरे मुकाबले की, जो कि होगा जर्मनी बनाम पेरेगुए। यह मुकाबला मैसाचुसेट्स के बॉस्टन स्टेडियम में खेला जाएगा, जो भारतीय समय अनुसार रात 2 बजे से शुरू होगा। जर्मनी के स्टार खिलाड़ी जोशुआ किमिच की कप्तानी में जर्मनी अगले राउंड में प्रवेश करना चाहेगी। कोच जूलियन नगेल्समैन की शानदार युवा टीम आज पेरेगुए से लोहा मनवाएगी। जर्मनी में स्टार खिलाड़ी देखने को मिलेंगे जमाल मुसियाला, फ्लोरियन विट्स, काय हवर्त, लेरोय साने। वहीं पेरेगुए गुस्तावो गोमेज की अगुवाई में अगले चरण में खेलना चाहेगी, जहां उनके स्टार खिलाड़ी मिगेल अल्मेरॉन खेलते दिखेंगे। जर्मनी इस मैच में प्रबल दावेदार बनके उतरेगा, लेकिन उनकी चिंता का विषय यह है कि वह अपना आखिरी मैच दक्षिण अमरीकी टीम इक्वाडोर से 2-1 से हार गए थे। वहीं पेरेगुए की टीम बेहद रक्षात्मक खेल के लिए जानी जाती है, जिन्होंने 10 खिलाड़ी सहित खेलते हुए भी तुर्की को 1-0 से हराया था। यह मैच बेहद रोमांचक रहेगा। अब बात करते हैं आज के तीसरे मैच की, नीदरलैंड्स बनाम मोरक्को। यह मैच मेक्सिको के मोंटेरे स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार कल सुबह 6:30 बजे खेला जाएगा। यह मैच इस स्टेडियम का इस विश्व कप में आखिरी मैच होगा। हेड कोच रोनाल्ड कोमन और कप्तान वर्जिल वैन डाइक की अगुवाई में नीदरलैंड्स अगले चरण में प्रवेश करना चाहेगी। वहीं मोरक्को की टीम 2022 कतर विश्व कप में सेमीफाइनल तक का सफर तय करने के बाद अब दुनिया की सबसे खतरनाक टीमों में से एक गिनी जाती है। नीदरलैंड्स के स्टार खिलाड़ी ब्रायन ब्रॉबी अब तक 3 गोल मार चुके हैं, वहीं कॉडी गैपो अब तक 2 गोल दाग चुके हैं। वहीं बात करें मोरक्को के स्टार मिडफील्डर इस्माइल साइबरी पर सबकी निगाहें रहेंगी, जो अब तक 3 गोल कर चुके हैं।

और फीफा के बाद अब बात करते हैं बैडमिंटन की। भारत के बैडमिंटन स्टार किदांबी श्रीकांत का यूएस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में शानदार सफर रनर अप के साथ खत्म हुआ। मेंस सिंगल्स के फाइनल में उन्हें चीनी ताइपे के सूलियांग से 3 गेम के कड़े मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। 2021 वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले 33 साल के किदांबी ने पहला गेम हारने के बाद वापसी करते हुए मैच को निर्णायक मोड़ तक पहुंचाया, लेकिन अपने से 9 साल छोटे और दुनिया के 46वें नंबर के खिलाड़ी से

0: call?
1: I feel like I played okay. Could have played a little better maybe in the opening set. Otherwise, I feel I've played okay. You know, the second half of third set, it was just hitting really well all of a sudden. Yeah. But probably I should have maybe played a little better in the opening set. I just feel like whatever I've been doing is working. I just have to keep working hard. Probably I feel like I'm there. It's just about being able to... he's been playing really well. You know, last few months he's been playing really well. So just it's another day where he kind of played exceptionally well and during the points that really matter.
2: एक घंटे से ज्यादा चले इस मुकाबले में श्रीकांत को आखिरकार 15-21, 21-16, 9-21 से हार मिली। मुकाबले के शुरुआत में श्रीकांत अच्छी लय में नजर आए, लेकिन शुरुआती रैलियों में हुई एक गलती उन पर भारी पड़ गई और नेट के पास शॉट खेलते समय उनका रैकेट नेट के दूसरी तरफ चला गया, जिसके बाद सू ली यांग ने लगातार अंक जुटाकर 7-2 की बढ़त बना ली। हालांकि श्रीकांत ने शानदार वापसी करते हुए अगले 11 में से 8 अंक अपने नाम किए और स्कोर 10-10 के बराबर कर दिया। मिड गेम ब्रेक तक उन्होंने 11-10 की मामूली बढ़त भी बना ली थी, लेकिन ब्रेक के बाद सू ने खेल की रफ्तार बढ़ा दी और श्रीकांत से लगातार गलतियां करवाते हुए 17-12 की बढ़त हासिल कर ली। आखिरकार पहला गेम 21-15 से सू ली यांग के नाम रहा। वहीं दूसरे गेम में दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। 4-4 की बराबरी के बाद श्रीकांत ने लगातार 3 अंक जीतकर 7-4 की बढ़त बनाई। सू ने स्कोर 8-8 कर दिया, लेकिन श्रीकांत ने बेहतरीन नेट प्ले की बदौलत ब्रेक तक 11-8 की बढ़त कायम रखी। इसके बाद सू ने कुछ शानदार स्मैश लगाए, लेकिन श्रीकांत ने धैर्य बनाए रखा और स्कोर 18-13 तक पहुंचा दिया। विरोधी खिलाड़ी की कुछ गलतियों के बाद उन्हें 7 गेम पॉइंट मिले। सू ने 3 गेम पॉइंट जरूर बचाए, लेकिन श्रीकांत ने दमदार डाउन द लाइन स्मैश लगाकर दूसरा गेम 21-16 से जीत लिया और मुकाबला निर्णायक गेम तक पहुंचा दिया। वहीं तीसरे गेम से सू ली यांग ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया और लगातार सटीक स्मैश लगाते हुए 4-1 की बढ़त बना ली और श्रीकांत ने बीच बीच में अच्छे शॉट खेले, लेकिन लगातार हो रही गलतियों का नुकसान उन्हें उठाना पड़ा और मिड गेम ब्रेक तक सू ने 11-7 से बढ़त बना ली थी। इसके बाद उन्होंने बढ़त को 15-7 और फिर 18-8 तक पहुंचा दिया और श्रीकांत के कई शॉट कट से कोर्ट से बाहर चले गए, जिससे सू को 12 चैंपियनशिप पॉइंट मिल गए और श्रीकांत एक पॉइंट बचाने में सफल रहे। लेकिन अगली रैली में सू ने अंक हासिल कर मैच और खिताब दोनों अपने नाम कर लिया और यह सू ली यांग के करियर का पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब रहा, जबकि श्रीकांत के लिए यह सीजन का पहला फाइनल था।
0: नमस्कार श्रोताओं, आप आइए बात करते हैं ICC महिला T20 विश्व कप 2026 की, जहां कल देर शाम एक ऐसा ऐतिहासिक मुकाबला खेला गया जिसने क्रिकेट जगत में सनसनी मचा दी। कहानी कल लॉर्ड्स के एक ऐतिहासिक मैदान पर खेले गए भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के महामुकाबले की, जिसने ना सिर्फ करोड़ों भारतीयों का दिल तोड़ा बल्कि इस टूर्नामेंट की दिशा ही बदल दी। यह मुकाबला भारत के लिए करो या मरो का था, जहां ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। लॉर्ड्स की पिच पर भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का साहसिक फैसला लिया। भारत ने निर्धारित 20 ओवरों में 4 विकेट खोकर 170 रनों का मजबूत और चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया, लेकिन सामने 6 बार की विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया थी। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए 19 ओवरों में ही 4 विकेट खोकर 172 रन बना दिए और 6 विकेट से इस रोमांचक मैच को जीत लिया। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने महिला T20 विश्व कप इतिहास का सबसे सफल रन चेस दर्ज कर एक नया कीर्तिमान रच दिया। भारतीय पारी की शुरुआत शानदार रही। सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधना 38 रन और शेफाली वर्मा 34 रन ने पहले विकेट के लिए 66 रनों की आक्रामक साझेदारी की। इसके बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने मैदान पर आते ही तबाही मचा दी। उन्होंने विपक्षी कप्तान सोफी मॉलिनॉक्स के आखिरी ओवर में लगातार 3 छक्के जड़ते हुए महज 25 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जो महिला T20 विश्व कप में किसी भी भारतीय द्वारा लगाया गया सबसे तेज अर्धशतक है। हरमनप्रीत ने 207.41 के स्ट्राइक रेट से 27 गेंदों पर नाबाद 56 रन बनाए, जिसमें 6 शानदार चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। जमीमा रॉड्रिगेस ने भी 34 रनों का बखूबी योगदान दिया।

लेकिन दुर्भाग्य से 19वें ओवर में रिटायर आउट होकर पवेलियन लौट गई। 171 रन का पीछा करते ऑस्ट्रेलियाई टीम को भारत की तेज गेंदबाजी रेणुका सिंह ठाकुर ने मैच की पहली गेंद पर ओपनर जॉर्जिया वॉल को LBW का पहला झटका दिया। इसके बाद भारतीय स्पिनर श्री चरणी और दीप्ति शर्मा की किफ़ायती गेंदबाजी के आगे ऑस्ट्रेलियाई टीम 9.1 ओवर में 68 रन देकर 3 विकेट खोकर संघर्ष कर रही थी, लेकिन इसके बाद मैदान पर शुरू हुई एलिस पेरी और एशले गार्डनर का मास्टर क्लास। दोनों के बीच 100 रनों की अविश्वसनीय साझेदारी हुई जिसने मैच का पासा पूरी तरह पलट दिया। एलिस पेरी ने 38 गेंदों में 56 रन बनाए और उन्होंने प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जबकि एशले गार्डनर ने 29 गेंदों में 3 छक्कों की मदद से नाबाद 53 रनों की तूफानी पारी खेली। 19वें ओवर में जॉर्जिया वैरम ने विनिंग बाउंड्री लगाकर ऑस्ट्रेलिया को अजय रहते हुए सेमीफाइनल में पहुंचा दिया।

की मदद से नाबाद 53 रनों की तूफानी पारी खेली। 19वें ओवर में जॉर्जिया वैरम ने विनिंग बाउंड्री लगाकर ऑस्ट्रेलिया को अजय रहते हुए सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। अब बात करते हैं होने वाले सेमीफाइनल्स की। पहला सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया बनाम वेस्टइंडीज खेला जाएगा, जो कि 30 जून को भारतीय समय अनुसार 7 बजे से खेला जाएगा। 6 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया इस टूर्नामेंट में अब तक अजय रही है। उनकी बल्लेबाजी गहराई और पैरी गार्डनर की फॉर्म उनकी सबसे बड़ी ताकत है। दूसरी ओर वेस्टइंडीज की तरफ काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा है। वह अपने आखिरी ग्रुप मैचों में इंग्लैंड और आयरलैंड से हार गए थे, लेकिन बेहतर नेट रन रेट के कारण श्रीलंका को पछाड़कर सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। वेस्टइंडीज़ 10 साल पुराने अपने 2016 के खिताब के सूखे को ख़त्म करना चाहेंगे, लेकिन हेली मैथ्यूज़ की कप्तानी वाली इस टीम के लिए अजय कंगारुओं को रोकना एक हिमालयी चुनौती होगी। बात करें दूसरे सेमीफाइनल की, तो इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका, जो कि 2 जुलाई को खेला जाएगा भारतीय समय अनुसार 11 बजे से। मेज़बान इंग्लैंड की टीम इतिहास के एक अद्भुत आंकड़े के साथ मैदान

0: फॉर्म में है, जहां डैनी वाइट हॉर्स न्यूजीलैंड के खिलाफ नाबाद 89 रन की पारी खेलने के बाद और सोफी एकल्सटन जैसी खिलाड़ी कमाल कर रही हैं। वहीं पिछले दो संस्करण की उपविजेता रही दक्षिण अफ्रीका की टीम अपने पहले विश्व कप की तलाश में है। हालांकि ग्रुप स्टेज में बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटीज टीम थोड़ी संघर्ष करती दिखी थी, लेकिन मरीजान कैप की शानदार ऑलराउंड फॉर्म और भारत के खिलाफ मिली बड़ी जीत के उनके हौसले सातवें आसमान पर पहुंचा दिए हैं। यह मुकाबला पूरी तरह से इंग्लैंड के घरेलू बादशाह बनाम दक्षिण अफ्रीका की खिताबी भूख के बीच होगा।
1: और क्रिकेट से

हो रही है और इसके आईसीसी और आईओसी ने लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक्स के लिए क्रिकेट की आधिकारिक क्वालिफिकेशन प्रक्रिया की पुष्टि भी कर दी है। इसके तहत पहली बार आईसीसी ओलंपिक क्वालिफायर का आयोजन 2027 में होगा और पुरुष और महिला दोनों वर्गों में 6-6 टीमें हिस्सा लेंगी। अफ्रीका

0: खिताब से नवाजा गया। श्रोताओं, इस मुकाबले ने क्रिकेट जगत में कई नई रिकॉर्ड्स स्थापित किए। क्रिकेट इतिहास में पहली बार है जब आयरलैंड ने भारत को किसी भी फॉर्मेट की सीरीज में वाइट वॉश किया है।
1: जी हाँ, भारत सीरीज हार गई है 2-0 से। और जाना हमने कि एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं इस
2: टीम कॉम्बिनेशन पर भी सवाल उठ रहे हैं, बॉलर्स पर भी सवाल उठ रहे हैं, सर क्या कहेंगे आप?
3: देखिए, जब टीम हारती है तो सवाल तो उठेंगे ही, और जब टीम हारती है तो हर एक चीज गलती नजर आती है। और अगर यही जीत लास्ट बॉल पे, जैसे अगर हर्षित राणा का वो छक्का लग जाता तो फिर वो जीत में सब कवर हो जाता है। तो ये चीजें देखिए स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में चलती रहेंगी। और मैं समझता हूँ कि देखिए कॉम्बिनेशन क्या कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक कॉम्बिनेशन खेल रहा है। मेरे एज ए क्रिकेटर मैं तो नहीं समझता कि कोई गलत कॉम्बिनेशन है। देखिए, एक आयरलैंड की जो टीम है, अभी नई टीम है, तो उसके अगेंस्ट हर कोच, हर टीम एक चाहती है कि मैं नए प्लेयरों को मौका दूं, उनको उस मौके को वो बनाए। तो यही स्ट्रेटजी इंडिया की टीम की भी रही है।
2: वर्ल्ड कप जीतने के एकदम बाद कैप्टन का बदल जाना और वैभव सूर्यवंशी का इन दोनों मैचेस में ना खिलाना, उसको कैसे देखते हैं आप?
3: देखिए, वैभव सूर्यवंशी के पास बहुत टाइम है और यंग लड़का है, नो डाउट कि उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी है। तो देखिए, हम अगर उसको बहुत जल्दी इंटरनेशनल क्रिकेट में डालेंगे तो कहीं ना कहीं उसके खिलाफ भी जा सकती है ये बात, और उस बच्चे में प्रेशर भी आ सकता है। तो मैं समझता हूँ कि टाइमली अगर वो फीड अप टीम में फीड हो जाएगा तो कोई इसमें बुराई नहीं है। अब शायद देखिए इंग्लैंड के अगेंस्ट उनको चांस मिलेगा ही मिलेगा, वैभव सूर्यवंशी को। जी देखिए, इस टाइम तो वो स्टार बना हुआ है, और मुझे याद है जब हमारा खेलने का टाइम था तो सचिन तेंदुलकर आया था उस टाइम 16 साल में, अब ये बच्चा तो 14 साल में ही आ गया। तो कहीं ना कहीं जो किस्मत है, जो डेस्टिनी है, वो इसके साथ है, और जो इसने प्रदर्शन आईपीएल में करा है वो काबिले तारीफ था। और ऐसा नहीं कि खाली आईपीएल में, इसने इंडिया ए के लिए भी करा, अभी श्रीलंका में भी करा, इंडिया अंडर 19 में भी इसने 100 रन बनाए। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं देखिए वो प्लेयर बड़ी फॉर्म में है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये जानना चाहूंगा या कहना चाहूंगा आपको कि जब इंटरनेशनल क्रिकेट आती है ना, उसका एक प्रेशर अलग होता है। जब कंट्री टू कंट्री मैच होते हैं उसका प्रेशर एक अलग होता है। तो उसके लिए देखना पड़ेगा कि क्या कितना खरे उतरते हैं वैभव।
2: बिल्कुल।
1: तो ये थे हमारे एक्सपर्ट कमेंटेटर बंटू सिंह जी, और इनका कहना है कि जब इंटरनेशनल क्रिकेट होता है तो उसका असर जो है और उसका प्रेशर जो है वो खिलाड़ियों पर अलग होता है। तो प्रतीक, और क्या है खास इंटरनेशनल क्रिकेट से जुड़ी खबर?
0: जी हाँ, मैं श्रोताओं आपको बता दूं कि बेन स्टोक्स ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट के बाद इंटरनेशनल क्रिकेटर को अलविदा कह देंगे, जो कि बेन स्टोक्स के फैन के लिए एक बहुत ही दुखद खबर है।
1: और अब बात कर लेते हैं एथलेटिक्स की। भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में 24 से 29 जून तक आयोजित 65वीं राष्ट्रीय अंतर राज्य सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप भारतीय एथलेटिक्स के लिए ऐतिहासिक साबित हुई, और इस प्रतियोगिता में कई राष्ट्रीय रिकॉर्ड टूटे और कई खिलाड़ियों ने एशियाई खेल 2026 के लिए क्वालिफिकेशन मानक भी हासिल किए। सबसे पहले बात कर लेते हैं किन किन खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए। एनसी सोजन, इन्होंने महिला लंबी कूद में ये उपलब्धि हासिल की, और इनका रिकॉर्ड, नया रिकॉर्ड जो बना है वो 6.88 मीटर का बना है। पुराना रिकॉर्ड था 6.83 मीटर का, और इन्होंने ये अंजू बॉबी जॉर्ज का रिकॉर्ड को तोड़ा है जो साल 2004 में बना था। और अगला जो नेशनल रिकॉर्ड है

0: happy with my time and with my performance today. I think I was a little bit late at the 600 meters passage, so I was a little bit late on the green light. So at this moment, I just tried to catch up the light, but it was hard because we cannot have a delay in such a race. So I think for the next time, I can stay more with the light.
1: और इनके अलावा चीन की यान जी जो 18 वर्षीय भाला फेंक खिलाड़ी हैं उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए महिलाओं की जेवलिन स्पर्धा में खिताब अपने नाम किया, गोल्ड मेडल जीता और 67.44 मीटर का इन्होंने थ्रो फेंका और अपने पहले प्रयास में इतने मीटर का थ्रो किया और इस जीत से इन्होंने 2026 डायमंड लीग फाइनल्स में अपनी जगह पक्की कर ली है। और अब विंबलडन के लिए चलते हैं प्रतीक के पास।
2: जी हाँ, आप चर्चा करते हैं टेनिस जगत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित टेनिस टूर प्रतियोगिता की। 1877 में ऑल इंडिया लोन टेनिस के नाम क्लब से शुरू हुई यह प्रतियोगिता ग्रैंड स्लैम इतिहास की पहली और सबसे पारंपरिक प्रतियोगिता है जिसकी शुरुआत

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संस्कृत सौरभम। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। इस वक्त रात के 8:40 हुए हैं। आइए सुनते हैं ये देशभक्ति गीत सुप्रिया जोशी और रवि त्रिपाठी की आवाज़ों में।

0: आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत सुप्रिया जोशी और रवि त्रिपाठी की आवाजों में। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र बिहार, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरलम के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
2: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्य शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ग्रीस के विकास मंत्री ताकिस थियोडोरिकाकोस से आज ग्रीस में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, औद्योगिक सहयोग और सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से भारत ग्रीस आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस अतिरिक्त निवेश का उपयोग NIIF के अवसंरचना केंद्रित दूसरे कोष की स्थापना के लिए किया जाएगा। अवसंरचना कोष द्वितीय के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। इससे परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल और शहरी अवसंरचना तथा ई मोबिलिटी जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी

0: और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती से लागू किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में डीआरडीओ को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन डीएफपी 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि डीएफपी 2026 अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकियों के तेजी से उत्पादन रक्षा बलों में उनके समावेश को सुगम बनाएगा। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशक से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इस बीच जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा।
1: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चूरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकताओं की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि समृद्ध और विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब गांव समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित हों। नई दिल्ली में आयोजित 2 दिन के राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि गांव केवल लाभार्थी ही नहीं बल्कि विकास के प्रेरक शक्ति भी हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। श्री नड्डा ने कहा कि इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: Applications launch is going to play a very important role.
3: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 सालों में कई नई पहलें शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है और उन्हें देश में सस्ता और सुलभ बनाया है। इसमें 62 करोड़ लोग शामिल हैं और अब भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है।
2: लार्जेस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर।
0: श्री नड्डा ने कहा कि देश भर में लगभग 1,85,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं। आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में उन्होंने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर नागरिकों के लिए प्राथमिक संपर्क केंद्र है जो पहले, दूसरे तथा तीसरे स्तर के स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक मजबूत सेतु का काम करते हैं। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के गुना जिले के अपने 4 दिन के दौरे के दौरान लगभग 350 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पर्यावरण, सिंचाई, रेलवे, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास से संबंधित हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के

है। आज अगरतला के राजकीय अतिथि गृह में समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ सबके विकास के दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध है। दिल्ली मंत्रिमंडल ने आज दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी। इसे 1 जुलाई से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि

0: होकर 94.54 रुपए पर बंद हुआ।
1: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए स्थान पक्का कर लिया है। आईसीसी ने पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज ब्राजील का सामना जापान से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं देर रात 2 बजे जर्मनी और पराग्वे आमने सामने होंगे। अमेरिका के फुलटन में किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के उपविजेता रहे। पुरुष सिंगल्स फाइनल में श्रीकांत को चीनी ताइपे के सू लियांग से हार का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में कल तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी तेज बारिश हो सकती है।

0: शक्ति के वजीर सीआर पाटिल ने कहा कि इस मुआहदे के तहत मानसून के मौसम में राजस्थान के हिस्से का पानी हथनी कुंड बैराज से वेस्टर्न यमुना कनाल के निजाम के रास्ते बिछाई गई जेरे जमीन पाइपलाइन के जरिए फराहम किया जाएगा।
1: इस परियोजना के अंतर्गत हथनी कुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चूरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकताओं की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
0: दिल्ली काबीना ने आज दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। अगले महीने की पहली तारीख से शुरू होने वाले 4 साल मरहलेवार रोल आउट के लिए मुकर्रर कसीर जैती फ्रेमवर्क 31 मार्च 2030 तक कौमी दारुल हुकूमत को मुकम्मल तौर पर कार्बन के सिफर इखराज की तरफ मुंतकिल करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए के बड़े मालियाती अखराजात का अहद करता है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में स्ट्रेटेजिक तहकीक और तरक्याती प्रोजेक्टों की कारकर्दगी, जवाबदेही और बरवक्त अमलावरी के लिए DRDO DFP 2026 को मालियाती इख्तियारात का एक वफ़ जारी किया। इस मौके पर जनाब सिंह ने कहा कि DFP 2026 दिफाई अफवाज में तहकीक और तरक्की के एक निज़ाम से निकलने वाले निज़ाम और उभरती हुई टेक्नोलॉजी की तेज तर पैदावार और शमूलियत में सहूलत फराहम करेगा। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने आज कहा कि हुकूमत ने बुनियादी, सानवी और तीसरे दर्जे के तिब्बी सहूलती मराकज में तौसी करके मुल्क के सेहत निज़ाम को नुमाया तौर पर मजबूत किया है। नई दिल्ली में सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी कौंसिल की 16वीं कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब नड्डा ने कहा कि शहरियों और सेहत निज़ाम के दरमियान राबते के पहले मरकज के तौर पर मुल्क भर में 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर कायम किए जा चुके हैं। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल बरतानिया का अपना दौरा मुकम्मल करने के बाद यूनान के एथेंस में एक आला सतही भारतीय कारोबारी वफ्द की क्यादत कर रहे हैं। जनाब गोयल ने आज यूनान के तरक्यात के वजीर टाकिस थियोडोरी काकोस से मुलाकात की। जनाब गोयल ने कहा कि उन्होंने वसी तर तजारत, सरमायाकारी, सनती तावुन और लचकदार सप्लाई चेन्स के जरिए भारत यूनान इकतसादी शराकतदारी को मजबूत करने पर तबादले ख्याल किया। अमरीका और ईरान ने एक दूसरे पर फौजी हमले को आर्जी तौर पर रोकने और आबनाए हुरमुस से तिजारती बहरी जहाजों की आमदोरफ्त दोबारा शुरू करने पर इत्तेफाक किया है। इस दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि दोनों ममालिक के दरमियान मुजाकिरात का एक नया दौर कल कतर की राजधानी दोहा में होगा। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बताया कि ईरान ने मीटिंग की दरख्वास्त की थी और ये मीटिंग दोहा में होगी, ताहम उन्होंने मुजाकिरात के एजेंडे या दोनों ममालिक की नुमाइंदगी की सतह के बारे में मजीद तफसीलात फराहम नहीं की। ऑपरेशन एमिस्टेड के तहत जलजले के मुतासिर वेनेजुएला में तैनात भारतीय फौज का फील्ड अस्पताल मुकम्मल तौर पर फाल हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त तिब्बी खिदमात फराहम कर रहा है। वेनेजुएला में भारतीय सिफारत खाने ने कहा कि तजुर्बेकार डॉक्टरों पर मुश्तमिल भारतीय तिब्बी टीम ने कराकस में इंटरनेशनल ला रिंकोनाडा रेस्ट्रेक पर एक कैंप कायम किया है। उसने कहा कि मेडिकल कैंप अब मुकम्मल तौर पर काम कर रहा है और खिदमात 24 घंटे खुली रहती हैं। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने मुल्क के शिमाल मशरिकी इलाकों, जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल, बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला और माहे में कल शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। IMD के मुताबिक अगले 2 रोज के दौरान उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी शदीद बारिश होने का इम्कान है। भारतीय खवातीन क्रिकेट टीम 2028 में लॉस एंजलिस में होने वाले ओलंपिक खेलों में क्वालिफाई करने वाली पहली टीमों में शामिल हो गई है। ताहम मर्दों की टीम को बराह रास्त क्वालिफाई करने के लिए रवा साल के अख्ताम तक ICC की मर्दों की T20 की रैंकिंग

فأس

وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ.

Vaya.

دش ایام لے کر سبا کے نو, مجھے ہر منزل

हरम से जाम एहराम लेकर, हरम से जाम एहराम लेकर सबा कहना, जो साकी से मिली वाइस को दे दी, जो साकी से

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे, विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल विधानसभा में घोषणा की कि 2 जुलाई को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। श्री अधिकारी ने बताया कि यह समिति शादी, तलाक और गोद लेने जैसे कुल 9 विषयों पर अध्ययन कर 4 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। हालांकि श्री अधिकारी ने स्पष्ट कर दिया कि अनुसूचित जनजाति, कुर्मी और प्राचीन मूल समुदायों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज से 2 दिन पूर्वोत्तर का दौरा करेंगे। श्री चौहान असम के गुवाहाटी में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में असम और आसपास के इलाकों में बाढ़ से फसलों और गांवों में हुए नुकसान की समीक्षा करेंगे। इसके बाद श्री चौहान कल अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों समेत कई आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा हॉर्मूज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कतर में वार्ता के नए दौर की घोषणा की है। फीफा विश्व कप में ब्राजील राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में ब्राजील ने जापान को 1-2 गोल से हरा दिया। राउंड ऑफ 32 के एक अन्य मैच में अमेरिका के बोस्टन स्टेडियम में जर्मनी का सामना पैराग्वे से होगा। भारतीय समय अनुसार ये मैच देर रात 2 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एयर लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है और स्टूडियो की घड़ी में रात के 1:10 हुए हैं। श्रोताओं, ये वक्त है कार्यक्रम गीत सुनहरे गोल्डन एरा। जी हाँ, ये वो कार्यक्रम है जिसमें हम आपके लिए लाते हैं वो खूबसूरत सदाबहार गीत जो कभी पुराने होते ही नहीं। और आज अपने गीतों का पिटारा लेकर मैं हूँ आपके साथ, आपकी अपनी सरिता। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम का आगाज करते हैं फिल्म सरस्वती चंद्र के इस गीत के साथ। आवाजें लता मंगेशकर की हैं और साथ ही साथ मुकेश कुमार की। गीतकार इंदिवर हैं और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

गीत सुनहरे कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म प्यार का मौसम से। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। संगीत दिया है आरडी बर्मन ने।

लीजिए सुनते हैं अगला गीत मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म से। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर की, गीतकार हैं मजरूर सुल्तानपुरी और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने।

आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म किस्मत से। आवाजें हैं लता मंगेशकर की और गीतकार हैं नूर देवासी। संगीत दिया है ओपी नैयर ने।

आइए सुनते हैं अगला गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। फिल्म का नाम है हसीना मान जाएगी। गीतकार हैं प्रकाश मेहरा और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: में सनम हम गम तेरे और दिल पर सोनिए।
1: खूबसूरत गीतों की लड़ी में लीजिए सुनिए अगला गीत। फिल्म का नाम है दो कलिया, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की हैं। गीतकार हैं साहिल लुधियानवी और संगीत यह है रवि ने।

0: लीजिए सुनते हैं अगला गीत। फिल्म का नाम है तुमसे अच्छा कौन है, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी की, गीतकार हैं हसरत जयपुरी और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।
1: कभी हमने नहीं

आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी, जो आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी। कभी हमने नहीं

तुमसे अच्छा। आइए सुनते हैं अगला गीत। फिल्म का नाम है प्रिंस, आवाज है लता मंगेशकर की, संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। फिल्म का नाम है आदमी और इंसान। आवाजें हैं आशा भोसले और महेंद्र कपूर की। संगीत दिया है रवि ने।

0: ये सुनहरे कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अपनी दोस्त सरिता को दीजिए जाने की इजाजत, नमस्कार। लेकिन जुड़े रहिए एआई लाइव न्यूज 24x7 चैनल के साथ, क्योंकि अब से थोड़ी देर में ठीक 2 बजे पहले हिंदी में और उसके उपरांत अंग्रेजी में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्य के लिए दिए जाते हैं।
2: राष्ट्रपति ने

0: में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्य शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान कानून के पालन के लिए राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की कि 2 जुलाई को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस बिल का मसौदा पेश किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। श्री अधिकारी ने कहा कि ये समिति 4 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर राज्य सरकार संहिता तैयार करेगी। हालांकि श्री अधिकारी ने स्पष्ट कर दिया कि अनुसूचित जनजाति, कुर्मी और प्राचीन मूल समुदायों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि कानून का शासन ना तो कोई कल्याणकारी योजना है और ना ही कोई आर्थिक नीति है, बल्कि ये सत्ता के इस्तेमाल को अनुशासित करता है ताकि कोई भी व्यक्ति मनमानी करने वाली सरकार का शिकार ना बने। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस सम्मेलन में अपने मुख्य संबोधन में ये बात कही। मुंबई सीमा शुल्क अधिकारियों ने छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अबू धाबी से आए 25 साल के एक यात्री को 2,38,00,000 रुपए मूल्य के लगभग 7 किलो गांजे की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले आरोपी मोइन खान को एयर खुफिया इकाई ने खास जानकारी के आधार पर पकड़ा। नशीली दवा और मादक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों समेत कई आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा हॉर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कतर में वार्ता के नए दौर की घोषणा की है। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के दावे को खारिज कर दिया है। उप विदेश मंत्री काजिम गरीब आबादी ने कहा कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 2400 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। फीफा विश्व कप में ब्राजील राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में ब्राजील ने जापान को 1-2 गोल से हरा दिया। राउंड ऑफ 32 के एक अन्य मैच में अमेरिका के बोस्टन स्टेडियम में जर्मनी और पराग्वे के बीच मुकाबला जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. President Draupadi Murmu conferred gallantry awards to the personnel of the Defence Forces and the Indian Coast Guard during the Phase 2 of Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan last evening. The President conferred 7 Sarvottam Yudh Seva Medals, 30 Param Vishisht Seva Medals, 12 Uttam Yudh Seva Medals and 56 Ati Vishisht Seva Medals at the ceremony.

0: जी खड़े खड़े क्या देख रहे हैं?
1: कमाल है, उस चांद को घंटों देखता रहा, उसने एक बार भी नहीं टोका।
0: तो चांद को ही देखे ना।
1: मगर वो सांस नहीं लेता।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बहार, नॉनस्टॉप फिल्म संगीत कार्यक्रम। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अपनी दोस्त सरिता को दीजिए जाने की इजाजत। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का एयर लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में रात के 3 बजने को हैं। अब से थोड़ी देर में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
2: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की कि 2 जुलाई को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस बिल का मसौदा पेश किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। श्री अधिकारी ने कहा कि ये समिति 4 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। हालांकि श्री अधिकारी ने स्पष्ट किया कि अनुसूचित जनजाति, कुर्मी और प्राचीन मूल समुदायों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम के केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज से 2 दिन के पूर्वोत्तर दौरे पर रहेंगे। श्री चौहान असम के गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में असम और आसपास के इलाकों में बाढ़ से फसलों और गांवों में हुए नुकसान की समीक्षा की जाएगी। इसके बाद श्री चौहान कल अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। मुंबई सीमा शुल्क अधिकारियों ने छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अबू धाबी से आए 25 साल के एक यात्री को 2,38,00,000 रुपए मूल्य के लगभग 7 किलो गांजे की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले आरोपी मोइन खान को एयर खुफिया इकाई ने खास जानकारी के आधार पर पकड़ा। नशीली दवा और मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों समेत कई आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा हॉर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का पारगमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कतर में वार्ता के एक नए दौर की घोषणा की है। फीफा विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में अमेरिका के बोस्टन स्टेडियम में जर्मनी और पैराग्वे के बीच मुकाबला जारी है। हाफ टाइम तक मुकाबले में पैराग्वे 1-0 से आगे है, वहीं ब्राजील राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Akhila. President Draupadi Murmu conferred gallantry awards to the personnel of the Defence Forces and the Indian Coast Guard during the phase second of Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan last evening. The President conferred 7 Sarvottam Yudh Seva Medals, 30 Param Vishisht Seva Medals, 12 Uttam Yudh Seva Medals and 56 Ati Vishisht Seva Medals at the ceremony. The medals were awarded to the personnel for distinguished service of an exceptional order. Vice President C.P. Radhakrishnan, Defence Minister Rajnath Singh, along with other union ministers and senior officials of armed forces were also present on the occasion. Prime Minister Narendra Modi has said that his visit to Seychelles has yielded significant results that will enhance the friendship between both the nations. The Prime Minister returned home after concluding his 3-day successful visit to the island nation. In a social media post, he said, over the last 50 years, the relationship between the two nations has been characterized by profound trust and mutual advancement, whereas the forthcoming 50 years will be shaped by innovation, sustainability and collective prosperity. The West Bengal Public Safety and Control of Antisocial Activities Bill 2026 and the West Bengal Maintenance of Public Order Amendment Bill 2026 have been passed in the State Legislative Assembly. Under the provisions of the Public Safety Bill, a person can be detained for a maximum of 12 months under preventive arrest norm for antisocial activities which may cause disturbance to public safety and disturb public peace and order. The Maintenance of Public Order Amendment Bill, the original Act of 1972, has been amended with the objective to impose payment of compensation on individuals committing arson, vandalism and damage to public and private properties. The governments of Haryana and Rajasthan signed an agreement for the construction and implementation of the Yamuna Water Project in the presence of Home Minister Amit Shah in New Delhi yesterday. Speaking on the occasion, the Home Minister said the agreement has resolved the nearly 3-decade-old water-related problem faced by the people of Haryana and Rajasthan. Under the agreement, approximately 580 million cubic meters of water will be supplied from the Yamuna Canal to the Rajasthan through these underground pipelines from the next month to October. The Ministry of Women and Child Development convened the third preparatory meeting on the BRICS Women Track under India's BRICS chairship virtually in New Delhi yesterday. The meeting focused on advancing discussions on the priority areas and key outcomes, including the digital repository of best practices and the BRICS Women's Safe Capacity Building Guidelines. During the event, BRICS member countries shared their valuable inputs and reaffirmed their commitment to collaborative and consensus-based outcomes. President Draupadi Murmu will embark on a 2-day visit to Andhra Pradesh from today. The President will attend the first convocation ceremony of the Central Tribal University of Andhra Pradesh at Viryanagaram today. Later, the President will attend the first convocation ceremony of the Central University of Andhra Pradesh at Ananthapuram on Wednesday. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan will be on a 2-day visit to the Northeast from today. Mr. Chauhan will hold a high-level review meeting in Guwahati in Assam. The meeting will review the impact of the floods on crops, villages and critical infrastructure in Assam and adjoining areas, assess the progress of ongoing relief operations and discuss the requirements of further assistance and intervention. The United States and Iran have agreed to pause their exchange of military strikes and allow commercial shipping to resume through the Strait of Hormuz, as President Donald Trump announced a fresh round of talks between the two sides in Qatar today. Trump posted on social media that Iran had requested a meeting and that it would take place in Doha, without providing further details on the agenda or level of representation. The Indian women's cricket team has become one of the first sides to qualify for the Los Angeles 2028 Olympic Games. The International Cricket Council confirmed that India, alongside Australia, Great Britain and South Africa, have booked their places in the Women's T20 competition at Los Angeles 2028 Olympics. IMD has issued an orange alert for very heavy rainfall over parts of northeast India, sub-Himalayan West Bengal, Bihar, Konkan, Goa, Maharashtra, Karnataka, Kerala and Mahe today. And that is the end of this news bulletin.
0: जी आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात्रि के 3:10 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम गजल। इसके अंतर्गत सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं गजल एक दीवाने को। ये प्रस्तुत कर रहे हैं जगजीत सिंह।

जगजीत सिंह की आवाज़ में गाई इस गज़ल के बाद लीजिए एक बार फिर से सुनिए जगजीत सिंह को इस गज़ल में देर लगी आने।

शफक कहते हैं किरणों को रेस और धनुक रेनबो महताब चंद्रमा घटाएं तो आपको मालूम है शफक धनुक महताब घटाएं तारे नगमे बिजली फूल।

खूबसूरत सी गज़ल के बाद लीजिए अब आपके लिए पेश है शशि लता विक्र की आवाज़ में ये गज़ल, जिंदगी किस मकाम से गुजरी।

गजलों के बाद लीजिए, अब सुनिए कर्नाटक संगीत का ये कार्यक्रम।

नारायण तीर्थ की एक रचना सुनिए। कलाकार हैं नेदुनुरी कृष्णमूर्ति, एम जलजाक्षी, एम वी रमणम मूर्ति, पी सूर्या राव, एम एल नरसिम्हम, एस वसुंधरा देवी और एम जोगुलाम्बा।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्चना। आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात्रि के 4:20 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कर्नाटक संगीत पर आधारित कार्यक्रम नाद ब्रह्मा। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे गायन। कलाकार हैं TV मणिकंदन। आपने प्रस्तुत किया है रागम पूर्वी कल्याणी जो आदि ताल में निबद्ध है। संगीत दिया है रामानंद श्रीनिवास अयंकर ने और मृदंगम पर साथ दिया है N पद्मनाभन और वलन पर G राघवेंद्र ने। तो लीजिए सुनिए TV मणिकंदन का गाया रागम पूर्वी कल्याणी।

कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म में अभी आप सुन रहे थे टीवी मणिकंदन का गाया रागम पूर्वी कल्याणी, जो आदिताल में निबद्ध था। संगीत दिया था रामानंद श्रीनिवास अयंकर ने और मृदंगम प्रसाद दिया था एन पद्मनाभन ने और वालन प्रसाद दिया था जी राघवेंद्र ने।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज मंगलवार है, शक्सम 1948 के आषाढ़ मास की 9वीं तिथि, तदनुसार 30 जून 2026 सुबह के 4:53 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। लीजिए अब सुनिए आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी। अब से कुछ ही देर में यानी 5:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम आओ योग करें। 5:20 का समय रहेगा देशभक्ति गीत का और 5:30 सुनिएगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी। इसके अंतर्गत आज आप सुन सकेंगे चंद्रिमा मजुमदार का सरोद वादन, आप सुनेंगे राग भटियार।

0: समझना चिंतन सुनेगा 6:40 पर। आज आप सुनेंगे सुमित्रा नंदन पंत के विचार। 6:45 का समय रहेगा रामचरित मानस से पाठ का। आज प्रस्तुत होगा बालकांड का भाग 102। 6:55 पर सुनिएगा संस्कृत में समाचार और फिर हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। सुबह 7:10 पर सुनिएगा संगीतिका। इसके अंतर्गत आज शब्द प्रसारित किए जाएंगे बलजीत सिंह की आवाज में। 7:30 समय रहेगा गीतों भरी गुड मॉर्निंग का। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा आप सुन सकेंगे सुबह 8:45 पर। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे स्मित तिवारी का सरोदवादन। आज आप सुन सकेंगे राग अहीर भैरव। नौ बजकर 15 मिनट पर सुनिएगा कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका। आज का विषय रहेगा मॉलिक्यूलर आणविक ऑन्कोलॉजी में वैज्ञानिक प्रगति। 9:30 मिट्टी दी महक पंजाबी कार्यक्रम आप सुन सकेंगे। प्रस्तुत करेंगी इंद्रप्रीत कौर। 10:10 पर सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। 11:10 पर सबरिस प्रसारित किया जाएगा और 11:30 सुनिएगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुर मंजनी। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे गोपाल सिंह का गिटार पर बजाया राग तोड़ी। साथियों ये थी आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। सुबह के 5 बजने वाले हैं। लीजिए अब सुनिए समाचार, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
2: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम के केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की कि 2 जुलाई को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस बिल का मसौदा पेश किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। श्री अधिकारी ने बताया कि ये समिति 4 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। हालांकि श्री अधिकारी ने स्पष्ट कर दिया है कि अनुसूचित जनजाति, कुर्मी और प्राचीन मूल के समुदायों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज से 2 दिन के पूर्वोत्तर दौरे पर रहेंगे। श्री चौहान असम के गुवाहाटी में बाढ़ से फसलों और गांवों में हुए नुकसान की समीक्षा करेंगे। इसके बाद श्री चौहान कल अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर रहेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का भी दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। कृषि मंत्री किसानों से सीधे बातचीत करेंगे। मुंबई सीमा शुल्क अधिकारियों ने छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अबुधाबी से आए 25 साल के एक यात्री को 2,38,00,000 रुपए मूल्य के लगभग 7 किलो गांजे की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। नशीली दवा और मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों समेत कई आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में पैराग्वे ने जर्मनी को एक कड़े मुकाबले में हरा दिया है। दोनों टीमें निर्धारित समय पर 1-1 गोल की बराबरी पर थी। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में पैराग्वे ने जर्मनी को 4-3 से हराया। इसके साथ ही पैराग्वे राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर गई है, जबकि जर्मनी विश्व कप से बाहर हो गई है। वहीं ब्राजील भी राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। ब्राजील ने रोमांचक मुकाबले में जापान को 2-1 से हराया। अब रविवार को न्यूजर्सी के ईस्ट रदरफोर्ड में राउंड ऑफ 16 में ब्राजील का अगला मुकाबला आइवरी कोस्ट या नॉर्वे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। President Draupadi Murmu conferred gallantry awards to the personnel of the Defence Forces and the Indian Coast Guard during the Phase 2 of Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan last evening. The President conferred 7 Sarvottam Yudh Seva Medals, 30 Param Vishisht Seva Medals, 12 Uttam Yudh Seva Medals and 56 Ati Vishisht Seva Medals at the ceremony. The medals were awarded to the personnel for distinguished service of an exceptional order. Prime Minister Narendra Modi has said that his visit to Seychelles has yielded significant results that will enhance the friendship between both the nations. The Prime Minister returned home after concluding his 3-day successful visit to the island nation. In a social media post, he said, over the last 50 years, the relationship between the two nations has been characterized by profound trust and mutual advancement, whereas the forthcoming 50 years will be shaped by innovation, sustainability and collective prosperity. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan will be on a 2-day visit to the Northeast beginning today. Mr. Chauhan will hold high-level review meeting in Guwahati, Assam. The meeting will review the impact of the floods on crops, villages and critical infrastructure in Assam and adjoining areas, assist the progress of ongoing relief operations and discuss the requirements for further assistance and intervention. Following the review in Assam, Mr. Chauhan will visit the flood-affected areas of Arunachal Pradesh tomorrow. He will undertake both aerial and ground surveys to assess the condition of flood-hit villages, agricultural fields and relief camps. West Bengal government has decided to implement the Uniform Civil Code, UCC, in the state. Chief Minister Subendu Adhikari announced in the assembly that a draft proposal of the bill will be presented at the scheduled state cabinet meeting on July 2nd. Following the models of the Gujarat, Uttarakhand and Assam, a committee has been formed under the leadership of retired Supreme Court Judge Justice Ranjana Desai. Chief

मैं योगाचार्य सुनील गौतम आज बात करेंगे ध्यान की एक बहुत सरल विधि के विषय में, दीर्घ श्वास प्रेक्षा। दीर्घ यानी लंबा, श्वास माने श्वास, प्रेक्षा माने बारीकी से देखना, अर्थात लंबी गहरी श्वास लेना और बारीकी से देखना, फील करना, अनुभव करना, श्वास के आने जाने को देखना और अपना पूरा ध्यान उस पर लगा देना, यही है दीर्घ श्वास प्रेक्षा। इसमें हम लंबी गहरी श्वास लेते हैं, धीरे धीरे छोड़ते जाते हैं, लंबी गहरी श्वास भरते हैं और छोड़ते जाते हैं। अपने ऑफिस में, घर में, कार्यस्थल में, खेल के मैदान में, ग्राउंड में, कहीं भी गहरी सांस के अभ्यास को कर सकेंगे। इवन हम कभी देर तक रेड लाइट पर फंस गए, गाड़ी बंद कर दी, तनाव आ रहा है जाम में फंसे होने का, उस तनाव से मुक्ति के लिए भी हम अपनी लंबी गहरी श्वास का अभ्यास कर सकते हैं। कभी सामने वाले से कोई झगड़ा हो गया, अपने गुस्से को कैसे काबू करना है, तो भी हम अपनी लंबी गहरी श्वास का अभ्यास करके अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं। निरंतर लंबी गहरी श्वास लेते रहने से हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में रक्त की सप्लाई सुचारू बनी रहती है। जब हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ हमारा ब्लड

मूव करता है हार्ट से शरीर के अंगों के लिए, शरीर के अंगों और मस्तिष्क के लिए। और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो शरीर के अंग प्रत्यंगों से रक्त वापस आता है हार्ट के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए। अर्थात हम जब श्वास लेते हैं तो श्वास लेते समय हमारे हार्ट से शरीर के ऑर्गन्स के लिए ब्लड की सप्लाई होती है। जब रक्त जाता है तो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाती है शरीर के अंगों के द्वारा, ऑर्गन्स के द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो जाती है। तो जब श्वास को छोड़ते हैं और वही श्वास छोड़ते समय आपके ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड वापस रक्त के साथ आती है हार्ट से लंग्स के द्वारा थ्रो करने के लिए। अर्थात जब ब्लड जाता है तो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जब वापस आता है तो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यही दीर्घ श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया आपके रक्त को पूरी तरह फिल्टर करने के और आपके हार्ट को सुचारू रूप से काम करने में मदद करती है, पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार सुचारू करती है। लंबी गहरी श्वास लेना और छोड़ना, अर्थात श्वास प्रश्वास, और इसी श्वास प्रश्वास के अभ्यास को आप सायास करते हैं, अर्थात जानबूझ के करते हैं, देखते हुए, विजुलाइज करते हुए, देखते हुए मीन मन की आंखों से देखते हुए करते हैं, फील करते हुए करते हैं, तो ध्यान हो जाता है। ध्यान की सब ग्राह्य विधि बन जाती है दीर्घ श्वास प्रेक्षा। इसमें दीर्घ श्वास प्रेक्षा के दौरान जब आप श्वास को ले रहे हैं, धीरे धीरे पेट फूलेगा। जब श्वास छोड़ते हैं, धीरे धीरे पेट नीचे जाएगा। और इसी पेट के ऊपर नीचे होने को, यानी के प्रत्येक अंग प्रत्यंग में कैसा प्रभाव हो रहा है श्वास के लेने और छोड़ने का, आप उसे अनुभव करने लग जाएंगे। और यही अनुभव करना, विजुलाइज करना, देखना, फील करना, यही आपका एक ध्यान बन जाता है दीर्घ श्वास प्रेक्षा। शरीर भी स्वस्थ होता है, मन भी स्वस्थ होता है दीर्घ श्वास के अभ्यास से। बेहतरीन मेडिटेशन हो जाता है, हमें फिजिकली मेंटली।